मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलरमरो मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सायपाली केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनते हैं भक्ति संगीत से महकती वंदना। शुरुआत करते हैं समूह स्वर में देश गान के साथ। रचना है हरी राम आचार्य की।

संत तुलसीदास का ये भजन अभी आपने सुना देवकी पंडित के स्वर में, और आइए अब सुनते हैं ये भक्ति रचना शर्मा बंधुओं के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत से सराबोर वंदना, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं चिंतन, आलेख है डॉक्टर नवनीत जैन का।
1: सफल होना हर व्यक्ति की चाहत होती है। वास्तव में सफलता का अर्थ संतुष्टि और संतुष्टि का संबंध व्यक्ति के जीवन की सार्थकता से होता है और ये व्यक्ति को उसकी मौलिकता से प्राप्त होती है, अर्थात हम जैसे हैं वैसे ही रहें, वैसे ही दिखाई दें। हर व्यक्ति के लिए उसकी सफलता के अपने निश्चित मापदंड होते हैं। सांसारिक दृष्टि से सफलता का अर्थ है तुम्हारे पास क्या है, परंतु वास्तविक रूप से सफलता का अर्थ है तुम क्या हो। प्रायः इच्छा पूरी होने पर हम स्वयं को सफल मानते हैं, किंतु सफल होने के बावजूद लोग संतुष्ट नहीं होते। तात्पर्य सफलता तो है पर संतुष्टि नहीं। विक्टर ह्यूगो का मानना है कि जिंदगी के सारे यशोगान अरमान की राख पर रखे जाते हैं। इस बाहरी सफलता से व्यक्ति की मौलिकता खो जाती है। सफलता के लिए कुछ बिंदुओं को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए, जिनमें आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास, संकल्प समर्पण, साहस और परिस्थिति के अनुरूप मन स्थिति का निर्माण। इससे संतुष्टि और सफलता दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। संतुष्टि और सफलता से ही आज हम अपने सुख का निर्धारण करने लगे हैं, और सुख इसकी शीतल छुअन में कौन भीगना नहीं चाहता। किंतु क्या हमने कभी इस विषय पर विचार किया कि सुख का आधार क्या है और ये कब तृप्त होता है? ये एक गंभीर चिंतन का विषय है, जिसे जान समझ और अनुभव करके इसका वास्तविक आनंद उठाया जा सकता है। शरीर सुख और दुख का अनुभव प्राप्त करता है। देह इन संवेदनाओं का आधार है। दैहिक सुख इंद्रियों की तृप्ति में समाहित होता है। इंद्रियां तृप्त होती हैं जब मन की तुष्टि होती है और मन तुष्ट होता है भावनाओं की शीतल फुहारों से। अतः भावनाओं की प्रगाढ़ता में मन, इंद्रिय और देह सभी तुष्ट और तृप्त हो जाते हैं। बहुत विरले ही होते हैं जो अपनी सभी मानसिक ग्रंथियों और भावनात्मक द्वंद्वों से ऊपर उठकर इस स्वर्गीय सुख का आनंद उठाते हैं। आज अधिकतम सुख की तलाश में इंद्रियों की सभी मर्यादाएं और वर्जनाएं टूट गई हैं। मर्यादा और संयम को ताक में रखकर दैहिक सुख की तलाश आज की सर्वोपरि समस्या बन गई है। इंद्रियों की तृप्ति मन के ऊपर निर्भर है। मन की तुष्टि में इंद्रियों की तृप्ति संभव है, क्योंकि मन इंद्रियों का नियामक, नियंत्रक और संचालक है। शुभ संकल्पों से, विचारों से ओतप्रोत मन इंद्रियों को तृप्त और देह को सुख प्रदान करता है। मन की तुष्टि सजल भावनाओं से मिलती है। अतः भावनाओं का सच्ची सही मायने में शारीरिक सुख मानसिक हर्ष और आंतरिक शांति का स्रोत है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सफलता के सही अर्थ को समझते हुए मौलिकता को ही आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि मन स्थिति बदलती है तो परिस्थिति बदलती है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था डॉक्टर नवनीत जैन का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान। गायक स्वर है ए हरिहरन का और संगीत संयोजक है सतीश भाटिया।
2: Episode number 202. 202.

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करने का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम, लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। गायक स्वर था ए हरिहरन का और संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। जैविक खाद का महत्व, इस विषय पर कृषि चर्चा आप सुनते हैं डॉक्टर के साहू से।
1: नमस्कार किसान भाई बहनी मन, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू, प्रमुख मृदा वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो आइए हम जानबो के जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के आज के संदर्भ में का महत्व है और एक से कैसे हम लाभ ले सकत हन, ये विषय में आप मन से मैं कुछ चर्चा करना चाहत हूँ। तो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती एक नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो प्रकृति द्वारा जो खेती किए जाते, जो हमर ऋषि मुनि मन जो पहली खेती करत रहिन है, तो का खेती रही से वह जैविक और प्राकृतिक खेती ही रही से और एकर माध्यम से पूरा विश्व के भरण पोषण होत रही से। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़त जाइस और मानव सभ्यता के विकास हो गईस, तो लोग एक जगह ज़्यादा संख्या में रह के गांव शहर जब बढ़त गईस जनसंख्या है, तो अपन आवश्यकता के अनुरूप और उला एक व्यापार के रूप में जब कृषि ले शुरू करीन, तो ज़्यादा उत्पादन के आवश्यकता पड़ीस और जब ज़्यादा उत्पादन के आवश्यकता पड़ीस तो विभिन्न प्रकार के ऐसे फसल भी आईस, उन्नत किस्म के नवीन जो प्रजाति है जेमा उत्पादन है ज़्यादा रही से या ज़्यादा मात्रा में उत्पादन चाहिए, तो हम मतलब फिर का है कि अतिरिक्त रूप से जो पोषक तत्व है ओला रासायनिक खाद के माध्यम से किसान भाई बहनी मन डालना प्रारंभ करें। अब ये परिवर्तन हुई से मैं कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मन के ही पहल रही से कि फसल के ज़्यादा यदि भूख है ओकर पोषक तत्व तो उमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए और ज़्यादा उत्पादन चाहिए, तो हम ला जो अतिरिक्त उर्वरक है वो रासायनिक उर्वरक हम ऊपर से डालना शुरू करें। लेकिन ये आवश्यकता रही से 1960 के दशक में जब हमार देश में खाद्यान्न के भंडारण की स्थिति अच्छा नहीं रही से, जनसंख्या बढ़त रही से, भूमि के जोत एक निश्चित रही से, अधिकांश क्षेत्र अवर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आत रही से, सिंचाई के साधन नहीं रही से, तो वो एक आवश्यकता रही से। लेकिन उमें एक चीज़ ये हुईस के किसान भाई मन जो है रासायनिक खाद के उपयोग तो प्रारंभ करीन, लेकिन जो हमार पारंपरिक देसी खाद रही से, जो जैविक खाद रही से, जैसे कचड़ा गोबर के कचड़ा खाद है, फिर बाद में नडेफ आइस, वर्मी कंपोस्ट आइस, ये हरी खाद है, या फसल चक्र के निर्धारण है, मिश्रित खेती है, ये सब ला वो धीरे धीरे नज़र अंदाज करत गईस। और अपन एक फसल जैसे मान लो हम छत्तीसगढ़ के बात करें, तो यहाँ खरीफ में वो सिर्फ धान के खेती और भी उन्नत ज़्यादा उत्पादन देने वाले किस्म के चयन करत गईस और वह रासायनिक खाद वह डालीस। ओकर कारण ये दिसे कि रासायनिक खाद के प्रयोग करना बहुत सरल है और सुविधाजनक है। वो ओकर तुलना में आप देखे तो जैविक खाद के मात्रा ज़्यादा लगते और उला लाए लेगे के डाले के भी जो संसाधन है वो ज़्यादा लगते। तो ये ओला सरल पड़ीस के भाई बोरी में अपन खाद लाइस, रासायनिक खाद उल डाले लगीस। लेकिन एकर से का हुईस कि किसान भाई ये चीज़ ले भूल गए कि जो जैविक खाद है वो मिट्टी के आत्मा होते, उकर जो उपजाऊपन है, मिट्टी के बनावट है, मिट्टी के जो गुणवत्ता है, तम बने रहने के लिए जैविक खाद जरूरी है। तो रासायनिक खाद के अधिकता और जैविक खाद की कमी, ये दोनों कारण बने समर मिट्टी के जो पोषक तत्व उपलब्ध कराए के क्षमता, उकर उत्पादनशीलता, ये सब में वह कमी आद गईस और मिट्टी धीरे धीरे कई जगह बीमार भी होए लगीस। छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम जगह इसे समस्या ज़्यादा आए है, लेकिन भारत के अन्य राज्य में ये समस्या दिनों दिन गहरात गईस, जिसे खासकर पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, जिहाँ ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद के उपयोग करीन, एक फसल दू फसल और साल में तीन तीन फसल जब लेत गईन तो मिट्टी के स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होत गईस। तो ये चीज़ ल आज ना सिर्फ हमर राज्य में देश में और पूरे विश्व में ये चीज़ है एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आए है, इसमें चिंतन होत है और हमर जो किसान भाई मन भी अब जागरूक हो गए हैं, उमन ये समझत हैं हमर वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी मन के समझाइश के कारण कि आने वाले समय में रासायनिक खाद के साथ हमें समन्वित उर्वरक प्रबंधन के जरूरत है और मिट्टी के गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जैविक खाद जैसे गोबर के खाद, केचुआ खाद और सूक्ष्म जीव वाला खाद, ये सब के उपयोग हमें करना जरूरी है।
0: डॉक्टर के साहू से अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, विषय था जैविक खाद का महत्व। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम आतंकवाद सुनिएगा रात 9:25 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित राजन साजन मिश्र का गाया राग यमन में ख्याल। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 12:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5:00। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां और सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर सुबह 10:00। छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां सुनिएगा सुबह 8:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हमर संस्कृति हमर साहित्य कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार सुरजीत नवदीप ले समीर शुक्ल के गोट बात। सुबह 9:00 रंग तरंग कार्यक्रम के तहत सुनिएगा झलकी नीम हकीम खतराए जान, लेखिका श्रीमती आशा सोनी, प्रस्तुति होगी समीर शुक्ला की।

नमस्कार रायपुर कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:05 पर। इसमें आपको सुनवाएंगे आज डेंगू से बचाव विषय पर डॉक्टर विकास अग्रवाल से बातचीत। छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की उपलब्धि पर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और योजना के नोडल अधिकारी श्री बिंबसार नागार्जुन से बातचीत। साथ ही सुनिएगा योग और मेडिटेशन पर योग गुरु पूजा साहू से खास बातचीत। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:00, 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2:00, दोपहर 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। सदाबहार नगमे आपको सुनवाएंगे दिन में 11:30 पर। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा रात 10:00। आप मन के गीत कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 12:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा कुछ छत्तीसगढ़ी गीत सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर। कलाकार होंगे पुरानिक साहू और साथी। सुबह 11:05 पर समूह गान शिक्षा कार्यक्रम के तहत सुनिएगा कन्नड़ भाषा का पाठ। रचनाकार होंगे बी.आर. गीथा। घर आंगन कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर बहने सुनेंगी आज के गोठ। प्रवासी मन के आर्थिक सहयोग और परिवार कविता पाठ सुनेंगे डॉक्टर इंद्राणी साहू से। साथ ही सुनिएगा गीत संगीत। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। इसके मुख्य आकर्षण आज होंगे क्रम अपन गोठ अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस पर क्रम सवाल जवाब। साथ ही सुनिएगा माटी के गीत। चौपाल कार्यक्रम सुनिएगा रोजाना की ही तरह शाम 7:21 पर, जिसमें सुनेंगे क्रम आज की बात सोयाबीन के उन्नत और वैज्ञानिक खेती। शाम 7:30 पर हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा मानसून के पूर्व पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान बचाव और उपचार तथा टीकाकरण का महत्व। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर K.L. राम अतिरिक्त उपसंचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांढर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दाम्बुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब सुनते हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, मैं हूं अंकुर शुक्ल और आप सुन रहे हैं सुबह की ताजगी से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। एक नई सुबह, नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ हम फिर हाजिर हैं आपके दिन की शुरुआत को और बेहतर बनाने के लिए। साथियों, आज की सुबह थोड़ी अलग है क्योंकि गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद फिर से स्कूलों में रौनक लौटने वाली है। आज कई घरों में अलार्म थोड़ा जल्दी बजा होगा, बच्चों के बैग फिर से तैयार हुए होंगे, नई कॉपियों की खुशबू, यूनिफॉर्म की तैयारी और दोस्तों से मिलने का उत्साह। आज की सुबह अपने साथ वही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली स्कूल की एनर्जी लेकर आई है। माता पिता के लिए भी आज का दिन बहुत खास होता है। वहीं छुट्टियों की मस्ती के बाद फिर से दिनचर्या पटरी पर लौटती है और बच्चों के लिए शुरू होता है सीखने, आगे बढ़ने और नए अनुभवों का एक नया अध्याय। तो आज की इस नई शुरुआत वाली सुबह में हम भी आपके लिए लेकर आए हैं खबरें, चर्चा, जानकारी और ढेर सारी सकारात्मक बातें, ताकि आपका दिन बने और भी बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: साथियों, अब बात करते हैं देश बंधु चितरंजन दास की। इस एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, नेतृत्व और त्याग के लिए हमेशा याद किया जाता है। चितरंजन दास केवल एक सफल वकील नहीं थे, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत वैभव और सुविधाओं से ऊपर देश हित को रखा। कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अपने सफल वकालत जीवन को भी पीछे छोड़ दिया। उनका एक विचार आज भी बहुत प्रेरित करता है और वो है, स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि जनता के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार है। देशबंधु का मानना था कि देश का विकास तभी संभव है जब आम नागरिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बने और समाज में जागरूकता बढ़े। इसी सोच के साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में नए विचार दिए और स्वराज की अवधारणा को मजबूत करने का प्रयास किया। वे युवाओं की शिक्षा, सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी को भी बेहद जरूरी मानते थे। आज जब हम नए भारत और विकसित भारत की बात करते हैं, तब देशबंधु चितरंजन दास के विचार हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव केवल नीतियों से नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों से भी आता है।

0: साथियों, अब बात एक ऐसे स्वास्थ्य के विषय की जो हर साल बारिश के मौसम से पहले और उसके दौरान हमारी सजगता की परीक्षा लेता है, डेंगू। विश्व स्तर पर डेंगू को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को दुनिया भर में विश्व डेंगू दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि डेंगू केवल एक मौसमी बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी चुनौती है जिससे बचाव के लिए पूरे समाज की भागीदारी जरूरी है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर अक्सर साफ और रुके हुए पानी में पनपता है, इसलिए बचाव की शुरुआत घर और आसपास की छोटी छोटी सावधानियों से होती है। तो डेंगू के लक्षण क्या हैं, कब सतर्क होना चाहिए और हम अपने परिवार को इससे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इन्हीं जरूरी बातों पर करते हैं खास बातचीत। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर विकास अग्रवाल जी। डॉक्टर विकास, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि डेंगू क्या है और यह कैसे फैलता है।
1: डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एक संक्रमित एडीस मॉस्किटो के काटने से फैलता है। यह मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पनपता है और आमतौर पर दिन के समय में काटता है।
0: जी सर, लोग अक्सर डेंगू और सामान्य वायरल बुखार में भ्रमित हो जाते हैं, इसमें अंतर को कैसे समझें?
1: देखिए, जो सामान्य वायरल फीवर होता है उसमें बुखार के साथ सर्दी जुकाम भी होता है, कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन डेंगू बुखार में यूजुअली तेज बुखार होता है, सीवियर हेडेक होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, त्वचा में चकत्ते भी आ सकते हैं और ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो सकती है।
0: जी सर, डेंगू के शुरुआती लक्षण कौन कौन से हैं और किस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए?
1: शुरुआती लक्षण जैसे मैंने कहा, तेज बुखार आना, सिर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, उसके अलावा बॉडी एक उल्टी होना, जी मिचलाना, पेट में तेज दर्द होना, उसके अलावा अगर आपकी स्थिति और गंभीर होती है तो आपको लगातार उल्टी होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा और शरीर के कई जगहों से हिस्सों से जैसे कि नाक या मसूड़े में से खून का रिसाव होने लगता है या बेहोशी आने लगती है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए।
0: सर, एक सवाल ये भी है कि क्या डेंगू केवल बारिश के मौसम की बीमारी है या साल के अंत अन्य समय में भी इसका खतरा रहता है?
1: देखिए, डेंगू का खतरा आमतौर पर बारिश या उसके एक आध दो महीने बाद तक इसलिए रहता है क्योंकि डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर होता है वो साफ पानी में पनपता है और रुका हुआ पानी यूजुअली बारिश या उसके बाद के एक आध दो महीने तक रहता है, लेकिन बाकी साल भर भी अगर कहीं पर पानी रुका हुआ है तो वहाँ मच्छर पनप सकता है और उसकी वजह से डेंगू फैल सकता है।
0: जी सर, घरों में ऐसी कौन कौन सी सामान्य गलतियां होती हैं जो मच्छरों के पनपने का कारण बनती हैं?
1: यूजुअली घरों में, खासकर इंडिया में पाया गया है कि जो घरों में हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं उसका हम अगर पानी को बार बार बदलते नहीं है समय समय पर तो वहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है। गमलों के ट्रे में या छत में कोई कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है, टायर पड़ी हुई है या पुराने बर्तन पड़े हुए हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और जिसमें मच्छर पनपने लगते हैं।
0: जी सर, एक सवाल है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए डेंगू से बचाव के क्या खास उपाय होने चाहिए घरों में और अन्य जगहों पर भी?
1: डेफिनेटली देखिए, बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं वो डेंगू में के लिए ज्यादा घातक हो सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे और बुजुर्गों जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
0: जी
1: ऐसे लोगों को थोड़े फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छरों से थोड़ा दूरी बना के रखना

0: बचिए। शाम के समय जिस समय मच्छरों की संख्या ज्यादा होती है उस समय घर से बाहर ना निकलें और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स का इस्तेमाल करें। बुखार आने पर खुद से दवाई ना लेकर के डॉक्टरी सलाह करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें।
1: जी सर, अगर परिवार में किसी को डेंगू हो जाए तो घर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: अगर आपको सामान्य डेंगू है जिसमें सीवियर डेंगू नहीं है, सामान्य डेंगू है जिसमें बुखार और डिहाइड्रेशन हुआ है, तो आप घर में पहले तो रेस्ट करिए। उसके अलावा तरल पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा करिए, जैसे कि पानी ज्यादा पिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। सामान्य बुखार के लिए सामान्य पैरासिटामोल का ही इस्तेमाल करें। उसके अलावा कभी भी कोई भी दर्द निवारक गोलियों का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टरी सलाह के ना लें।
1: जी सर, आखिरी सवाल है मेरा कि डेंगू को रोकने में केवल सरकार नहीं बल्कि आम नागरिकों की क्या भूमिका होती है?
0: देखिए, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हम आम नागरिकों को भी डेंगू से बचाव के उपाय करने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, डेंगू मच्छर से फैलता है, तो मच्छर को पनपने से रोकने के लिए हम घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने जो कूलर है उसमें पानी को समय समय पर बदलते रहें, घर के छत में या कहीं आसपास अगर कबाड़ का सामान इकट्ठा है, टायर है, बर्तन है, उसमें अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे ना इकट्ठा होने दें, और समय समय पर दवाई का छिड़काव अपने घर के आसपास करते रहें, जिससे हम डेंगू से को फैलाने वाले मच्छर को रोक सकते हैं।
1: जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए और हमारे श्रोताओं को डेंगू जैसी बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

0: दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य को वेंडर पंजीयन श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला है। यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि यह बताती है कि अब लोग पारंपरिक बिजली के साथ साथ स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लाखों परिवार इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदन कर चुके हैं और हजारों घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र भी लगाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि महिला स्वसहायता समूहों की भागीदारी भी इस अभियान को नई दिशा दे रही है। तो क्या यह योजना आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव साबित होगी? सोलर ऊर्जा कितनी व्यवहारिक और फायदेमंद है और आम लोगों को इससे कैसे लाभ मिल रहा है? इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं CSPDCL के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और इस योजना के नोडल अधिकारी बिंबिसार नागार्जुन जी। बिंबिसार जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2024 में शुरुआत किया गया था, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 1 करोड़ घरों में जो घरेलू निवास वाले घर होते हैं उसमें सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने की ये योजना है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस पे बहुत ही मुख्यता से लिया और हम तेजी से इस योजना के तहत कोई भी जो घरेलू उपभोक्ता है अपनी स्वयं की छत पर 3 किलोवाट तक का अगर प्लांट लगाता है
0: जी,
1: तो उसे 3 किलोवाट तक की केंद्र सरकार द्वारा 78,000 सब्सिडी प्राप्त होती है और राज्य सरकार भी उसमें 30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। इस प्रकार से 3 किलोवाट क्षमता का अगर सौर संयंत्र अपनी छत पर कोई उपभोक्ता लगाता है तो 1,08,000 की कुल सब्सिडी प्राप्त हो जाती है। तो मतलब ये बहुत ही कम खर्चे में आप अपने घर को ही एक समझ लो उत्पादन केंद्र बना सकते हो, बिजली घर बना सकते हो, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग अगर किसी उपभोक्ता का बिजली बिल 300 यूनिट के अगर आसपास है
0: जी,
1: तो सामान्य तौर पर वह शून्य हो जाता है
0: जी। सर, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, इस उपलब्धि के पीछे कौन से प्रमुख प्रयास रहे?
1: छत्तीसगढ़ को जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो मध्यम जो क्षेत्र के जो राज्य थे उसमें जो वेंडर हमने जो रजिस्ट्रेशन किया, मई माह को एक सोलर मंथ करके पूरे देश में सेलिब्रेट किया गया, तो उसमें जो अधिकतम जो वेंडर रजिस्टर्ड हुए उसकी एक कैटेगरी बनाई गई थी, तो उसमें प्रदेश में लगभग हमने 86 से अधिक वेंडर प्रदेश में हमने इसी माह में जो मई का था उसमें हमने रजिस्टर किया। इसके अलावा हम ये बता दें आपको कि जब ये योजना जब शुरुआत हुई थी तो हमारे पास बहुत ही सीमित वेंडर की संख्या थी, लगभग 50 से भी कमी थे, जिसमें प्रदेश सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से और हमारे जो विद्युत कंपनी जो इसकी नोडल एजेंसी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसके अपार सहयोग से और लगातार फील्ड मूवमेंट के कारण एक हमने अच्छी इसे प्रगति हासिल की और अभी 1200 से अधिक जो वेंडर हमारे प्रदेश में रजिस्टर्ड है और इतने ज्यादा संख्या में वेंडर होने के कारण ये योजना भी अच्छे से प्रचारित हो रही है और लोगों का आसानी से प्लांट लगाए जा रहे हैं
0: जी। सर, योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी कैसे मिलती है?
1: ये पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया है, जैसे ही योजना के तहत आप ऑनलाइन जो पीएम सूर्य घर का पोर्टल उसे अप्लाई करते हैं और उसमें आप वेंडर का चुनाव भी स्वयं कर सकते हैं और चुनाव करने के बाद जैसे ही आपके घर में प्लांट स्थापित हो जाता है, प्लांट स्थापना के उपरांत जैसे ही वहां पर मीटर लगकर वो सिंक्रोनाइजेशन बोला जाता है इसे टेक्निकल टर्म पर
0: जी,
1: और जैसे ही चालू हो जाता है उसके बाद उपभोक्ता स्वयं रिडीम का बटन दबाता है, तो स्थापना से 1 माह के भीतर ही केंद्र सरकार द्वारा जो भी दे सब्सिडी है और उसके इमीडिएट 1 या 2 दिन में राज्य की सब्सिडी उपभोक्ता के डायरेक्ट उसके दिए हुए खाते पे ट्रांसफर कर दी जाती है
0: जी। सर, एक सवाल ये है कि जिन लोगों को लगता है कि सोलर सिस्टम लगाना महंगा या बहुत कठिन है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे?
1: देखिए, सोलर सिस्टम लगाना महंगा तो नहीं है, क्योंकि अभी जो बिजली के जो बिल आते हैं, आपको मान लीजिए एक सामान्य उपभोक्ता जो 300 से 400 यूनिट मासिक खपत करता है उसका बिजली बिल लगभग अगर हम 6 रुपए के आसपास अगर औसत मान लें, 6 से 6.5 रुपए, तो उसका कम से कम 2300-2400 के आसपास का बिजली बिल बनता है और अगर वो कुछ अपफ्रंट लगा भी लेता है तो उसकी जो प्रतिपूर्ति है आप ऐसा समझिए कि बिजली बिल आपका लगभग शून्य हो गया। 2300-2400 का जो बिजली बिल आपका आता है उसमें सिर्फ फिक्स चार्जेस जो रहते हैं मीटर के, मतलब जो फिक्स चार्जेस हमारे 20 रुपए किलोवाट या 30 रुपए किलोवाट जो आते हैं, तो उतना ही इसका बिजली का बिल कहा जाता है
0: जी।
1: इस प्रकार से अगर उपभोक्ता बैंकों के माध्यम से लोन भी लेता है तो उसका जो ईएमआई है वो उसके बिजली बिल से भी कम रहता है और लगभग तो ये एक प्रकार से विन विन सिचुएशन उपभोक्ता के लिए, और हमेशा 25 साल के लिए उसका बिजली बिल लगभग बहुत जीरो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और बहुत कम लागत में हो जाता है, और एक महीने के अंदर सब्सिडी आ जाने से एक बहुत अच्छा जो उसका लोन का टेनर भी है जो 10 साल के लिए शुरू में रहता है वो 5 साल का हो जाता है, और अगर उपभोक्ता जाके इसको रीअप्रोप्रिएट कराता है, रीस्ट्रक्चरिंग करा लेता है बैंक में, तो उसका ईएमआई भी जो है बहुत काफी कम हो जाती है, 700-800 रुपए के आसपास रह जाती है
0: जी।
1: तो इस दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं कि योजना बहुत ही कारगर योजना हो रही है और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक प्रकार से एनर्जी सेविंग है। और एक अगर हम मतलब हीट में बात करें, ग्रीन एनर्जी की, देश हित की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो एक अच्छा सबका एक नोबल कार्य है ऐसा बोल सकते हैं
0: जी। सर धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस योजना के बारे में हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए।
1: थैंक यू।

0: दोस्तों, अब बात करेंगे उस चीज़ की जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही है, योग और मेडिटेशन। सुबह की शुरुआत अगर शरीर को ऊर्जा और मन को शांति देने वाली हो तो पूरे दिन का असर अलग ही दिखाई देता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और जीवन शैली के बीच संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया माना जाता है। वहीं मेडिटेशन यानी ध्यान अपने भीतर कुछ पल ठहर कर खुद से जुड़ने का एक सरल तरीका है। आज की व्यस्त दिनचर्या, बढ़ते तनाव और डिजिटल जीवन के बीच लोग फिर से योग और ध्यान की ओर लौट रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत बड़े संसाधनों की नहीं बल्कि कुछ मिनटों और नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। तो चलिए इन्हीं बातों पर और विस्तार से बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं योग गुरु पूजा साहू जी। पूजा जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में। मैडम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि योग और मेडिटेशन में क्या अंतर है और दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं।
1: मैं बताऊंगी, योग और मेडिटेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योग की व्याख्या तो बहुत दृढ़ है क्योंकि योग से हम शरीर, श्वास, मन, इंद्रिय इन सबको नियंत्रित करते हैं। योग के हमारे 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके द्वारा संपूर्ण शरीर को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार मेडिटेशन या ध्यान योग का ही एक अंग है। ध्यान की बात करें तो यह विशेष रूप से मन एवं इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जिससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है।
0: जी, आज के समय में योग और ध्यान की जरूरत पहले की तुलना में ज्यादा क्यों महसूस की जा रही है?
1: क्योंकि आज की हमारी जो जिंदगी है एक भागदौड़ सी हो गई है, बहुत तेज हो गई है, काम का दबाव है, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण लोग मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। योग और ध्यान जो है हमें तनाव कम करने में मदद करता है, मन को शांत करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है।
0: जी,

0: हाँ, एक सवाल ये है कि जो लोग पहली बार योग या मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आसान शुरुआत क्या हो सकती है?
1: सबसे पहले तो उनको हमें ध्यान की अवस्था में सुखासन में बैठना चाहिए। 5 मिनट या 2 मिनट उनको ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए। फिर हल्की स्ट्रेचिंग करना चाहिए, स्ट्रेचिंग में सूक्ष्म व्यायाम जिसे हम कहते हैं। उसके बाद कम से कम 2 प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम या भ्रामरी। फिर शांत बैठ के श्वासों पे ध्यान लगा सकते हैं।
0: जी, ये क्या रोज 10 से 15 मिनटों का अभ्यास असर दिखा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। 10 से 15 मिनट अगर आप रोज अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत कुछ फर्क नजर आता है। अब हमारा जो मन है एकदम शांत होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, आप खुद को एकदम शांत एवं ऊर्जावान और एकाग्र महसूस करेंगे इससे।
0: जी पूजा जी, योग को केवल शारीरिक व्यायाम मानना कितना सही या गलत है?
1: योग को केवल व्यायाम मानना पूरी तरीके से सही नहीं है। योग जो शरीर को मजबूत बनाता है, लचीला बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ यह मन को शांत करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और जीवन में सकारात्मक सोच लाता है।
0: जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि मेडिटेशन करते समय लोगों को सबसे सामान्य कठिनाइयाँ क्या आती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है?
1: सामान्य कठिनाई तो आती है। सबसे पहले कठिनाई होती है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं या ध्यान की अवस्था में रहते हैं तो हमारा जो ध्यान है बार बार भटकता है। तो कुछ लोगों को बेचैनी महसूस होती है, लगता है कि वो ध्यान सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह एक सामान्य बात है। जब भी ध्यान हमारा भटके तो परेशान ना हो, अपने ध्यान को अपने श्वासों पे लेके आए, फिर आपका ध्यान फिर से लगना शुरू हो जाएगा।
0: जी, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए योग का अभ्यास किस तरह से अलग हो सकता है?
1: बच्चों के लिए हम तो खेल खेल में या खेल और मजेदार गतिविधियों की तरह होना चाहिए, और युवाओं के लिए योग तनाव कम करने, फिटनेस और एकाग्रता बढ़ाने में मदद होता है। बुजुर्गों के लिए हमें हल्के आसन, प्राणायाम और ध्यान को अधिक उपयुक्त देना चाहिए।
0: ओके, क्या सुबह का समय योग और ध्यान के लिए सबसे बेहतर माना जाता है? अगर नहीं तो और कौन सा समय उपयुक्त हो सकता है?
1: सुबह का समय तो बहुत ही अच्छा माना जाता है योग और ध्यान के लिए, क्योंकि उस समय हमारा जो वातावरण है एकदम शांत होता है, शुद्ध ताजा हवा रहती है, मन भी शांत रहता है। अगर सुबह समय न मिले तो हम शाम का दिन भी चयन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सुबह का ही समय सबसे बेहतर होता है योग और ध्यान के लिए।
0: जी, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तरह की जानकारी मिलती है, योग सीखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: सोशल मीडिया से तो प्रेरणा लेनी अच्छी बात है, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है। योग सीखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा या कठिन आसन न करें। किसी अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में हमें योग सीखना चाहिए और अपने आप को दूसरों से तुलना न करें। योग का उद्देश्य केवल कठिन आसन करना नहीं होता है, बल्कि अपने आप को स्वस्थ और संतुलित जीवन देना है। योग में सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता, नियमितता और धैर्य।
0: जी पूजा जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का नमस्कार रायपुर यहीं समाप्त होता है।

फिर मिलेंगे नई बातों और नई ऊर्जा के साथ। अब आप लीजिए इस मधुर गीत का आनंद और अपने रेडियो साथी अंकुर शुक्ल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं समाचारों के लिए, अब रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
4: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
3: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन एटीएफ के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एसएईडी में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं एटीएफ निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
5: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडो को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
6: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
7: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
6: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
5: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
8: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है। उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
5: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुरमुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
10: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64%

0: हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्योम में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honour, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future."
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए MOU से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे

0: कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार। संगवारी हो, मोर भुइया के ये अंक मा बेरा बेरा में हमन अपन अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार मन से आपके मुलाकात करवाथन। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये क्रम मा आज हमर पहुना है वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप। आप मन ले गोठ बात करत हैं समीर शुक्ल।
1: लोक परंपरा, संस्कृति और साहित्य ये आपस में एक दूसरा से ऐसे मिलते हैं कि जिला अलग अलग देखे के मन नहीं हुआ। या ये कह जाए कि माटी में बगरे एक एक कण आपस में मिलके जिन चीज ल बनाते वो हमार परंपरा होते, और परंपरा जब जुन्ना बखत ले चलत आते तो संस्कृति बन के और हमार आगू में आते, और संस्कृति ला जब कलम के ताकत मिलते और वो कागज में उतरते तो वो साहित्य के निर्माण होते। हमर छत्तीसगढ़ के भुइया में बहुत तक ऐसे साहित्यकार बेटा मन होइन जेन मन यहाँ के भुइया के प्रताप लगाइन लिखिन और जम्मो संगवारी मन तक अपन अपन हिसाब ले पहुँचाए के उद्यम ल करिन। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार मोर भुइया के एक ऐसे मंच जहाँ ऐसने छत्तीसगढ़ी साहित्यकार मन ला, या ये कह जाए कि छत्तीसगढ़ महतारी के साहित्यकार सपूत मनला हम यहाँ पहुनई करे बर बलाथन आमंत्रित करथन। और बड़ भाग है हमर कि आज ये मंच में हमर पहुना बन के आए हैं अंचल के वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप जीवन। आप मन नवदीप जिला एक कवि के रूप में जानता हो, एक साहित्यकार के रूप में जानता हो, तो आज हम उनखर मल्ले गोट बात करबो। सुरजीत जी, आप मन के गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है कार्यक्रम।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुरजीत जी, वैसे तो आप मन ला हमर संगवारी मन कवि के रूप में जानते हैं, आप मन के कविता सुनत आए हैं। सबले पहले हम आप मन ले जानना चाहबो कि आखिर ये लोक साहित्य का होते।
2: मैं पहले पहले तो आप लोग बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम में मुला आज आमंत्रित करे हो आप, जेकर विचार और भाव हमार पूरा छत्तीसगढ़ वाला बन सुनी और जानी। आज हम याद करता हूँ मैं पिछला समय जब हमारे बड़े बड़े साहित्यकार मन रही ने, खास करके वो मन साहित्यकार मन याद करना चाहता हूँ, श्री द्वारका प्रसाद विप्र, कबीरनाथ जी कश्यप, सुंदरनाथ जी शर्मा, आज़ादी के आंदोलन के पहले जब ये कविता लिखिन देश की आज़ादी पर, तब ओकर और फिर सन 70 के आसपास सातवां दशक में आता कैसे परिवर्तन आगे लोक भाषा में रचना करे में जो आनंद एक रचनाकार ला मिलते वो दूसरा में आनंद नहीं मिल सके। काबर कि माँ के कोख से जन्म ले के बाद जब हम अपन महतारी के मुँह से हम ओकर बोली ला ओकर भाषा ला सुनथन तो ऐसे लगते जैसे अमृत बरसा थे, और वो भाषा ला सुन के धीरे धीरे करत करत वो अगर मुख ला देख देख के छोट कुल नहीं कहा अनुभव करते कि कुछ कुछ गोठिया थे दाई गोठिया थे, और वो सुनत सुनत धीरे धीरे बड़े हो जाते।
1: संगवारी हो, सुरजीत नवदीप जी मन सियान हुआ थे जुन्ना बखत ले छत्तीसगढ़ी लेखन मा यहाँ के सेवा करत हैं, लेकिन नान्हे लैका के बात सुरजीत जी आप मन कर दो तो ये मन मा जाने की इच्छा हुआ थे कि आप मन के जन्म कहाँ हुए रहिस और आगू के जीवन
2: ये,
1: कैसे
2: ये बात बढ़िया पूछे आप मन। मोर जन्म पंजाब के पंजाब पाकिस्तान में हवे, अभी वहाँ एक जगह हवे मंडी भावलदीन, लाहौर से छठवा स्टेशन पर थे, वहाँ मोर जन्म हुई। और जब ये देश के बंटवारा हुई तब मोर उम्र 8-9 साल की रही, तब हम जब वहाँ से चले रवाना हुए मोर अच्छी तरह याद है कि हमारा 6 महीना हो रही से नवा घर बना रहे, हमला वो घर छोड़ के भाग के आना पड़ी।
1: सुरजीत जी, हिंदुस्तान बहुत विशाल देश रहीस, ओखर हृदय स्थल में स्थित हमर छत्तीसगढ़, पंजाब ले चल के वो नान्हे लैका 1948 के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचिस?
2: हम जब ये बंटवारा हो हम वहां से रवाना हो गए, अमृतसर होत, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, मेरठ होत हो, हमन जबलपुर आ गए, जबलपुर से घूमत घामत हमन इंदौर चले गए, इंदौर से फिर चले आए हमन रायपुर अचानक। काबर की हमार पिताजी बताइस कि हमार जोन बाबा है वो है कंडेल में रहते, हमारे बड़े पिताजी और मोर पिताजी ये तय करी कि हम नीचे चलबो और हम सवेरे 4 बजे करीब करीब हम सरसोपुरी रेलवे स्टेशन में उतरे और वहाँ पता लगाए तो बताइए 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से कंडेल हावी बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव के गाँव जो आजादी के लड़ाई लड़ी वो गाँव। तब हमला लोग बताई मोर पिताजी है एक तरफ मोर छोटे भाई ने बैठाई और एक तरफ थोड़ बहुत जो सामान है से तेल रख के हम मन ओकर पीछू पीछू कंडेल पहुंच गए। वहाँ एक साहू परिवार हम मल्ला सहारा दीस। एक बात जरूर मोला आज याद आते कि साहू परिवार है तन मन और धन से हमार परिवार के सेवा करीन अलग से किराया में घर ले दिन जहाँ हमार पिताजी बड़े पिताजी व्यापार करना शुरू करी। एक बात के जरूर प्रश्न हो सकते कि मैं यहाँ वहाँ आत हो गया हमारे परिवार घरों आ गए हम मन बिल्कुल छत्तीसगढ़ी नहीं जानत रहे। सवाल रही छत्तीसगढ़ी नहीं जानबो हमारे काम धंधा व्यापार कैसे चली। तब धीरे धीरे करके वो साहू परिवार के बच्चा मन से बड़े मन से हमारे माता पिता मन बातचीत करे धीरे धीरे तो हमारे बबा मल्ला बताई ये मल्ला तुम छत्तीसगढ़ी बोले भर धीरे धीरे सिखाओ। हमारे माँ छत्तीसगढ़ी बोले बोल पूरा नहीं बोल सके अधूरा बोले और मैं यहाँ बाजू में बैठ के सुनो पिताजी ला भी ऊ लाई। तब वो मैं जब भी रहा है तब महू अपन धीरे धीरे कोई सामान भी खरीदे बरा है तो महू छत्तीसगढ़ी बोलो उगा मुझे सुनो और वही मेरे एक ठन गाँव हवे झरिया। मोर माँ बाप मन और साहू जी मन तय करें कि यह बच्चा ला स्कूल भेज दे जाए हम झरिया चल दे पढ़े बर जान 1.5-2 किलोमीटर दूर गाँव में और वहाँ जब रास्ता में मैं जाऊँ और जब स्कूल पहुंच जाऊ तब बच्चा मन सब मन छत्तीसगढ़ी में गोठिया तो मऊ कर मन साथ धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी गोठियाना सीख गया।
3: सुरजीत जी विभाजन के त्रासदी झेले वो नान्हे लड़का घूमत फिरत यहाँ ले होत वहाँ जात धीरे से पहुंचिस छत्तीसगढ़ के कंडेल में। कंडेल में पढ़े ला स्कूल पहुंचिस ये पूरा उखर अनुभव वो नान्हे लड़का के मन में समवत जात है और जब वो लड़का बड़े होइस तो ये सब अनुभव मन ओला कौन से और रद्दा दिखाई।
2: जब वो गांव में चल दियो तो मोर माता पिता मन पंजाब में जब रही ने उमर पाठ करे सबरे साहब गुरुद्वारा में जाए गुरुग्रंथ साहब के पाठ करे मैं भी सुनो कर मैं सच जाऊँ। जब उमर यहाँ छत्तीसगढ़ आ गए और कंडेल आ गए तो मोला एक ऐसे मौका सुअवसर मिलिस कि हम श्रीवास्तव जी कंडेल के रविया जो देश के आजादी के लड़ाई में भाग लिस और हमारे बड़े नेता हो गए और ऐसे बड़े नेता हो कि ओकर प्रयास के बाद धमतरी में गांव में 2 बार हमार महात्मा गांधी जी आई ओकर पूछिन कि आखिर ये आंदोलन चलिस कैसे कैसे करते हो आप कैसे आदमी मन जुड़ते तो सब कारण लो बताए जोड़े के तरीका ला बताई और आजादी के लड़ाई ला आखिरी तक लड़क रही से ऐसे रही से हमार श्रीवास्तव जी।
3: हमार देश आजाद हो गए ओकर बाद सुरजीत जी और आप मन नान्हे लड़का पढ़त पढ़त पढ़त अब और आगू बढ़ीस जब तो ये पूरा उखर अनुभव जन नान्हेपन ले अब तक के रहीस है अब ओला कहीं ना कहीं तो उतारना रहीस
2: जी
3: और सबले अच्छे माध्यम रहीस साहित्य
2: जी
3: तो ओ में आप मन के पदार्पण होइस। लेकिन विशेष तौर पे मैं आप मन ले जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी लेखन कैसे प्रेरित होया आप मन।
2: मैं हाँ जब कंडेल से मोर घर वाला मन धमतरी भेज दी काबर की वहाँ हाई स्कूल नहीं रही से झरिया में 4th तक रही से और धमतरी में हाई स्कूल रही से तो बोले पढ़े पर धमतरी भेजिन और धमतरी जब भेजिन तो मैं यहाँ पढ़ना शुरू करे छत्तीसगढ़ी मैं थोड़ थोड़ सीख गए हो बोलो स्कूल भी जाओ स्कूल में बोलो बातचीत करो और प्राय लगभग लगभग सब विद्यार्थी मन छत्तीसगढ़ी बोले पढ़ने वाला जतका रहते मन मैं एक आनंद के बात रही से कि हमारे साथ जतका पढ़िया मन रही ने वो मन बोले मोर साथ मजाक करे काबर कि मैं जब बोलो छत्तीसगढ़ी तो पंजाबी के लहजा ओ में आ जाए तो मन कहा वो पंजाबी टूरल छेड़ो बोला सुनो तो मोर कर कई जन भीड़ लगा के आ जाए और बोला चिढ़ाए कैसे का करत हन तो मैं अब पंजाबी भाषा में लहजा में बोलो जैसे मैं बोल सकते रहो हाओ खावत हो न तुम का कहना है तो मन हासे वो धीरे धीरे फिर सुधरत गिस अब मन मन में फिर भाव आए कई बार कि मैं हाँ कई बार हमारे वो गांव में छत्तीसगढ़ बनाए पर कई कार्यक्रम होए नाचा गम्मत होए ऊ में नाचा गम्मत में भी जब वो मन बातचीत करे छत्तीसगढ़ राज्य के बातचीत करे और बाहर के आना वाला नेता मन आए ऊ मन छत्तीसगढ़ की मांग करे मतलब याद आते छत्तीसगढ़ी के मांग कर प्यारे लाल ठाकुर साहब हमारे धमतरी में एक कार्यक्रम करी से जरा मैं गांधी चौक में बैठ के सामने बैठकर बच्चा रहो तो सुनो वो अपने मन में भाव आई कि ये ला कविता में लिखे जा सकते, ऐसे लिखे जा सकते।
3: वो बखत जुन्ना जमाना में कुछ कविता जिन आप मन लिखे हो कुछ ऐसे सुरता आते कुछ एकात लाइन का लिखे रहे हो कुछ?
2: यानी बोला सुरता आते कई ठन छोट छोट कविता लिखो का वर्ग जो जब स्कूल हम जान तो बीच में तरिया पड़े और तरिया के थोड़ा से आगे में थाना और थाना के बाजू में वो गांधी चौक और वहां कार्यक्रम, तो मोर दिमाग में वही घूमे ये कैसे लिखे जा सकते। तब मैं लिखे रहा एक थन हवे थाना एक थन गांधी चौक और गांधी जी के नारा मिलत हवे हमला तहू तो छत्तीसगढ़ जय बोल जय छत्तीसगढ़ तय बोल जय छत्तीसगढ़ जय।
3: कहा बात है कहा।
2: ऐसे जब मैं फोर्ट लिख दियो एक थन कार्यक्रम में हमार स्वर्गीय पवन दीवान जी आ रही से वो भाषण वासन दी भाषण छत्तीसगढ़ में ऊपर जब वो गीत सुनाई छत्तीसगढ़ बन जाई ते लगना ऐसे जब मैं सुनियो तो मैं क्यों ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ थोड़ा बहुत मैं हिंदी में भी लिखियो छत्तीसगढ़ी में लिखियो। एक दिन ऐसे भी मौका आई कि जब मैं यहाँ राजीव गया एक गाँव एक कार्यक्रम में अपन घर के कार्यक्रम में हमारे रिश्तेदार वहाँ पहुँच गया रहा है तो वहाँ जब वो कार्यक्रम खत्म हो गए तब मैं यहाँ पंडित जी प्रणाम करके मैं क्यों मऊ छत्तीसगढ़ी में कुछ सुना सकतो का बोल सक ते पंजाबी लेकर का सुना मेरे ते का बोल बे ते तो वो हसीस ठाकर लगा तो मैं कुछ जानत नहीं रहो सब छत्तीसगढ़ में मानते मैं नहीं जानत रहो तो मेरा लौटा दी पर मोर मन मरी से कि जे छत्तीसगढ़ के ये गीत लगा थे उससे मऊ गाऊ धीरे धीरे मोर मुलाकात अचानक श्री परमार जी से होगी
3: नारायण लाल जी परमार
2: नारायण परमार जी से जब इकर मन से हुई तब ये मन जब मुलाकात करते मन के साथ मन दोनों एक प्रोफेसर इस एक जने शिक्षक इस तब वो मुलाकात हुई तो इकर मन से मैं पूछो कैसे करे जाए कैसे लिखते पूछो मैं यहाँ तो मुकिम साहब बोला गा के बताए परमार जी बोल के बताए हमारे एक गुरुदेव शिव प्रसाद जी पांडे हमला आठवीं में पढ़ाई हिंदी पढ़ाए मगर हिंदी पढ़ाते पढ़ा छत्तीसगढ़ी ज्यादा बोले और मैं छत्तीसगढ़ी बोले बोला ऐसा लगे ये बोली में ये भाषा में मिठास ज्यादा हवे बोला ऐसे लगे तो बोला कि मैं मीठ बानी ला गुरतुर ला का मैं कविता में लिख सकता हूँ ऐसे मन में मोर विचार आया बाद में धीरे धीरे मैं छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखना शुरू करे ऐसे
3: एक आठ कविता लिखा है जिन वो बखत के रहा है कुछ
2: हाँ वो समय जो कविता एक ठन लिखे रहो तेरा बता दो मैं किसानी के दिन एक ठन कविता लिखे रहो जन बादल गरजत है भैया बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे कार गाँव में रहे तो क्या करते बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे चेत लगा के खेत जोतवो अब पानी के दिन आगे ऐसे तो सुखा डबरा तरिया मन नदिया लवा लब भर जाही हरियर लुगरा के पहिन के जंगल रह रह के मुझ पाही बादल हा वरदानी आगे मितानी के दिन आगे भैया बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे खेत बताबो बीजा बोवो खेत बताबो और बीजा बोवो नागर बैला ला धोबो नागर बैला ला फिर धोबो मेहनत के आगे दुनिया झुकते मेहनत के आगे दुनिया झुकते आलसी मन जिंदगी भर रुकते जुन्ना धान नंदागे भैया बादल गरजत है भैया किसाने के दिन आगे भैया
3: किसाने के दिन आगे। क्या बात है एक छत्तीसगढ़ी बोली इतना मिठास है इमें इतना गुरतुर बोली है। एक बार आप मन के लेखन जब आरंभ होइस चालू होइस तो ये लेखन कार्य और आगू कैसे बढ़िस बोला हाँ, बताते हो
2: मैं अब फिर कहा हुई कि कवि सम्मेलन होने लगिस धीरे धीरे और जब लोग मतलब पता चलिस बोर एक लाभ ये मिलिस पंजाबी हुए के हिंदी तो ठीक है मगर वो छत्तीसगढ़ी में घलो कविता लिखते और मंच में सुनाते तो ये मन अपन कवि स्वर में मोला ले जाना शुरू करी अब मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ू हिंदी कविता पढ़ो और कई बार तो हिंदी कविता जब पढ़ लो तो कहे नहीं छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो तो छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो सब मन सुने तो मर नारा लगाए छत्तीसगढ़ी कविता सुनाओ छत्तीसगढ़ी में बोलो ओकर कारण मैं धीरे धीरे समझ गए हो का भर की मैं जब बोलो तो मैं पंजाबी ट्यून आए तो आदमी मन को आनंद ले है ना बोला अच्छा लगे कि चलो यही बहाना ले मोर बात तो पहुंचा थी जाने अनजाने में छत्तीसगढ़ आंदोलन के एक ठन अंग मऊ बन गयो जाने अनजाने में काबर की उस समय मोला याद है कोदूराम दलित जी श्री दानेश्वर शर्मा जी हमर बसंत दीवान जी, रामेश्वर वैष्णव जी, ये सब मंच में आ चुके रहीन हैं। लक्ष्मण मस्तूरिया जी, ये सब मंच में आ चुके हैं। अब नया वाला में वो सब मुकुंद कौशल भी मंच में आ चुके रहीन हैं। ऐसे आई तब ए मन भी छत्तीसगढ़ी पढ़े, साथ में हिंदी पढ़े, कविता पढ़े, काबर की जनता के मांगनी से लोक साहित्य ला लोक तक पहुंचाए पर लोक भाषा का उपयोग करना बहुत जरूरी है, इससे चाहे वो बोली हो चाहे भाषा हो, मगर मगर आप अपन बात पहुंचाना है उकरे मन के भाषा में, जब आप गुठिया हो तो दिल में वो भाषा उतर जाते।
3: तो सुरजीत जी, कवि मन के आप मन बात करे हो, बड़े बड़े कवि मन के बात करे हो, और उस संग में आप मन के कवि सम्मेलन मन में जाना होत रही से, अब वो छत्तीसगढ़ के वो मंच जिन मांग करत रही कि हम छत्तीसगढ़ी भाखा बोली में कुछ सुनना चाहत हन, तो एकाद और कविता सुने के मन हुआ थे जिन मंच से हुंकार के रूप में आप मन छत्तीसगढ़ी संगवारी मन ला।
2: व्यंग भी लिखो हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी में भी, तो मैं कह छत्तीसगढ़ी में व्यंग गजल लिखियो, मैं एक थन अपने ऊपर लिखियो सियान होगे, तो मैं भी एक थन बात लिखियो, का लिखियो, सब मन कथे मोला सियान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, नवा जमाना के लइका मन का जाने, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान होगे, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान होगे, सब जन कथे मोला सियान होगे, करिया केस चल दिस सुफेद होगे, करिया केस चल दिस सुफेद होगे, पारा मोहल्ला में हमर सम्मान होगे,
3: क्या बात,
2: पारा मोहल्ला में हमर सम्मान होगे, दो चार दिन के यह मेहमान होगे, सब जन कथे मोला सियान होगे, चढ़ गए आँखी के ऊपर चश्मा पावर वाला, डोकला ला लगिस बोहा हम जवान होगे,
3: क्या बात,
2: हम जवान होगे, दो चार दिन के हम मेहमान होगे, बुढ़ापा आइस घर के सुर बदल गए, देखत देखत मतलब इंसान होगे,
3: क्या बात,
2: देखत देखत मतलब इंसान होगे, सब जन कथे मोला सियान होगे, दो चार दिन के ये हम मेहमान होगे,
3: क्या बात है। इतना हल्का फुल्का ढंग ले चालू करके और इतना गुड़ रहस्य में आप मन पहुंचता हो, और साथ में व्यंग के वो कहे जाए कलेवर वो आप मन के लेखन में आते। आप मन एक साहित्यकार हो जिन हिंदी में भी लिखते, जिन छत्तीसगढ़ी में भी लिखते, व्यंग भी लिखते, कविता भी लिखते, और बहुत चीज गुनत रही थे। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, खासकर ऐसे लेखक मन के प्रतिनिधि बन के जिन युवा साहित्यकार मन लिखना आरंभ करे हैं, चालू करे हैं और आगू बढ़ना चाहते हैं कला लेके, विषय के चुनाव कैसे करे जाए?
2: एक बात ला नवा पीढ़ी के युवा मन ला ध्यान रखना चाहिए कि हमार आस पास जो घटना दिन प्रतिदिन घटत जात, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो मतलब देखना चाहिए कि कौन से विषय ला हम चुनन और ओला हम प्रभावपूर्ण बनान, तेकर प्रभाव हमार नवा पीढ़ी पर पड़े, काबर कि ये नवा पीढ़ी ला अगर हमला सही रास्ता में ले जाना हवे तो हमला बहुत ध्यान देना पड़ी, काबर के अभी जो परिवर्तन होते टीवी देखा था में कई प्रकार घटना ला देखथन, हम अखबार पढ़थन कई ठन घटना ला पढ़थन, खास करके युवा पीढ़ी ला अखबार ला लगातार पढ़ के और कई प्रकार जो पत्रिका थे तेला पढ़ के अलग अलग विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, और जब वो विषय के बारे में बोला मालूम हो जाए पूर्णता ऐसा लगे अब मैं ये जानकारी बोला मिल गए और मैं एक ऊपर कहानी कविता लेख निबंध रिपोर्टाज लिख सकता हूँ, तब लिखना चाहिए, काबर की बिना अनुभव के ते लिखवे तो वो उसने हुई जैसे रेत के घरौंदा होते। लिखे के समय बात अब ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जो भाषा प्रयोग करत हैं वो भाषा ऐसे होए जो लोग मन तक पढ़े तक पहुँचे, सरल होए, सहज होए, मन में उतर जाए, अगर थोड़ बहुत भी तुम क्लिष्ट करो काबर के तुम्हार जो लिखे हो ते अखबार में जब छपी तो तुम्हार नहीं रही, वो जो पढ़े थे तेकर हो जाए, तब अगर गांव वाला मन पढ़ी तो गांव वाला मन लगना चाहिए कि नहीं ये आदमी हमर दिल के बात करे, हम पढ़त हैं हमला पढ़े में अच्छा लगा थे, बोला कठिन नहीं लगना चाहिए, अखबार मन के भाषा जो हवे जो अखबार में छपत है कहानी कविता लेख निबंध, और जो गांव वाला मन या शहर वाला मन पढ़ते थे वो मन भाषा घलो सिखाते, अगर वो में थोड़ बहुत भी गड़बड़ी हुई तो आने वाली पीढ़ी भी वही भाषा ला बोली, जैसे आजकल हम देखते हैं कई प्रकार के भाषा ला मिला के बोलते, छत्तीसगढ़ी भी बोलते। हाँ एक बात है, हम कोई चीज ला ग्रहण करे बर इनकार नहीं करन। कल हम बाजार जात हन तो हमारे जेब में चिल्लर रही तो व्यापार करे में लेन देन में हम लोग सुविधा हो जाए।
3: बिल्कुल,
2: उसने हम अगर अलग अलग प्रकार के भाषा जाना था तो हम कहीं अलग अलग जाबो देश पर तो वो भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं, मगर अपन भाषा अपन भाषा है और नौजवान पीढ़ी ला अपन भाषा ला बिल्कुल ध्यान से जानना पढ़ना चाहिए परखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए।
3: सुरजीत जी इतना अच्छा सरल भाषा में आप मन समझा दो कि एक लेखक के का दायित्व होते जिन पढ़ैया है जिन सुनैया है ओखर बर ओखर प्रतिनिधि कविता के रूप में एक कविता आऊ हमर संगवारी मन ला सुना देते हो तो आप मन जिन लिखे के नियम बताए हो वो स्थापित हो जाती समर कार्यक्रम में।
2: एक कविता सुनाना चाहता हूँ अभी एक तरीका कैसे पहुँचे जाए नया पीढ़ी कैसे पहुँचे का समझ को पहुँचे विषय ला कैसे ले एक विषय के चयन में करे वो विषय के ऊपर वो कविता ला सुनो।
3: स्वागत।
2: दिया चारों खुट अंजोर बकरा थे दिया ये बहुत सरल हमार बात कही देता अंधेरा हट गया जी दिया जला दे मगर ओगर पीछे कारण लग में बता तो दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे दिया के बाती असर जल के देख
3: का बात है
2: दिया के बाती असर जल के देख अरे जाड़ा लाहो लेवत हवे चल के देख
3: का बात है का बात
2: जाड़ा लाहो लेवत है चल के देख बिना गरम कपड़ा के निकल के देख बिना गरम कपड़ा के निकल के देख अरे जिंदगी में कतेक रिकीम रिकीम के सुख दुख हुए जो बात आप कहा हो ये नौजवान पीढ़ी समझे कोशिश नहीं कर थे तब मैं कहो जिंदगी में कतेक रिकीम रिकीम के सुख दुख हवे चिखला पानी में थोड़ कुन चल के देख
3: का बात
2: चिखला पानी में थोड़ कुन चल के देख अरे फोकट में सेखी झन मार फोकट में सेखी झन मार तेया भैया घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख
3: का बात
2: घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख और गरीबी गरीबी केहले
3: का हो ही
2: गरीबी केहले का हो ही समय के संग ते खुद ला बदल के देख
3: का बात
2: समय के संग ते खुद ला बदल के देख और दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे दिया के बाती कस जल के देख
3: दिया के बाती कस जल के देख। संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन सियानी के बखत में भी जब ये कविता मन ला पढ़ा थे और हमर मन ले गोट बात करा थे तो उनखर मुखड़ा हा चमका थे ऐसे जैसे दिया बरा थे ओखर अंजोर बगरा थे। सुरजीत जी चलत चलत एक दो छोटे छोटे बात और जानना चाहूँ कि सब लइका हमन ला प्रिय होते मयारुक लगते सब अच्छा लगते लेकिन कोई ऐसे रचना आप मन करे हो जिला करे के बाद बहुत संतोष हुए हो ही
2: हाँ।
3: तो वो रचना के बारे में बताओ अंश सुनाओ।
2: आजकल जो चलत है बाजार में मैं दो चार जगह मतलब जाए के मौका लगी गुरु परंपरा देखियो में है गुरु शिष्य के परंपरा देखियो तो मैं याद करत रहा हूँ कि वो पुराने समय में एकलव्य और द्रोणाचार्य के संबंध कैसे रही से आज जब पूरा समय बदल गए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परंपरा भी बदल गए लेने देने के जो चलत रही से अब वो परंपरा दूसरा ढंग के हो गए तब आज के गुरु भी कैसे ओकर अनुसार बदल गए वो बात मैं लिखियो में है माँ के ऊपर एक कविता लिखियो बहुत पूरा हिंदुस्तान भर में मैं कई कवि सम्मेलन में गया तो लोग मन माँ के ऊपर कविता सुनाते मैं कभी पिता पिता के ऊपर भी कविता लिखे रहे हो तो मैं जो माँ के कविता लिखे हूँ वो में मैं एक बात लिखे हूँ वो आप लोग सुनाना चाहता हूँ।
3: स्वागत।
2: दाई ते मोला जन्म दे बने करे पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे दाई मैं जानत हूँ पढ़ लिख के मैं हाँ एक दिन नौकरी करूँ पढ़ लिख के एक दिन मैं नौकरी करूँ और मैं सच बताऊँ दाई मैं अब देख ले बड़े अफसर बनूँ और जब बनूँ और जब वापस आऊँ दाई तो तोला पहले प्रणाम करूँ और एक बात बताऊँ दाई ते मोला अभी उंगली पकड़ के चला था मैं जब बड़े हो जाऊँ ना तो उंगली पकड़ के मैं चला
3: क्या बात है
2: तो उंगली पकड़ के मैं चलाऊँ दाई ते मोर बहुत सेवा करे ना मैं भगवान से प्रार्थना करूँ दाई मोला भी मोर दाई दादा के सेवा करे के मौका दे भी मैं बतात हूँ मैं ऐसे मौका ला हाथ दे जान नहीं दूँ मैं बतात हूँ मोर दाई मैं तोर सेवा पर प्राण दे दूँ और सेवा करूँ मोला दिन याद आई मोर रात याद आई, जब भीजे कपड़ा में ते सुतत रहे और सुखम मुला सुखा सुलात रहे। दाई वो दिन मुला याद है, मैं तुला लेप तो लई में सुनाऊ और मैं तोर पाँव ला दबाऊ, दाई तोर पाँव ला दबाऊ।
3: क्या बात है सुरजीत नवदीप जी, ऐसे लगत है बातचीत चलत रहा है, आप मन के कविता पाठ चलत रहा है, हमन सुनत रही गुनत रही और ओखर आनंद कभी खत्म मत हुए। चलत चलत आखिरी सवाल, बहुत लंबा यात्रा एक लोक साहित्यकार के रूप में आपमन करे हो, लेकिन फिर भी ऐसे लगते कि अभी कुछ बाँचे है, अभी कुछ और करना है, का करना चाहत हो एक साहित्यकार के रूप में आपमन, आपमन के का संकल्प है?
2: मैं चाहत हूँ मोर रात रात जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला, छत्तीसगढ़ के सरकार हा अपन भाषा बना है, राजभाषा बना है, आठवीं सूची में ओकर नाम आ जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी है वो छत्तीसगढ़ी में ही लिखे पढ़े बोले, परीक्षा होए और ओकर मल्ला वही मन में नौकरी भी मिले, अपन राज हो गए, अपन भाषा अपन बोली अपन होना चाहिए। मोर रात रात मोर मन में विश्वास भी है, एक दिन ऐसे आई जब आठवीं अनुसूची में हमारे छत्तीसगढ़ी ला ले जाही, सरकार मानी, हमला मान्यता मिली, तब मोला प्रसन्नता हुई, भले मैं रहूं चाहे मत रहूं, मगर मैं होकर बर दुआ करत रहा।
3: सुरजीत जी जब प्रसन्नता होते मन प्रफुल्लित होते तो साहित्यकार कविता करते। चलत चलत चार लाइन और कुछ सुना देते हो।
2: मैं दाई लगे हो, दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ, दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ लड़ाई के मैदान में, दाई मैं तोर बात ला निभाए हूँ जो वचन दे रहे हो अपन बात ला निभाए हूँ, देख ले युद्ध के मैदान में मैं गोली पीठ में नहीं छाती में खाए हों, पीठ में नहीं छाती में खाए हों, सब मल्ला दिखाए हों, दाई मुला याद है तोर वचन तोर बात अभी तक मोर दिल में उतर गए है। सच बताओ दाई तोर बात है, बात नो है वचन है, कोई कोई लड़का बन निभाते वही ला मैं निभाए हूँ।
3: का बात है का बात है, साहित्यकार अपन हिसाब ले भी सिपाही होते, वो कलम के सिपाही होते, ऐसना हमार छत्तीसगढ़ी भाखा के बोली के लोक साहित्यकार सुरजीत नवदीप जी मन आज हमार पहुना बनिन ये मंच मा जेखा नाम है हमार संस्कृति हमार साहित्यकार। हमार शुभकामना है कि उनका साहित्य यात्रा अभी चलते रहा है और हमार ला मिले प्रसादी के रूप में अच्छा अच्छा कविता, अच्छा अच्छा बोली, अच्छा अच्छा भाखा। सुरजीत जी आज आप मन हमार पहुनाई ला स्वीकारे, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमार संस्कृति हमार साहित्यकार ये क्रम में अभी आप मन वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप ले समीर शुक्ल के होए एक गोठ बात सुनत रहे। एकरे संग मोर भुइया के ये अंकी है सिरावत है। जम्मू संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। रंग तरंग कार्यक्रम के तहत अब सुनते हैं झलकी नीम हकीम खतराए जान। लेखिका है श्रीमती आशा सोनी और प्रस्तुति है समीर शुक्ला की।

0: कबाड़ी वाला मैडम, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला।
1: ये क्या है, अपने ही घर पर कोई इस तरह आवाज देता है क्या?
0: अरे क्या करूं, जो काम करता हूं वही तो कहूंगा।
1: अरे फिर भी मुझे बुरा लगता है।
0: भाई सुधा, जो सत्य है उसे स्वीकारना चाहिए।
1: कमलेश, तुम दूसरा कोई काम क्यों नहीं करते? कहीं नौकरी कर लो या फिर कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो।
0: व्यापार के लिए पैसा कहाँ है? और रही नौकरी, तो तुम जानती हो सुधा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
1: नहीं, फिर भी कोई रास्ता तो होगा जिसमें तुम सम्मान से जी सको।
0: ठीक है, मैं शांति से सोचूंगा। अरे अभी तो खाना दे दो।
1: वो तैयार रखा है, तुम फ्रेश हो जाओ, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे।
0: सुधा, ओ सुधा,
1: क्या है, बड़े खुश दिख रहे हो, कहीं कबाड़ में सोना मिल गया क्या?
0: अब कबाड़ की बात भूल जाओ।
1: तो फिर किस बात की खुशी है?
0: तुमने कहा था ना, ये कबाड़ी धंधा छोड़ दो।
1: हाँ, कहा तो था।
0: तो सुनो, मैंने एक रास्ता खोज लिया है।
1: वो क्या?
0: इस शहर में हमारा वैसे भी कोई नहीं है।
1: हाँ।
0: इसलिए हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे।
1: लेकिन जाएंगे कहाँ?
0: अरे किसी छोटी सी जगह पर, कोई कस्बा या किसी तहसील में।
1: और वहाँ जाकर क्या करेंगे?
0: ये देखो, ये स्टैंप पैड, सील ठप्पे और ये पर्चियाँ। अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ।
1: क्या?
0: डॉक्टर कमलेश, बस जहाँ जाएंगे वहाँ का लेटर पेड छपवा लेंगे।
1: लेकिन तुम्हें डॉक्टरी की जानकारी है?
0: ओहो सुधा, सर्दी खांसी बुखार तो साधारण सी दवाई से खत्म हो जाते हैं। घाव में पट्टी तो बांध ही सकता हूँ। कोई बड़ा केस होगा तो किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ भेज देंगे।
1: अरे फिर भी जाएंगे कहाँ?
0: वो भी पता कर लिया हूँ।
1: अच्छा,
0: यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम में नजीरपुर नाम की तहसील है।
1: हाँ?
0: बस वहीं चले चलते हैं।
1: तुम्हें देर किस बात की, सामान पैक करो, हम आज ही निकल चलते हैं।
0: ठीक है, तुम भी मदद करो तो जल्दी हो जाएगा।
1: हाँ हाँ।
0: हाँ, आखिर हम मंजिल पर पहुंच ही गए।
1: हाँ।
0: किराए का घर ऐसा मिला जिसमें सामने ही अपना दवाखाना बन गया। और ये देखो साइन बोर्ड, डॉक्टर कमलेश, बीएससी डीसीआई एसडीसी।
1: इसका क्या मतलब है?
0: अरे डॉक्टरों की इतनी डिग्री होती है जिनकी उनको भी जानकारी नहीं होती, और फिर बड़ी डिग्री लिखने से इम्प्रेशन पड़ता है।
1: और दवाइयाँ?
0: वो सब भी ले आया हूँ।
1: अच्छा,
0: ये देखो, ये डिब्बे भरे रखे हैं।
1: अब और वो बोतलों में रंगीन क्या है?
0: अरे कुछ नहीं, सादा पानी है।
1: सादा पानी?
0: हाँ, रंगीन कर दिया हूँ।
1: अच्छा,
0: अलग अलग बीमारी के लिए दवाई के साथ खास रंग का पानी। मरीज भी खुश। अब तुम जाओ।
1: अच्छा।
0: मुझे दवा खाना संभालने दो।
1: ठीक है।
2: ओ डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम रहमत है।
0: आइए चाचा, आइए। नमस्ते चाचा।
2: भाई वाह, क्या तहजीब है, मुझे चाचा बना लिया।
0: अरे आप बुजुर्ग हैं, इस लिहाज से मेरे चाचा ही तो होंगे ना।
2: बेटा
0: जी,
2: मेरी कमर में दर्द रहता है, कोई अच्छी सी दवा दे दो।
0: अभी लो चाचा, आई देखो। हाँ। ये गोलियां सुबह शाम दो दो।
2: हाँ।
0: और ये तेल कमर में लगाकर सिकाई कर लेना।
2: अच्छा,
0: फिर कल शाम को दिखा देना।
2: ठीक है, ठीक है बेटा। कितना पैसा दूं?
0: सिर्फ 20 रुपए चाचा।
2: 20 रुपए? ये लो बेटा। तो मैं चलूं?
0: हाँ ठीक है चाचा।
1: अरे डॉक्टर साहब,
0: आइए आइए,
1: देखिए ना, हाय, सब्जी काटते वक्त मेरी उंगली कट गई।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं अभी पट्टी लगा देता हूँ। ये
1: धीरे से डॉक्टर साहब,
0: धीरज रखिए,
1: बहुत दर्द हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये पट्टी कर दिया हूँ, बस अब सब ठीक हो जाएगा। और ये गोली जो है सुबह शाम एक एक, कल फिर पट्टी बंधवा लेना।
1: अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब कितने पैसे हुए?
0: सिर्फ 15 रुपए?
1: 15 रुपए? मैं तो सिर्फ 10 रुपए ही रखी हूँ।
0: अरे कोई बात नहीं, कल दे देना।
1: अच्छा अच्छा, कल दे दूंगी।
3: डॉक्टर साहब
0: आइए।
3: नमस्ते डॉक्टर साहब।
0: नमस्ते नमस्ते, आइए। बाबूजी आप कौन हैं?
3: गंगा दीन नाम है मेरा। तुमने ना यहाँ आकर हम पर बड़ा उपकार किया बेटा। बीमार आदमी यहाँ बिना दवा के तड़प तड़प के मर जाते थे। तुम इस तहसील के भगवान बनकर आए हो बेटा।
0: कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? अरे ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। बताइए।
3: बाकी तो सब ठीक है बेटा, बस ये खांसी ना जीने नहीं देती।
0: इधर इधर हाँ। लेट जाइए हैं, मैं अभी देखता हूँ। हाँ, अब थोड़ी लंबी लंबी सांस लीजिए। हाँ और थोड़ा। हाँ बस बस ऐसे ही। हाँ
3: क्या हुआ बेटा?
0: अरे कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही है। अरे ये लीजिए ये गोलियां, सुबह शाम एक एक, ये लाल और ये नीली, और ये लाल दवा 1 चम्मच, साथ में सौंठ और तुलसी पत्ता डालकर पानी उबाल लेना और वो लेते रहना।
3: खांसी तो ठीक हो जाएगी ना बेटा?
0: अरे बाबूजी भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा।
3: अरे हमारे तो भगवान भी तुम ही हो बेटा। कितना पैसा हुआ?
0: 1 हफ्ते की दवा दे दिया हूँ बाबूजी, 50 रुपए हुए।
3: मेरे पास तो सिर्फ 40 रुपए हैं बेटा।
0: अरे कोई बात नहीं बाबूजी, अगले हफ्ते आओगे तब दे देना।
4: चलो ये दिन भी बीता, धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ रही है
1: और साथ में उधारी भी।
0: क्या मतलब?
1: अंदर से सब सुन रही थी मैं, न जाने किस किस को उधारी दे रहे थे।
0: अरे वो सब दूसरी बार आएंगे तो पैसा दे देंगे। वैसे भी ये जगह है कितनी बड़ी, अरे कोई जाएगा कहाँ।
1: अरे फिर भी इतनी उधारी क्यों देना हो?
0: अरे भाई सारे दिन में मुश्किल से 60 रुपए की दवाइयाँ खर्च हुई है और हमारे हाथ में 700 रुपए आ गए हैं। उधारी कितनी है? सिर्फ 45 रुपए, वो भी 2-4 दिन में आ जाएंगे।
1: तब ठीक है, चलो खाना खाओ और आराम करो, थक गए होंगे।
5: डॉक्टर साहब।
0: अरे क्या है भाई?
5: मैं तहसीलदार साहब के यहाँ से आया हूँ, साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने आपको बुलाया है।
0: बस 2 मिनट मैं नहा लूं फिर चलता हूँ, तुम बैठो। सुधा देखना, मैं तहसीलदार साहब के यहाँ जा रहा हूँ, चलो भाई।
5: जी साहब।
0: देखो ये कुछ दवाएं और हैं, इन्हें साहब को 3 टाइम देते रहना।
5: जी साहब।
1: सुनिए जी।
0: हाँ?
1: आप तो सुबह नहा चुके थे, फिर भी तहसीलदार का आदमी आया तो दोबारा क्यों नहाए और तौलिया लपेटे ही तहसीलदार साहब के घर चले गए।
0: अरे तुम नहीं समझोगी सुधा।
1: क्या?
0: देखो मैंने दोबारा नहाया नहीं, सिर्फ बदन पर पानी छींट लिया था।
1: अच्छा?
0: और वो गीला टॉवेल लपेटकर बाहर आया था।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: अरे भाई इससे तहसीलदार साहब सोचेंगे, देखो कितना भला डॉक्टर है, मेरी बीमारी की बात सुना तो तौलिया पहने ही भागा चला आया।
1: अच्छा।
0: इससे मेरी साख बहुत अच्छी बनेगी।
1: ओ, ये बात है। ठीक है अब आप दवा खाना खोलिए।
0: और चाय नाश्ता?
1: वो ही करना, इससे भी समय की पाबंदी जाहिर होगी और अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
6: भाई वाह क्या डॉक्टर है, उनका हाथ लगा इतना बड़ा घाव ठीक हो गया।
7: अरे मेरे बेटे के हाथ में दर्द था, वो तो ढंग से लिख भी नहीं पा रहा था, लेकिन डॉक्टर बाबू की दवाई से उसने पूरी परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से दिया।
6: मेरी गाय बीमार पड़ी,
8: तो डॉक्टर बाबू के दवा से ही 2 दिन में ठीक हो गई।
9: मेरी बहू सीढ़ी से गिर गई थी, डॉक्टर बाबू ने ही उसे ठीक किया, नहीं तो खाना बनाने लायक ही नहीं थी।
10: अरे इस गांव के भाग जा गए जो ऐसा डॉक्टर यहाँ पर आया। अरे वो डॉक्टर साहब आ गए। नमस्ते डॉक्टर साहब।
0: नमस्ते, कैसे हो चाचा?
10: ठीक हूँ बेटा।
0: और बाबूजी आप?
8: तुम्हारा हाथ लग गया बेटा, तो फिर किस बात की चिंता?
0: ठीक है ठीक, बैठिए बैठिए, मैं एक एक करके सबको देखता हूँ।
11: अरे डॉक्टर साहब, पहचाना मुझे?
0: हाँ।
11: मैं वही हूँ जो 2 दिन पहले आपसे पट्टी बंधवाने आई थी, उंगली कट गई थी ना मेरी।
0: हाँ ठीक है ठीक है,
11: किसी कारण से 2 दिन बाद आ रही हूँ।
0: हाँ कोई बात नहीं, जरा घाव देखूँ तो। हाँ जख्म भर गया है।
11: हाँ हाँ,
0: ये मलहम लगाते रहना।
11: अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब कितने पैसे हुए?
0: सिर्फ 10 रुपए।
11: और 10 रुपए और पहले के 5, ये लो 15 रुपए।
0: ठीक है।
11: अच्छा
0: ठीक ठीक।
2: डॉक्टर साहब नमस्ते, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी लेना है, सर्टिफिकेट बना देंगे?
0: ठीक है ठीक है, नाम बताइए।
2: रामदास।
0: पिता का नाम?
2: श्यामदास।
0: उम्र?
2: 45 साल।
0: कब से लेना है?
2: बस आज से ही, यानी 10 से 16 तक।
0: ये लो और 50 रुपए दे दीजिए।
2: 50 रुपए?
0: हाँ, और ज्वाइन करते समय फिटनेस जरूर बनवा लेना।
2: जी सर।
1: भगवान ने हमारी सुन ली, प्रैक्टिस अच्छी चल निकली है, दिन भी अच्छे गुजर रहे हैं।
0: मैं सो तो ठीक है, लेकिन
1: लेकिन क्या, भगवान जितना दे रहा है ठीक है। अब देखो ना, उस दिन तुमने छुट्टी के लिए मेडिकल बनाया, 50 रुपए मिल गए, इसी तरह सब चलता रहेगा।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये क्या कर दिया आपने?
0: क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो?
2: आपने छुट्टी के लिए जो प्रमाण पत्र बनाया था,
0: हाँ?
2: उसे मैंने आवेदन के साथ ऑफिस में जमा कर दिया था।
0: तो फिर?
2: फिर क्या, मेरे खिलाफ जांच का आर्डर निकल गया है। ये देखो, उसमें आपके प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगी है।
1: जरा देखो तो कमलेश, ये क्या है? इसमें तुमने जो बीमारी लिखा है, वो जानवरों को होने वाली बीमारी है।
2: वही तो, अब साहब मेरे पीछे लग गए हैं।

0: करते हैं, मैं उस डॉक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा।
1: ठीक है, मैं कल आकर साहब को समझा दूंगा, अब तुम जाओ।
0: ठीक है साहब, जरूर आ जाना।

नीम हकीम खतराए जान, ये झलकी अभी आप सुन रहे थे रंग तरंग कार्यक्रम के तहत। भाग लेने वाले कलाकार थे संजय पांडे, सुमिता रॉय बर्मन, राजेश फाये, समीर शुक्ल, अनिल सोलोमन, सीमा शर्मा और सरोज गुप्ता। आलेख था श्रीमती आशा सोनी का और प्रस्तुति थी समीर शुक्ल की। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपराध फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
8: सुनिए।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा है गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है अजनबी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: इंसानियत, सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोट, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आइए अब सुनते हैं फ़र्ज़ फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार हैं पुरानिक साहू और साथी। पहले इनसे सुनते हैं ये निर्गुणी भजन।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुछ छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार थे पुराणिक साहू और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीईओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान आज विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। रायपुर के चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य स्तरीय पुलिस अकादमी में 33 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का कल शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नैतिकता, संवेदनशीलता और जनता का विश्वास पुलिस सेवा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कानून व्यवस्था के साथ समाज की सुरक्षा और सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। समारोह में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से आज प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीईओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुल के निर्माण के कार्यों की धीमी गति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुकमा जिले में रेत खदानों का आवंटन अब ई नीलामी से किया जाएगा। शबरी नदी स्थित 4 हेक्टेयर क्षेत्र की खदान के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया MSTC पोर्टल पर होगी। आवेदन 17 से शुरू होकर 23 जून तक लिए जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कबीरधाम जिले में 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत करेंगी। इससे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गरियाबंद जिले में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम ने 30 बसों की जांच कर दस्तावेज और सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया। चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जबकि अनुपस्थित 45 बस संचालकों को नोटिस जारी किया गया। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने 5 गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सकती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीईओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

रोटी कपड़ा और मकान जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं। 2 जून की रोटी के बाद दूसरी चीजें भी अहम हो जाती हैं। मेहनत से ही इन तीनों को हासिल किया जाता है। पेट में रोटी और तन पे लंगोटी के बाद सिर पर एक छत की जरूरत होती है। एक लंबे संघर्ष के बाद जाकर कहीं पूरा होता है अपने घर का सपना। इस कल्पना को साकार करने के लिए अब सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। उन्हीं में से एक है स्मार्ट रजिस्ट्री।

0: छत्तीसगढ़ में भूमि और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक बनाने के लिए स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली लागू की गई है। स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम से समय की बचत भी होती है और ये जन सुविधाओं का भी पूरा पूरा ध्यान रखने में सहायक है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति या जमीन की रजिस्ट्री पर स्टैम्प ड्यूटी यानी पंजीयन शुल्क में 50% की विशेष छूट दी जाती है। इस स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली की और भी कई विशेषताएं हैं। आप हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय।
1: पहले घपला उपला होतरी से काकरो जमीन काकर खाता और कोई खड़ा होके बेदारत रजिस्ट्री भी हो जाती। आज ऐसा क्रांति आज राजस्व मंत्री और हमारे पंजीयन विभाग के सहयोग से हमन एमा 10 क्रांति लाए हन कि अब ऐसा कोई फेक रजिस्ट्री नहीं होने वाला है और रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण हो जाएगी। 1 घंटा भी नहीं लगे, रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण भी हो जाएगी। एक भी व्यवस्था हमन करे हैं।

0: भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने ये माना है कि पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं देने में छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम बेहद प्रभावी है। अब राज्य के स्मार्ट ऑफिस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब सिर्फ एक राज्य की पहल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक दिशा बन रहा है। माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का कहना है,
1: नवा रायपुर में पहले परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का, और इसके तहत 10 अभी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इसे स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में और इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया सरलीकृत होगी। व्यक्ति सरकारी जो रजिस्ट्री कार्यालय वो भी चलता रहेगा, यह भी चलता रहेगा। दोनों विकल्प जनता के पास उपलब्ध रहेंगे। जनता से कोई भी अतिरिक्त चार्ज पंजीयन के लिए नहीं लिया जाएगा।

0: देश का पहला आधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। पहले रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला समय 4 से 6 घंटे होता था, जो अब घटकर 15 से 20 मिनट रह गया है। और ये संभव हुआ है आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम की वजह से। नए स्मार्ट कार्यालयों में आरामदायक लाउंज, एसी, फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, हेल्प डेस्क और स्वच्छ डिजिटल वातावरण की सुविधाएं हैं। यहां टोकन सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले के कारण बिना किसी परेशानी के तेज और पारदर्शी प्रक्रिया से काम होता है। इस सिस्टम में ऑनलाइन दस्तावेज, कैशलेस भुगतान और रजिस्ट्री के बाद सीधे मोबाइल पर अपडेट और खसरे में ऑटोमेटेशन की सुविधा है।
1: मेरा नाम संतोष कुमार साहू है। मैं उपपंजीयक कार्यालय नवा रायपुर में उपपंजीयक के पद पर पदस्थ हूँ। यह कार्यालय स्मार्ट पंजीयन कार्यालय है। इस कार्यालय में लोगों के लिए पंजीयन की तीव्र एवं पारदर्शी सुविधा शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ सामान्य कार्यालय में जहाँ वेटिंग हॉल और शौचालय अन्य सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं रहती, लेकिन इस स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में पक्षकारों के लिए इंतजार करने के लिए वेटिंग हॉल रहते हैं, अलग से फीमेल मेल टॉयलेट अलग अलग उपलब्ध हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन का कार्य किया जाता है, जिसमें पूर्णतः पारदर्शी और तीव्र प्रक्रिया का NGDRS के द्वारा उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ इस छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नवा रायपुर के अतिरिक्त रायपुर के विविलन टावर में, सड्डू में, अभनपुर, हिल्दा और रायगढ़ जिला में भी स्मार्ट पंजीयन कार्यालय बनाए गए हैं। साथ ही और भी नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों का बनाया जाना प्रस्तावित है। स्मार्ट पंजीयन से क्योंकि प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है, इसलिए यह पूर्णतः पारदर्शी है और ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन होता है और EKYC के माध्यम से पक्षकारों की जांच होती है। साथ ही तुरंत नामांतरण हो जाता है। जैसे ही पक्षकार क्रय विक्रय के दस्तावेज का प्रस्तुत करते हैं, पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, वैसे ही वह नामांतरण उस दस्तावेज का नामांतरण भी हो जाता है, पक्षकार के नाम से वह संपत्ति आ जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया जो है बहुत तीव्रता से संपन्न होती है और साथ ही पक्षकारों को उनके संपत्ति में नाम भी है उसका 10 दिन आ जाते हैं। तो की संभावना तो लगभग नगण्य है, क्योंकि जो दस्तावेज जो भी चीजें हैं पहले पक्षकार के नाम से रहेगी, उन पक्षकार वो ऑनलाइन में पहले सत्यापन होता है कि उनके नाम से है जमीन या नहीं है, और उनके नाम से जमीन है वही जमीन को वह बेच पाता है। और जैसे ही पंजीयन होता है तो विक्रय होने के पश्चात में वह जमीन दूसरे पक्षकार क्रेता के नाम पर नामांतरण हो जाता है, तो तुरंत ही, तो उससे संभावना तो लगभग नगण्य है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में, खासकर रायपुर में अभनपुर, हिल्दा, नवा रायपुर, बेबीलोन टावर और सड्डू में है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ में भी स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रारंभ हो चुका है।

0: छत्तीसगढ़ के स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालयों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिक अनुकूल वातावरण अत्यंत सराहनीय है। स्मार्ट रजिस्ट्री की सुविधाओं के कारण नागरिक खुश हैं। जटिल प्रक्रियाएं अब आसान जो हो गई हैं। इतना ही नहीं, अब यदि कोई चाहे तो घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भी कर सकता है। आधुनिक तकनीक पर आधारित स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली अब हर नागरिक की साथी बन गई है।
1: मैं प्रवीण शुक्ला बलौदा बाजार का निवासी हूँ। मैंने 3 दिन पहले रजिस्ट्री कराई और 10 मिनट के अंदर ही नामांतरण हो गया। जिस प्रक्रिया में 5-6 महीना लग जाता था, समय, ऊर्जा और पैसा भी लगता था, वो मात्र 10 मिनट में हो गई। मैं इससे अचंभित हूँ और सरकार के इस कदम से बहुत खुश हूँ। सरकार का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। ये एक नई क्रांति है। आई एम ए हैप्पी कस्टमर ऑफ विष्णुदेव सरकार। और मैन्युफैक्चरर जब भी कंज्यूमर से मिलता है, कंज्यूमर को फायदा ही होता है। छत्तीसगढ़ की जनता को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा।

स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का एक ही मूल मंत्र है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इसी तर्ज पर प्रदेश भर में 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य है। स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम ने

CGNIC इनमें जाकर ऑनलाइन भुइया में जाकर सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन में संबंधित उपपंजक रजिस्ट्रार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उपपंजक कार्यालय में उपस्थित होकर वहां पे मतलब प्रोफार्मा में एक निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी भर के संबंधित व्यक्ति की जो आवेदन किया है उनका और वर्ष रजिस्ट्री का वर्ष संभव हो तो रजिस्ट्री तारीख जैसी जानकारी देने से और निर्धारित शुल्क 100 रुपए जमा कर प्रति वर्ष 100 रुपए जमा करने के पश्चात 2-3 दिन में उक्त खसरे की जानकारी उस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी जो प्रॉपर्टी वो ले रहे हैं। भुइया पोर्टल में जाकर ऑनलाइन जांच के लिए छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है जो रेवेन्यू CGNIC.in, उस पर जाकर ऑनलाइन खसरा नंबर या उस व्यक्ति का नाम डालेंगे तो अभी वर्तमान में कौन है उसका स्वामी ये पता चल जाएगा। भुइया पोर्टल ये बहुत उपयोगी चीज है। ये तो एक भुइया पोर्टल जो मैं बता रही हूँ रेवेन्यू CGNIC वाला, इसको तो कोई भी व्यक्ति यदि डालेगा ये वेबसाइट पर जाके यदि देखेंगे ना सर्च करेंगे तो ये दोनों तरह से सर्च हो जाता है। एक तो उस व्यक्ति के नाम से जिसकी इनको सर्च करना है जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दूसरा खसरा नंबर डालने से, दो तरह से ये ओपन होता है। दोनों ही तरह से इसको आप देख सकते हैं इस पे जाकर वर्तमान में उसके मालिक कौन है। यदि किसी मूल खसरे का यदि भुइया में चले गए और उसका पंजीयन हो चुका है, मान लो बटांकन हो गया है, तो जो सेल कर रहे हैं उनसे उनका बटांकन नंबर पूछ के, क्योंकि जो नंबर डालेंगे वो भुइया उसका संबंधित खसरे का जानकारी मिल जाता है। यदि कॉलोनी शहरी क्षेत्र में है तो निकाय सीमा में है तो उसका एक विशिष्ट प्रॉपर्टी आईडी होता है, नंबर होता है। उस आईडी को दर्ज करते ही कॉलोनाइजर का नाम और विवरण सामने आ जाएगा। इसके अलावा कॉलोनाइजर का नाम डालकर भी सर्च किया जा सकता है, इससे यह पता चल जाएगा कि कॉलोनाइजर ने वह जमीन मूल रूप से किसे खरीदी थी। और अगर यदि किसी कॉलोनी में 50 प्लाट है तो उसमें किसी एक विशेष प्लाट की जानकारी चाहिए तो क्या करें, यह है। जैसे तो सबसे पहले उस पोर्टल में कॉलोनी का नाम और उसका खसरा नंबर सर्च करना होगा जिससे पूरे कॉलोनी का लेआउट और विवरण दिखाई देगा। सबसे जरूरी बात यह कि सबसे पहले B1 यदि एग्रीकल्चर लेंगे तो B1 देख लें, और फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है तो टैक्स रसीद देख लें, क्योंकि फ्लैट में मालिक का ना हक जो होता है वो तो उस मालिक का ही होता है फ्लैट में, लेकिन टैक्स रसीद में जो वर्तमान विक्रेता है वो उनका टैक्स पट रहा है कि नहीं। और एग्रीकल्चर में तो B1 ही है मेन, तो यह मैं जाकर सर्च करें खसरा नंबर और नाम से। और बाकी 30 साल का सर्च करा सकते हैं उपपंजक कार्यालय से कि पिछले 3 सालों में इन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल तो नहीं कर दिया है। जब भी जमीन खरीदे तो एक बार भुइया पोर्टल में जाके या ऑफलाइन उपपंजक कार्यालय में संपर्क करके और पूरी जांच करने के बाद ही प्रॉपर्टी ले, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को परेशानी ना हो या धोखाधड़ी का शिकार ना हो, अन्यथा भविष्य में कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान का सामना उसको करना पड़ सकता है। इसलिए सारी जांच इस प्रकार की करने के पश्चात ही वो प्रॉपर्टी ले।

0: नवा रायपुर में स्थापित आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को द्रुतगामी, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है। अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने के बजाय नागरिक अनुकूल माहौल में रजिस्ट्री की राह सुगम हो गई है। नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों को नागरिकों का सुखद और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है।
1: नमस्ते, मैं अंजलि तिवारी, उप पंजीयक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय सद्दू रायपुर। स्मार्ट पंजीयन की प्रक्रिया में पक्षकार द्वारा NDDRS की साइट में जाकर संपत्ति और पक्षकार का पूर्ण

जानकारी भरा जाता है, वह अपने सुविधा अनुसार समय स्लॉट में अपॉइंटमेंट लेते हैं। पक्षकार अपने टाइम स्लॉट में उपस्थित होते हैं, जहां उनका फोटो, ईकेवाईसी और साइन लिया जाता है। 15 से 20 मिनट में पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है और सुबह में आपके माध्यम से संपत्ति का एग्जैक्ट लोकेशन फोटो के साथ लिया जाता है। रजिस्ट्री पूर्ण होते ही व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में एसी की सुविधा, वेटिंग लाउंज, शुद्ध पेयजल, फ्री वाईफाई, हेल्प डेस्क तथा प्री प्रेजेंटेशन काउंटर जैसी मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्मार्ट पंजीयन प्रक्रिया में पेपरलेस और डिजिटल है। यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिफिकेशन आता है, कैशलेस पेमेंट होता है, डिजी लॉकर की सुविधा दी जाती है। स्मार्ट पंजीयन में B1 खंड 1 नक्शा, पक्षकार की ID की जरूरत पड़ती है तथा सुगम ऐप के माध्यम से लोकेशन की फोटो अपलोड की जाती है। उसके उपरांत 15 से 20 मिनट के अंदर उपस्थिति के पश्चात प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है। इसमें केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है। स्मार्ट पंजीयन में ई के वाई सी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ई के वाई सी के माध्यम से जो फर्जीवाड़े हो जाते थे, जिसमें किसी और पार्टी द्वारा उपस्थित होके गलत फर्जी रजिस्ट्री करवा दी जाती थी, वो बच जाता है क्योंकि ई के वाई सी से उनकी पहचान कर ली जाती है। सुगम ऐप के माध्यम से एग्जैक्ट प्रॉपर्टी का लोकेशन पक्षकारों को पता चल जाता है। तो ये सब सुविधाएं उनसे मिली है। साथ में समय की बचत होती है। पहले कम से 1 से 2 दिन मिनिमम लग जाते थे, अब सेम डे डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक दिन में अपने पास 50 से 60 रजिस्ट्री कर सकते हैं। रायपुर में अभी सड्डू ऑफिस है जो श्रीराम बिजनेस पार्क में है, नया रायपुर में है CBD में, और तिलदा नेवरा में एक ऑफिस है। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 10 रजिस्ट्री ऑफिस को स्मार्ट पंजीयन बनाया गया है और साल भर में पूरे रजिस्ट्री ऑफिस को स्मार्ट पंजीयन ऑफिस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फर्जीवाड़ा नया KYC इंट्रोड्यूस किया गया, KYC पहले नहीं होता था, और डिजी लॉकर की सुविधा देते हैं जिसमें दस्तावेज वहीं उपलब्ध हो जाता है डिजी लॉकर में।

0: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय प्रदेश में सुशासन और नागरिक सुविधाओं के नए युग की शुरुआत है। इस पहल से कल्याणकारी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ और भी सशक्त बन गया है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है। स्मार्ट रजिस्ट्री ऑफिस सरकार की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष परिणाम है। इससे नागरिकों के जीवन में सहजता तो आई ही है, साथ साथ उनका सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। आधुनिक स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम ने सुशासन की एक नई पहचान को स्थापित किया है।
1: पहले हमें रजिस्ट्री के बाद पटवारी के पास जाना पड़ता था, फिर नामांतरण की प्रक्रिया होती थी। अब क्या हो गया है, ये डायरेक्ट हो गया है। यहाँ रजिस्ट्री के तुरंत बाद ही नामांतरण हो जाता है और नामांतरण के बाद B1 में दिखाने लगता है। आपका जो नाम रहेगा वो B1 में तुरंत चढ़ जाता है।

प्रदेश वासियों के लिए ये अत्यंत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देश भर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग ने राज्य के पंजीयन और मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों की सराहना की है। नागरिक केंद्रित इन सुधारों ने भविष्य की तस्वीर में खुशहाली के रंग भर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के स्मार्ट रजिस्ट्री सिस्टम के तहत पंजीयन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण से लेकर सेवा वितरण सुधारों तक की लंबी फहरिस्त है। दरअसल ये सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म की जमीन तैयार कर रहा है, जिस पर खड़ी होगी उज्जवल भविष्य की शानदार इमारत। नागरिक सुविधाओं में इजाफा करना ही छत्तीसगढ़ सरकार की दृढ़ इच्छा है। यही वजह है कि लोकतंत्र में आस्था की पताका थामे शासन, प्रशासन और नागरिक एक साथ बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में अभी आपने सुना समीर का लिखा गीत, संगीत था नदीम श्रवण का और फिल्म का नाम था बलमा।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनते हैं समीर का लिखा गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है ऐतराज़।

लीजिए अब सुनते हैं निखिल विनय का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है ललित पांडे ने। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की। फिल्म का नाम है बेशरम।

द डर्टी पिक्चर्स। लीजिए सुनते इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान के स्वर में। बोल लिखे हैं रजत अरोरा ने और संगीत है विशाल शेखर का।

रब ने बना दी जोड़ी। लीजिए सुनते हैं इस फिल्म का गीत रूप कुमार राठौर के स्वर में। बोल लिखे हैं जयदीप साहनी ने और संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। श्रोताओं, हमें खेद है कि ट्रांसमीटर में विद्युत अवरोध के कारण आप हमारा प्रसारण 10:54 से 10:56 तक नहीं सुन पाए। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर

0: पर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच LNG ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। फीफा विश्व कप में केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दिग्गज टीम स्पेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। समूह गान शिक्षा कार्यक्रम के तहत अब सुनते हैं कन्नड़ भाषा का पाठ। रचनाकार है BR गीता।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए।
1: हाडु
0: तिहवु हारु तिहवु
1: हाडु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खग कुला
1: कडल करेय खग कुला
0: यनी
1: तो मुगिला उद्द अगला जी की दनी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है। हाँ?
1: हाँ।
0: आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुवा बगे
1: व्योम कानुवा बगे हसीव मरेसी वांछे मेरेसी
0: दिगंत
1: सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो
1: आसे हक्कीगे
0: मुक्त
1: गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे।

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता ताकी ता ताकी

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: समूह गान शिक्षा कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे कन्नड़ भाषा का पाठ। रचनाकार थे B.R. गीता।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: आइए अब सुनते हैं समूह स्वर में देशगान।

इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब सुनते हैं सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज करते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ। बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है कस्मे वादे।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: हम शकल, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

श्रोताओं, हम आपको सुनवाना तो चाहते थे फिल्म हमशक्ल का गीत, लेकिन आपने सुना फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। बोल लिखे थे कमर जलाल आबादी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो लीजिए अब सुनते हैं फिल्म हमशक्ल का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हूँ, फिर पढ़ के भुला जाते हूँ।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: तो काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एखर असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 बजे तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: लीजिए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है जोशीला।

राहुल देवबर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनते हैं रमेश पंत का लिखा है गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है अधिकार।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सकती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान आज विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इस तरह से आयोग ने बिजली दरों में 6.23% की औसत वृद्धि की है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यह प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। छात्रों को आवेदन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा सभी महाविद्यालयों को उनके यहाँ की आवेदित छात्र छात्राओं की सूची प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय प्राप्त सूची में पात्र छात्र छात्राओं की गुणात्मक क्रम में मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश देंगे। पहली मेरिट लिस्ट 27 जून को, दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को और तीसरी मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को जारी की जाएगी। सकती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सकती जनपद पंचायत के सीओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लक्षण भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और कबीरधाम जिले के 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत का कार्य करेंगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण की शुरुआत 15 जून से हो गई है। इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ ही गरियाबंद, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईगंज गंडई जिले के संवेदनशील गांव में भी अभियान संचालित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर किया स्वागत। यूपीएससी ने घोषित किए इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। और सक्ती जिले में एसीबी ने रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीओ सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह यह तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
3: साथियों नमस्कार।
4: नमस्कार साथियों।
3: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
4: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
3: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
4: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
3: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
5: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
6: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
5: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
6: यस।
4: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
3: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
4: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
7: सू
5: जी,
7: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
5: जी हाँ
7: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
5: जी डॉक्टर साहब।
7: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
5: मैं पूछती हूँ।
3: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
4: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
8: 15, 14
5: क्या?
3: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
8: 13, 12, 11 ओह
5: जॉन्सी,
8: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
4: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
5: क्या गिन रही हो?
8: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
5: क्या कम हो गए हैं?
8: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
3: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
5: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
8: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
5: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
8: Only 4
5: मेरी तरफ देखो
8: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
5: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
8: 3 पत्तियां।
5: पत्तियां?
8: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
5: हाँ हाँ,
8: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
5: क्या लगता है?
8: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
5: क्या जॉन्सी?
8: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
5: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
8: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
5: हाँ
8: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
5: ओह जॉन्सी।
3: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं।

0: एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
2: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: टू, ओह, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
0: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।

0: वहीं पर है अभी, वो नहीं गिरा सू।
1: हाँ जॉनसी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
3: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉनसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉनसी, कैसा महसूस कर रही हो?
4: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
4: थैंक यू
1: जॉनसी। एक बुरी खबर भी है।
4: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
4: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
1: हाँ।
4: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
4: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
4: ओह गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
4: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
4: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
4: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
5: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंच ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
4: ओह,
1: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
4: पेंटिंग?
1: हाँ।
4: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
4: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
4: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
4: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
4: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉनसी,
4: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
4: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
4: मास्टरपीस।
1: हाँ
4: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
5: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बने। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। श्रोताओं, ट्रांसमीटर में विद्युत अवरोध के कारण आप हमारा प्रसारण 12:16 से 12:18 तक नहीं सुन सके, इसका हमें खेद है। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आप मन के गीत।

कार्यक्रम के पहली गीत ला स्वर दे हवें खुमान सिंह यादव लता खापरडे और संगवारी मन। ईमेल भेजे हवें हमारे संगवारी मन हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव, मानस शांति रिचा गायत्री वैष्णव, गणेश धाम परसुली ले जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी, ढोडरी घोटियाले महेश कुमार निषाद, रामभरानी, निखिल कुमार, नैतिक कुमार, पुष्पांजलि और स्वप्निल कुमार, साकराले नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी, दिवेंद्र प्रताप, नेहा, मिलिंद, प्रणय और रुद्रांश प्रताप साहू, गेंदा टोला बाजार चौकले बीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि, योगिता और गजेंद्र गुप्ता, पलारी ले हवें प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल और यशस्वी, भंवरपुर ले राधेश्याम देवांगन, चंपा देवी, राजू और जगदीश देवांगन, खमरिया बिलासपुर ले साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, भानपुरी मुसरा ले आत्माराम यादव, सुखदेव, विदेशी, होमेश्वर, मनेश्वर, लक्ष्य और तुलसी यादव, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल और भारती बघेल, आप मनहो लघान पंडरिया ले चरौदा बार नवापारा ले नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, बनियापारा धमतरी ले हवें रामचंद माखीजा, सविता, स्वाति, माही, पूजा छुटकी और शरद कुमार डोडवानी, अंबागढ़ चौकी ले रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, भड़गा कोदवा गुड़ान ले श्यामसी मरावी, राजकुमारी रानी, रजनी, राहुल और पूजा, कुई ग्राम भंगी टोला ले हवें ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई, फिरत राम और मालती धुर्वे, पाहरा अहिवारा ले पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया और दतरेंगी ले भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र और यही गीतला सुने खातिर पाती पठोए हवें भाटापारा ले बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोना डीहले, सुब्रत चौधरी, कटोरा तालाब रायपुर ले हवें मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवी देवांगन, पहदा कोरबाले समीलाल कुर्रे, सावित्री देवी, सरब बुंदियाले गब्बर साहू, निर्मला देवी साहू, कोटा रायपुर ले अरुण वर्मा, अनिल, ईश्वर वर्मा, उदिनेश सेन, शिक्षक नगर दुरुग ले हवें राकेश वर्मा, सचिन अववाणी वर्मा, रामनगर रायपुर ले राजेश अंबादे, शशिकला और पूजा अंबादे और कोटा रायपुर ले हवें योगिता वर्मा, रुचि, खुशी और ओजल वर्मा। तो आप मन के पसंद में सुनन ये गीत।

कार्यक्रम के अगला गीत ला स्वर दे हवे ममता शिंदे और यशवंत शिंदे। ईमेल भेजे हवे हमारे संगवारी मन दईहान बांधा बाजार ले हरिओम साहू रेवा राम रानू सरस्वती प्यारी राम और परमानंद साहू। इहिंच ले हवे कुमारी देवी पार्वती देवी ज्योति रानी सृष्टि कोमेंद्र हीरेंद्र रूपल और जगोतिन। हजदा नंबर दूले हवे कमलेश साहू जितेंद्र उपायल बाग बहरा भदर सिले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन। कन्नेवाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी राहुल साहू आशीष टेमरे वेद प्रकाश सहारे बंटी उंदरा दादू और अभिलाष। कुरासी भैसा रायपुर ले पवन कुमार साहू क्रांति देवी पंकज सुष्मिता उदीपिका। करही भदर ले शारदा निर्मल कुमारी लोचन विद्यार्थी गीतिका गुड़िया लक्ष्मी गिन्नी लल्ली और पुरुषोत्तम निर्मलकर। कोटना पानी डोंगरगढ़ ले कैलाश कुमार मंडावी लीलेश्वरी रूपेश कुमार गरिमा नोनी छनिष्का औ दादू। पाहदा पलारी ले नीतीश कुमार तनुजा ईशांत लखनलाल औ सावित्रीबाई देवांगन। रिंगनी ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा। बिलईगढ़ ले हवें खीखराम देवांगन रीनू रजनी औ प्रियंका। मेघापारा चिल्फी ले रामकुशल पटेल संतोषी दीपांशु दिव्या दीपांजलि दीपक और टेकलाल पटेल। भाटापारा ले हिमकेश्वर साहू करण राहुल चंपा साहू। मोहला मानपुर ले विष्णुराम यादव बस्ताबाई कविता अनेश गीताशी और वैभव। पथरिया भरेवा ले चंदूलाल सिंह रौल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंह रौल। पाती पठोए हवें जामुल ले विकास वर्मा खुशी ग्रंथ वर्मा संजय उपूजा प्रधान। सिरी गातापार ले लावण्या साहू उपासना देवराज ओम कुमार पुष्पराज प्रभुराम साहू। इहिले हवें धनेश्वरी साहू ओम प्रभा बिंदेश्वरी नागेश्वरी चमेली भूमिका मोनिका ओ पूनम साहू। कोरदा ले कलीराम यादव छतराम और शेषराम। कसरोल ले हवें समयलाल साहू कौशल्या देवी ओ मीनाक्षी। और रुआ बांधा भिलई ले सुशील जैन सेया कल्पना सौरभ शौर्य ओ शुभम जैन। आवा सुनन एक गीत।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र ले आप मन सुनत हो कार्यक्रम आप मन के गीत अगला गीत ला सुने खातिर ईमेल भेजे हवे सौंगा मगर लोडले फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित कुमार देवी करानी लोहारी डी कवर्धाले अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी खुशांत और निशांत पुतकी कला कवर्धाले राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर नयन सुमांशु पांडे लोरमी तिलकपुरले चंद्र कुमार मरावी चंद्रेश कुमार मालती और मयंक सिमगा ले रमेश कुमार यादव माया रिंकू सनी और कोमल यादव सहिया मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी और पूनम रसेड़ा ले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश संध्या कीर्ति और डिकेश साहू पोटिया कला दुरुग ले हवे संजय साहू सुजाता सीमा और शशांक लोरमी चचेड़ी ले शंकर कोलाम संतोषी संजय संध्या और शिवम छुई खदान ले हवें भागीरथी धुर्वे संजीव कुमार तारिका वीणा और मोक्ष नवागढ़ कटेले भूधर प्रसाद वर्मा चंद्रकांत शारदा और जीत वर्मा भाटापारा ले विष्णु साहू पूरब वीरा हर्ष कुमकुम और योगेश्वरी साहू देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू गणेश राम और अश्विनी वर्मा आवरा डबरी ले श्यामलाल साहू मोगरा संगीता केसरी चिंकी और प्रीति साहू चिरमिरी कुरासिया ले इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ और राम सहोदर पाती पठोय हवें भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेंद्र दुष्यंत और राघवेंद्र बेमेतरा ले नेतराम साहू मनीराम लक्ष्मी बिंदु डिम्पल रमेश्वर सेखन राम अमरीकाबाई लेखनी रोशनी चहक साहू इहेले हवें सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा हेमलता कमलकांत वीरेंद्र व्रजकांत सारथी बेमेतराले ही हवें पूजा आरती भाव्या और सुषमा सारथी पटपर डोंगरगढ़ ले रामगोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार कविता और जयंती ध्रुव बेमेतराले राज और सारिका वैष्णव और दतरेंगी ले हवें द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा तो आप मन के पसंद में सुनवावत हैं खुशबू झा के गाए ए गीत

कार्यक्रम के अगला गीत ला सुनना चाहते हैं हमारे संगवारी मन तखतपुर ले मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी, कुटेना पांडुका ले टीकम साहू, गुरवा भूषण, कुसुम झामेश्वरी, जीतू लेखू, गोपाल गेंदी, पुष्पा भोला, दीप्ति लक्ष्मी, लवली शशि, वासु वीरांश, ओजल काव्यांश और कुश, तेंदु भाटा मगर लोडले, उमेन कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका, पोषण नूतन, सुरेंद्र यशस्वी, भीम खोज तरपोंगी लेहवें, संतोष गुप्ता, हितेश होमेश, लक्ष्मी प्रतिभा, शीतल गुप्ता, फुलझर घटा रानी ले, योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी यामिनी, मुस्कान ओ हर्षिता साहू, आमा खुर्रा रेंगा खाले, देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्षप्रिया गीत सरगम, चरडोंगरी पिपरिया ले तुर्काराम साहू, अजय कुमार, कुमारी इंद्राणी, माया जयकिशन, योगेश वासु, हेमा उराधिका, बन बघेरा राजनाथ गावले, योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश और अंजलि, गिर्रा पलारी ले हवे, वीरेन साहू, सोनू आशीष और कपिल, मगर लोडले कुमारी और पूर्वांशी साहू, धरसी वाले छेदूलाल यादव, सीता अर्चना, रुणा अनुराधा, अल्पना यादव, रानू खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी, संतोषी नगर रेपुर ले छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, प्राची, प्रियल, अनुराग, अभिषेक, गुड्डू, कान्हा यादव, जूना बिलासपुर ले सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, कान्हा और आदित्य, उडान ले परमानंद साहू, पद्मिनी और सागर, यवतमान ले हवें संतोष खड़से और विनोद खड़से, और पाती पठोए हवें हमारे संगवारी मन, लच्छनपुर ले रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, भाटापारा ले नारायण यदू, पुनिया, राकेश और आरती यदू, बिलरगांव ले मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन, भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर, असरफ, अयाज, अल्फैज खान, बिल्हा ले शेख नासिर, महजबीन बानो, खरागढ़ ले रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, झरना, प्रेरणा, दीक्षा और शिक्षा, अमलीपदर ले निकुंज तिवारी, लाची और ममता तिवारी, और सिमगा ले हवें सविता जैन और मोनिका जैन, तावो सुनन ये गीत जिला स्वर दे हवें मंजू चतुर्वेदी और भगवती साहू।

कार्यक्रम के आखिरी गीत ला स्वर दे हवाए मंसूरी सिंह और सत्यभामा सिंह। ईमेल भेजे हवाए बलौदा छत्तीसगढ़ ले दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद और समृद्धि पटेल, संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, पलारी ले हवाए प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा, निखिल और यशस्वी, लच्छनपुर ले विश्वनाथ साहू, पंकज, तिरुपति साहू, लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ, रोहासी ले मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक और जानकी, कोहका भिलई ले उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी, धमधा ग्राम सुखरी कला ले अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, खोंदला उदयपुर ले जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा और कलेश्वर सिंह, नेवई उतई ले विक्की देवांगन, उर्वशी, जतिन, जयंत और कुनिका, गंडई पंडरिया ले हवें दरियानमन मोटवानी, अनिता, राजेश और मुकेश, गंडई टिकरी पारा ले जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ और ऋचा, भाटापारा ले पद्मिनी, शीला यादव, गुनगुन, अदिति, खुशी और तनुश्री, इन्हें ले हवें दानसी रावत, शुभम और सौरभ, चांदनी चौक गंडई पंडरियाले पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, अड़ार नाथघाट ले हवें माखन वर्मा, चांदनी, गोपी, भूपेश और दीपेश, सहसपुर लोरमीले छोटकू साहू, मोहित राम, लोकेश, रामकिशन, दुलीचंद और सतीबाई, खल्लारी भीम खोज ले जीएल साहू, सरोज, छोटी और पिंकी, परसा टोला ले ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी, तुषारनी और खुमेंद्र, दनिया खुरले गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज और सूरज, मिचका सुंडुले भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा, लिखिल और तरुण दीप ओ यही गीतला सुने खातिर पाती पठोए हवें बंगला मटियाले शिवकुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, बुड़गहन ले रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, खट्टी महासमुंद ले हवें सुभाष शर्मा, छाया, कुमुदनी, ओंकार शर्मा, करण तिवारी, गरिमा, अर्जुन भारती, मोतियो, हेमलता तिवारी, भाटापारा ले मिलवदास कुलदीप, संतोष, संदीप, प्रजीत, लक्की, यश कुलदीप, विवान, वनिका, नीलाक्ष कुलदीप और भाटापारा ले ही हवें अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद। तावो आप मन के पसंद सुनन एक गीत।

इही गीत संग आप मन के गीत कार्यक्रम इही सिरावत है। कार्यक्रम पर गीत लजोरे रहीन बीर भानसाहू ता अब एक कार्यक्रम ले शुभ्राला देवो बिदा जोहार।

0: आप मन के गीत, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 1 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन सकते हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म अजनबी से आवाज़ें कुमार सानू और सुनिधि चौहान की, गीत समीर का, संगीत अनु मलिक का है।

अजनबी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और सुनिधि चौहान के युगल स्वर में। गीत समीर का था, संगीत अनु मलिक का। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम के स्वर में फिल्म गरम मसाला का गीत। मयूरपुरी की शब्द रचना सुरों से सजाया है प्रीतम ने।

सोनू निगम के स्वर में फिल्म गरम मसाला का गीत अभी आपने सुना। मयूरपुरी की शब्द रचना को सुरों से सजाया था प्रीतम ने। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अंतिम प्रस्तुति फिल्म सोल्जर से, आवाज़ें अलका याज्ञिक और कुमार सानू की, गीत समीर का, संगीत अनु मलिक का है।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

स्पोर्ट्स कैन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:30 पर। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम आतंकवाद सुनिएगा रात 9:25 पर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित राजन साजन मिश्र का गाया राग मधुकौंस। अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम घर आंगन में आज के गोट का विषय होगा प्रवासी मन के आर्थिक सहयोग और परिवार। साथ ही सुनिएगा डॉक्टर इंद्राणी साहू का कविता पाठ, दादी माँ का नुस्खा और आनंद लीजिएगा गीत संगीत का। युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में अपन गोट का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। साथ ही होगा क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। समय 5:10 पर। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा सोयाबीन के उन्नत और वैज्ञानिक खेती। शाम 7:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में मानसून के पूर्व में पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान, बचाव और उपचार तथा टीकाकरण का महत्व, इस विषय पर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर के एल राम, अतिरिक्त उप संचालक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मांढर, संचालन भूषण निषाद का, प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। रात 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, कलाकार होंगे पुराणिक साहू और साथी।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनिएगा शाम 6:30 पर। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे आज रात 10 बजे और चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2 बजे, दोपहर 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दोपहर के ठीक 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनैया सबो बहनी मन ला आशा के राम राम। बहनी हो अपन घर परिवार डी डोंगर और अपन जन्मभूमि इमा रहे कि जन सुख होते ना ओकर बरोबरी सरक के सुख ले तको नहीं करे जा सके। फिर बदलत बेरा मा बाढ़त खर्चा जिंदगीला बढ़िया और ज्यादा सुखी करे की इच्छा हमला दुरिया शहर और प्रदेश में जाके काम बूता करके ज्यादा पैसा कमाए खातिर रहे बर पड़ते। लोग लेकर पढ़ाना लिखाना है कि सियान मनखे के देखभाल बने ढंग ले होवे उनकर स्वास्थ्य बने रहा है ये सबो खातिर दुख सुख ल भुला के दिन रात मेहनत करते जेकर ले परिवार खुश रहा है। और जब बाहर रहिया मनखे अपन कमाई के पैसा भेजती ना भेनी हो तो सिर्फ वो पैसा नहीं रहा है बल्कुन अपन माया अपन जिम्मेवारी और अपन सपना ला तको भेजते। फिर बाहर रहिया मनखे के अपन दुख पीरा ला उही मन जानी तिहार बार है कि सुख दुख है या फिर परिवार के कोनो विशेष मौका मा अपन मया ले दुरिया रहते हो मन हा महतारी के मया होवे कि बाबू के दुलार और लेका मन के हाँसी लसुरता करके उमन अपन मन ला मड़ा लेते कहान। अभिनियो परिवार और प्रवासी मनखे के नता जोन होते ना वो भरोसा त्याग और मया के डोरी ले बंधाए रही थे। जी हाँ परिवार उनकर हिम्मत बनते उन्हें प्रवासी मनखे के मेहनत परिवार के आधार बनते काबर की भाई उही पैसा ले घर के खर्चा नोनी बाबू के पढ़ाई लिखाई कहान की बर बिहाव करई खेती किसानी के काम बुता तको सुधरते माने आर्थिक स्थिति तको सुधार होते परिवार बर भविष्य बर बचत करके उन्नत हो सकत है या फिर खेती किसानी कोनो धंधा पानी में लगा के हम अपन आपला उन्नत कर सकत हन। फिर यहू बात तको तो सही आए ना बहनी हो कि जिया नफा है वहाँ नुकसान तको है। भाई परिवार दुरिया रहे ले संसो फिकर रहे थे महतारी या फिर बाप दोनों में से कोनो अगर एक जन संग में नहीं है तो लेखा मनु पर तको अलग प्रभाव पड़ते सियान महतारी बाप मन अपन आपला अकेला महसूस करते और बाहर रह या प्रवासी मनखे के ऊपर तको जिम्मेवारी के संसो रही थे कहान कहे कि माने प्रवासी मनखे के आर्थिक सहयोग परिवार भर फायदा के तो रही थे काबर की भाई परिवार के तरक्की हुई तो समाज गांव तको समृद्ध हुई फिर एकर संग सामाजिक और भावनात्मक परेशानी तको लगे रही थे एकर स्थिति आर्थिक विकास और परिवार के संबंध दोनों ल संभालना बहुत जरूरी हो जाते। तबे तो करथे अगोरा बाबू के दाई और संग मा रद्दा जोथे जन्म दे माई सियनहा बाबा की तको आंखी मिचमिचाते और जहोरिया भाई तको मन लमड़ा थे रही थे अगोरा आही जोड़ी जावर दिन बादर आगे धर के पहला नांगर।

0: शांति यादव और इंदिरा चंद्राकर के स्वर में अभी सुनें ये बेरा के गीतला। अभी नहीं हो कहीं कविता सिर्फ शब्द नहीं हुए बल्कि अंतस के आरोह थे कहान आओ अपन विचार ला प्रगट करे के साधन तको होते और जब यही शब्द मन हमार हृदय ला छूते और हमार भाव संग जुड़ते तो कविता बन जाते और भाव दुख के सुख के प्रकृति के मौसम के चिरई चुरगुन भर तको उपस्थे तो ऐसने सुघर अपन भाव ला शब्द में गूंथ के कविता के माला बना के ला है हमार कवियत्री बहिनी श्रीमती इंद्राणी साहू हा आज के हमार क्रम कविता पाठ में। तो आवो सुनन कवियत्री इंद्राणी साहू के कविता पाठ।
1: बहनी हो जय जोहार, आप जम्मो झन कैसे हो? अभी भरे गर्मी के दोपहरी मा कूलर एसी के जुड़ हवा मा बैठ के घर अंगना कार्यक्रम सुनाई बड़ निक लागथे ना। तो चला आज हम इही गर्मी मा गर्मी के ऊपर एक ठन कविता सुनथन। आगी उछरत है जऊं हरहा, आगी उछरत है जऊं हरहा।

चट चट चट चट जरत भोंभरा परे पाँव माँ फोरा जी। अब परान ये बाँचे कैसे करत हमें सब जोरा जी। तरिया नदिया ठाड़ सुकागे आगी लगे पानी माँ। प्यासे जीव मरत हावें सब परगे हैं हलकानी माँ। जेठ महीना तन लाले सत जेठ महीना तन लाले सत जस परान ला खाए हे। आगे भैया भारी गर्मी भुइया हाँ थर्राए हे। स्वारथ माँ पर के मन खे मन काट डरिन रुख राई ला। पेड़ बिना अब कैसे पाही जुड़ छैया पुरवाई ला। बूंद बूंद हा मृत जैसे नोहर होगे पानी हा। भूंज डरत हे काया सबके

बूंद बूंद पानी बरे अब तो झगड़ा झंझट भारी है। गांव गली मा मार काट है, निकलत घलो कटारी है। चीरई चुरगुन घलो मरत है, ऐठ ऐठ बिन पानी के। अब तो चेत जवाओ संगवा।

धरती दाई सब जन ला गोहराए हे, आगे भैया भारी गर्मी भुइया हाथ राए हे। एक एक ठन पेड़ लगा के

बहनी हो, ऐसन गर्मी और ऐसन तापमान बढ़त हे, ये हम मनखे मन के करस्तानी के फल आए। हमरे मन के करनी ला हमी मन भोगत हन। पर्यावरण हा अतेक प्रदूषित हो गए हवय, ता पर्यावरण ला बचाए खातिर मोर एक ठने कविता सुनाओ। सुन लो जी सब संगवार।

व्याकुल हावे हस देवा, सोर लमालव कर सेवा, देथे उही हवा पानी, काट करो मत मनमानी। ए जी नास करत हर सुघराई, सुन लो कर चिल्लाई, चिटिक घड़ी मा कट जाथे, कई बछर मा बढ़ पाथे। ए जी जंगल ले।

बारी, कभू चला हूँ मतियारी, पर्यावरण बचाना है, भुइयां सरग बनाना है। ए जी सुन सा सुन लो जी सब संगवारी।

बहनी हो, हमन ला पर्यावरण तो बचाना है, संगे संग अपन तन अउ मन दोनों ला स्वस्थ बनाना है। अभी अवैया 21 जून के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाथे, ता आवाओ हमन प्रण लेथन कि हमू मन रोज अपन जिंदगी मा योग ला अपनाबो। अब ये कविता ला सुनथन। नित योग प्राणायाम ले सब रो

0: रन के घर शहर आऊ गाऊ माँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहनी हो सुघर कविता पाठ गर्मी के मौसम के अतलंगला और पर्यावरण पर संसो फिकर करत और स्वास्थ्य पर योगा के महत्व बतात कवियत्री श्रीमती इंद्राणी साहू के कविता पाठ हमन सुने बड़ सुघर लगी से और एकर बाद आवा सुनथन ये सुघर गीत ला।

बेतल राम साहू और संगवारी किश्वर मा अभी सुनेन ये गीत ला। अब इन्हीं हो सियान मन के मन ये कहते हैं कि जैसे खाबो अन्न वैसे हो ही मन। ये बात तो सोला आना सच है, काबर की भाई जैसे हमार खान पान रही वैसे हमार स्वास्थ्य रही, और जब स्वास्थ्य सही रही तो मन तो सही रहबे करही ना, और शरीर है ना भीतर ले स्वस्थ रही तो ऊपर ले स्वस्थ दिखबे करते बहनी हो। और ओकर बाद भी कहूँ शरीर में नानमून समस्या आवत है तो हमार घर माँ हमार रंधनी खोली माँ कतको निशन मसाला है जिकर हम प्रयोग करके अपन स्वास्थ्य लाम सुधार सकत हन, काबर के हमार सियान मन यही बतावें। तो आज दादी माँ के नुस्खा में हम ये बताना चाहबो कि जैसे भाई सुतई बैठई कहूँ ऊंच नीच हो गए या कुछ काम ज़्यादा हो गए तो का होते आँखी के खाले माँ करिया करिया दिखे बर लग जाते, या पढ़ा लगातार पढ़ाई लिखाई करथन ओमे पे इसने हो जाते। तो एकर बर का करना है, पहली बात तो अपन सोते बैठे के बेरल सुधारना है, और ओकर बाद बादाम के तेल के एक दो बूंद लेके आँखी के नीचे में लगा के रात भर छोड़ देना है। तो एकर ले का होते करियापन धीरे धीरे कम हो बर लगते, और इसने सुघर और स्वस्थ त्वचा पाए के तो सबो लक्षण रहते बेनी हो। और ये दूध दही बेसन शहद घीव एला तो हमन हमेशा उपयोग करत रहन, तो एमे भी का करन कच्चा दूध ल में थोड़ी कन चुटकी भर हरदी ल डार दन और डार के मुंह कान में बने मालिश कर लेवन। तो एकर ले का होते त्वचा के गंदगी तो साफ होबे करते और चमक तको बाढ़ते। और ई ढंग ले बाल ल कहूँ कुंवर करना है तो एकर खातिर जोन भी तेल हमन लगाथन ना तो में लिमऊ के रसा के एक दो बूंद मिला लेवन और ओकर ले अपन सिर के मालिश करन। तो एकर ले बाल कुंवर और चमकदार तो बनबे करी और संग में जोन रूसी मर रही थे वो हमन खत्म होते। अब इन्हीं हो हम यहू बात ल जानथन कि शरीर के जोन सबो समस्या रही थे वो पेट ले जुड़े रही थे, तो भाई पेट साफ रही तो शरीर स्वस्थ रही। तो एकर बर हमर रंधनी खुली में ही उपाय रही थे बताएं ना कि अजवाइन के पानी ला 10 दिन तक पिए ले, बिहनिया खाली पेट में हम पीलन तो गैस और पेट के जो जकड़न रही थे उमें बहुत आराम मिलते। और लहसुन के एक दो कलीला खाली पेट में चबा ले तको पेट के बड़कन समस्या खत्म होते भी नहीं हो। और वैसे बिहनिया कुनकुन पानी में थोड़ी कन लिमऊ के रसल निचोड़ के पीलन तो ओकर से भी हमला पेट में बहुत आराम मिलते। तो ऐसन ढंग ले खान पान में ध्यान रखत आहार विहार में ध्यान रखत हम अपन स्वास्थ्य ला बढ़िया रख सकत हन। और ये जानकारी के बाद सुनथन आव ये सुघर गीत ला।

दुखिया भाई औधुरवारा मरकाम के स्वर में ये गीत सुने के बाद बेनी हो आवासन जरूरी सूचना। शनिवार 20 जून 2026 के कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित हो छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी बर श्रोतामन के फोन कॉल के रिकॉर्डिंग बुधवार 17 जून 2026 के मंझनिया 12 बजे ले 12:30 बजे तक करे जाही। तो एकर बर हमार फोन नंबर ऐसा ढंग ले है 400-03-482, 400-03-483, 400-03-484 और रायपुर के बाहर के जो श्रोता बहनी है उमन एसटीडी कोड 0771 लगाए बर झन भुला ही। हमला आप मन के फोन कॉल के अगुरा रही बहनी हो जरूर फोन करहु और एकरे संग हमर जाए के बेरा तको होवत है। तो देवा अपन बहनी आशा लबिदा और लेवा हमर राम राम।

घर आंगन। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: दिल परदेसी हो गया। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण के स्वर में। सावन कुमार का लिखा गीत था, संगीत उषा खन्ना का था।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

चोर पुलिस, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। निदा फाजली की शब्द रचना, संगीत राहुल देव बर्मन का था। चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति फिल्म मधोशी से, आवाज़ें उदित।

0: उदित नारायण के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म मदहोशी से। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के

0: और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में जी 7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि जी 7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं, तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक FIVATEC शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का

0: सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
1: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित देशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: UNSC reform would be grossly inadequate.
4: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया।

0: महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

पत्थर के सनम। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। ये जब सुनिए फिल्म सीमा का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और शारदा की, गीत गुलजार का, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
5: सुनिए

मुकेश और सुमन कल्याणपुर के स्वर में गुलशन बावरा का लिखा गीत अभी आपने सुना। संगीत रवि का था, फिल्म का नाम था मॉडर्न गर्ल। अब एक सूचना सुनिए। शनिवार 20 जून 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फ़ोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहिनी के लिए श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 17 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर इस प्रकार है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत की अगली प्रस्तुति।

0: बेटी बेटे इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में, हसरत जयपुरी की शब्द रचना, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हों, फिर पढ़ के भुला जाते हों।
0: अरे तो सुने करना।
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

शागिर्द इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति फिल्म अभिलाषा से। स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने। एक बार फिर मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना, सुरों से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
1: वा G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों और भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक तथा अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेता आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति V. मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's seventh consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. The G7 summit holds immense strategic significance for India, as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Earlier, Prime Minister Modi departed for France after concluding his visit to Slovakia. The Prime Minister said the outcomes of his visit to Slovakia will go a long way in strengthening bilateral ties between India and Slovakia. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Details from our correspondent.
4: Thursday morning, the Prime Minister is scheduled to hold meeting with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till the afternoon. Later, he will participate in the Vivatech Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, Prime Minister will attend a community event and interact members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances showcasing India's rich heritage and strengthening people-to-people ties between India and France. Mahesh Sobre, Akashwani News, Paris, France.
3: The Supreme Court today sought response of the centre and states on a plea alleging misuse of the Unique Identification Authority of India issued Aadhaar cards as proof of citizenship, domicile and residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. A bench of Chief Justice Suryakant and Justice V. Mohana issued notices to the centre and all the states and union territories. The petition contended that the existing verification mechanism under Form 6 is inadequate and might allow individuals without proper supporting documents to be included in the electoral database. BJP President Nitin Naveen today highlighted the transformation in the country's infrastructure sector over the past 12 years under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Naveen said the country has witnessed rapid and comprehensive development that has strengthened connectivity and created new opportunities across regions. He noted that the national highway network has expanded from 91,000 kilometres to over 1 lakh.

मुद्दतें गुजरी मुलाकात हुई थी तुमसे, मुद्दतें गुजरी मुलाकात हुई थी तुमसे, फिर कोई और ना आया नजर आईने में। स्वागत करती हूं मैं प्राजिता आप सभी का मन भावन प्रोग्राम में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और ऐसी ही एक मुलाकात लेकर मैं आ गई हूं आप सभी के साथ, आपकी पसंद के गाने आप तक पहुंचाने के लिए। और ऐसी कई मुलाकातें हम कर चुके हैं, और आईने में देखिए हमें आप और हम ही नजर आते हैं। तो आपके गीत होंगे और हमारा चैनल होगा, बिल्कुल आप अपनी पसंद हमें लिखकर भेजेंगे fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी पसंद के गाने आप तक पहुंचाने की अब से लेकर 4 बजे तक। तो पहला गाना मैं आपको सुनवा रही हूं और इसके बाद आप अपनी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेजिए हम तक। साजन फिल्म से ये गाना आप सभी के लिए। ईमेल आईडी एक बार फिर से आप सभी के लिए दोहरा देती हूँ, fmgoldaiadelhi@gmail.com। आप फिल्म का नाम लिखें, गाने के बोल लिखें और इसे जल्दी से सेंड कर दें हमारे ईमेल आईडी पर।

0: और अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। इसके बाद मैसेज मिलता है सुजाकर जाधव का, आप जाफराबाद से हमारे साथ हैं और यकीन मानिए जब तक मैं आपकी मेल पर क्लिक करती हूँ इतने में वो मेल निकलकर जो नाम पढ़ा होता है दूसरी मेल पर चला जाता है, तो इसीलिए कई बार आपको लगता होगा कि क्या बात है नाम बोलने के बाद पॉज क्यों आ रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड से ईमेल बढ़ रही है। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना, आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं और लगता है प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, हम सबको करना चाहिए। बहुत सारे पेड़ों के इमोजीज आपने भेजे हैं और गर्मी में जब धूप निकली हो ना तो जैसे आज तो धूप छांव का खेल चल रहा है, सुबह बादल थे, कई जगहों पर बहुत तेज बारिश भी हुई, कहीं नहीं हुई, लेकिन वही है कि अब दिन में जब इस समय अगर आप बाहर देखते हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, स्टूडियो की बात करूँ, तो यहाँ से जब आप स्टूडियो से बाहर देखते हैं तो बहुत तेज़ धूप नज़र आ रही है, तो पेड़ों की छांव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपके पेड़ों के इमोजीज देखकर मुझे विचार आ गया। बोधराज खोरवाल प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आप हाफ टिकट फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ है कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। अगला मैसेज हमें रविंद्र मोहनदास का मिलता है और आप कोई भी गाना सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का, किशनगंज बिहार से आप आशा देवी के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप हमारे एक रेगुलर लिसनर भी हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी भी इसी कड़ी में शामिल हैं और आप तराना फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं और मिथुन चक्रवर्ती को आप जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अबान और आपके परिवार के सभी सदस्य हैं आपके साथ। हरजिंदर सिंह भाटिया भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, सनम तेरी कसम से आप एक गाना सुनना चाहते हैं एंजल सोनू और पप्पी भाटिया के साथ, और इशाक मोहम्मद का भी मैसेज हमें मिला, धर्मवीर से आप एक गाने की रिक्वेस्ट करते हैं, आपके साथ है खदीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ, निलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ रायपुर से आपके साथ है मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसैया फातिमा। इसी के साथ हमारे पास विजय सुरलकर का मैसेज भी मिल जाता है, गंगा जमुना फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, मुताला महाराष्ट्र से आपके साथ है रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कौन सा गाना आप तक पहुंच रहा है, तो इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास होली चौक उत्तम नगर से आई है, जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु खोरवाल अनोखी अदा फिल्म से एक बहुत ही मजेदार गाना सुनना चाहते हैं, पहुंचा रहे हैं आप तक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगर आपने बिल्कुल अभी ट्यून इन किया है तो ये एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है जिसमें आप अपने रिक्वेस्ट किए हुए गाने सुन सकते हैं, यानी कि उम्मीद तो रख ही सकते हैं, आप हमें ईमेल लिखकर भेजेंगे और क्या पता आपकी ही पसंद का गाना इसके बाद हम यहां सुनवाएं।
1: क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

आप सुन रहे हैं मन भावन अपराजिता के साथ आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके बहुत सारी ईमेल्स हमारे पास पहुंच गई हैं, तो अगला मैसेज पढ़ते हैं। निसार अली हमें लिखकर भेजते हैं कुछ, और धनौरी तेलीवाला से आप हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और आप खुश और स्वस्थ रहने का मैसेज देते हैं। वाह क्या बात है। और साथ ही में कहते हैं कि किसी भी गाने के साथ आपका नाम पढ़ लिया जाए। सुरेंद्र संधू का मैसेज हमें मिलता है, और आपके साथ हैं अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश, शिखा संधू, प्रतिशा और मैक्स। और आप कहते हैं कि किसी भी फिल्म में यानी कि किसी भी गाने के साथ आपका नाम हम पढ़ दें। अनिल मोहन प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। सिद्धार्थ गुंडाने का भी मैसेज हमें मिला है अमरावती से, आप अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुंडाने के साथ अभिलाषा फिल्म से एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया का मैसेज हमें मिला है, आपके साथ है एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। और आप जमशेदपुर से मैसेज भेज रहे हैं, और साथ ही राजकुमार फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। दिग्दर्शन गौर का भी मैसेज हमें मेरठ से मिलता है, आपके साथ है कविता, अनिल जैन, संजय ढींगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई, सत्य पे सत्ता, जंगली, हीरा पन्ना या नूरी। अच्छा और भी लिस्ट लंबी है। आप कहते हैं कि इनमें से कोई भी फिल्म से हम गाना सुनवा दें, सौदागर, का होना प्यार है, एक दूजे के लिए, प्रेम रोग। भाई क्या बात है, आपने पूरी प्लेलिस्ट बना के दे दी, इसमें तो हमारा पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा, एक एक गाना सब फिल्मों से, है ना, गाने सभी बढ़िया हैं इन फिल्मों में। और अगला मैसेज हमें परमिंदर सिंह का मिलता है, आप पंजाब से प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके साथ है लखनपाल रंधावा, हरप्रीत कौर और रुबल। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आराधना फिल्म से एक गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंची है, और इस गाने को सुनना चाहता है कौन ये भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस ईमेल को जब तक ढूंढती हूँ तब तक मैं आपको गाना सुनवा देती हूँ, क्योंकि मैंने गाना पढ़ा कि आप अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। जी, प्रकाश वर्मा इस गाने को सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं, और आपके साथ हमारे पास मास्टर अशोक कुमार का भी मैसेज आता है, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, आप सबने इस गाने की रिक्वेस्ट की है, तो ये गाना हम पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: फिलहाल लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक पर से आकर आप ही के पसंद के गाने सुनवाएंगे आपको, आप ही के अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: तो भाई देखिए, अगला मैसेज हमारे पास जो पहुंचता है वो है सुदर्शन, अनीता और सिमरन मुखी का, सोनीपत शांतिनगर से। और आप परिंदा फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है तुलसी मस्कीन का, आप दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। वीना चैतन्य चंडीगढ़ से हैं आपके साथ, और राहुल, रचिता खुराना और केशु खुराना भी आप ही के साथ हैं। यूनिस खत्री का भी मैसेज हमें मिलता है और आप सुनना चाहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं अनोखी अदा से तो जो गाना सुना वो आपको बहुत पसंद आया, अकरम तबरेज और फरजाना, ऐसा लिखकर भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया अपने दोस्त को कहना चाहिए जिसने इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी। अफरोज शेख का भी मैसेज हमें मिलता है, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, ऐसा आप हमें सुपौल से लिखकर भेजती हैं। साथ ही मैसेज आता है बबलेश पवार का, और आपने बहुत बड़ा हमें संदेश लिखकर भेजा है और मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आप तारीफ के कुछ शब्द लिखकर भेजते हैं। आज़ाद देश के गुलाम फिल्म से आप ये गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ है डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास अंकित कांगड़ा का आता है, रोहतक से, आपके साथ मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा हैं। और आप ही के साथ एक और मैसेज आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, मस्कीन दादा अपना नाम बताते हैं आप, और प्रथम सोनी, आप सब लोग जो है एक गाना सुनना चाहते हैं डिस्को डांसर फिल्म से, जो मैं आपको अगला गाना यहाँ सुनवाने वाली हूँ। तो सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, आप सबकी पसंद का गाना, आइए हम सब मिलकर सुनते हैं।

संतोष वसाने का मैसेज हमें मिलता है नांदुरा से। आपके साथ उषा ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक हैं। नासिक से आपके साथ हैं विशाल गवली, सोनाली समर्पण और भक्ति गवली। लगान फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। डीकेपी परिहार का मैसेज आता है भोपालगढ़ राजस्थान से। आप हैं धर्मेंद्र कपिल और ईशा छीपा और पूजा परिहार। साधना गोयल प्रोग्राम को सुन रही हैं। रजनीगंधा फिल्म से गाना सुनना चाहती हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। सतीश अनेजा का मैसेज मिलता है पन्ना की तमन्ना है ये गाना सुनना चाहती हैं। आपके साथ है बिमला अनेजा। साथ में मैसेज आया है दिग्दर्शन गौर का। ताज मोहम्मद भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपके साथ है गुलाम साबिर राही महराज जहां हरिद्वार से आप हमारे साथ हैं। और मैसेज आता है हमारे पास गौरी शंकर वर्मा का। आप कोहरा फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं और नांगलोई से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। गिरीश बम भी हमारे साथ हैं वैशाली बम अजिंक्य जीत रिया और अतुल के साथ। और याराना फिल्म से अपने गाने की रिक्वेस्ट लिख भेजिए। वडोदरा से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। पंकज शर्मा का मैसेज मिलता है हमें और आप हमारी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ करनाल से हैं सुधीर नूतन किरण ठाकुर। गणेश सुतार भी मैसेज भेजते हैं हमें। चेतन सुतार सारिका सुतार कोल्हापुर से प्रोग्राम सुन रहे हैं। बब्बल का मैसेज आता है हमारे पास मोहाली पंजाब से। बब्बल मल्होत्रा आपके साथ है ओम प्रकाश मल्होत्रा भी और साथ ही किशन वंजनी प्रोग्राम सुन रहे हैं और इज्जत फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं नीलम स्वाति कीशु के साथ रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। आदिनाथ वाघ का मैसेज हमें मिलता है और आप मन मौजी फिल्म से खुद से एक मैसेज सुनना चाहते हैं यानी कि खुद से आपने हमें संदेश भेजा है। आपके साथ हैं अशोक देशमुख भी और पीएस नुवांकर किशन वंजनी सतीश अनेजा बोधराज खोरवाल के साथ। शीशपाल वर्धन का भी मैसेज हमें मिला है गाजियाबाद से। आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगला गाना किसकी पसंद का है। हीरो फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास उत्तम कुमार भगत श्वेता कीसु तासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। आप सब ये गाना सुनना चाहते हैं तो चलिए सुनते हैं एफएम गोल्ड पर।

0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: मम्मी ये जहाज कहाँ जा रहा है?
4: बेटा अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
5: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
5: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: अजीम वकार, विजय महोबिया, मूसा शेख, मुकेश कश्यप, पुरुषोत्तम सिंह, उत्तम सिंह जंगेल, रोशन जहां, मोहम्मद फरमान, अतर सिंह करदम, यूनिस सैयद, स्वर्ण सिंह, उग्रसेन यादव, सोमदत्त, प्रकाश बोरगांवकर, जगन्नाथ पटेल और इसी के साथ नरेंद्र डोम, भाई मूसा शेख, आप सभी के संदेश हमें मिले और अंशरु वली, बेताब रेडियो नाम से भी एक मैसेज आया जिसमें वसीम अकरम का संदेश आता है हम तक। और इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो शामिल करने का मन तो बहुत हो रहा है, लेकिन देखिए समय कुछ और कहता है। लेकिन जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा संदेश शामिल करना चाहती हूँ मैं। यूनिस खत्री, अल्तमश खत्री, जगराम साहू, अहमद फूलवाले, अतर सिंह करदम, दारा सिंह, पी एस नुआंकर, सतीश अनेजा, उत्तम कुमार भगत, भारत भूषण, आप सभी के संदेश हमें मिले इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्तमश खत्री, पंडू चंदन, रामेश्वर, श्री कृष्ण बाठे, राजू मिगलानी, यूनिस सैयद, सलीम अख्तर, गुरमीत सिंह, ताज मोहम्मद, पंकज कुमार, प्रवीण रंपारा और मोहम्मद इरशाद, भूषण खेरा, आप सभी ने हमें संदेश लिखकर भेजे, एस एम जावेद और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो जाहिर सी बात है छूट भी जाएंगे क्योंकि बहुत सारी आपकी ईमेल्स आती हैं। कृष्ण वंजनी, सुरेश राठौर, तुलसी मस्कीन, अफरोज शेख, बबलेश पवार, अंकित, अशोक डाले, मस्कीन दादा, आर कुमार, भारत भूषण, जाकिर, स्वर्ण सिंह, आफताब अंसारी, आप सभी को मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले ये जो एक और गाना रह गया है ये सुनना चाहते हैं प्रेम पुजारी फिल्म से, विजय रतनमाला और कुमकुम जी।

मैं आपके साथ रहने वाली हूँ 6 बजे तक, लेकिन फिलहाल मन भावन से मुझे दीजिए कुछ समय के लिए विदा। इस गीत के बाद आप सुन सकेंगे समाचार, और उसके बाद एक बार फिर मैं मिलूंगी आपसे यही FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। श्री मोदी एवियां जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जनेवा में उतरे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मलिन ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हार्दिक अभिवादन किया और परस्पर साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संक्षिप्त बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनेवा से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित एवियां के लिए रवाना हुए। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन में भारत की निरंतर उपस्थिति प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने और शांति, सुरक्षा, सतत विकास तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। ये सम्मेलन भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंच पर विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज तथा चिंताओं को बुलंद कर सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पोस्ट किए गए संदेशों में बदलाव करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का मुकाबला उरुग्वे से होगा। उधर पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र में बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Manoj Singh Rana. Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Evian on a two-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Evian, the Prime Minister in a social media post said he's looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet. Earlier, the Prime Minister landed in Geneva, Switzerland, en route to Evian. He was received at the airport by Swiss President Guy Parmelin. The two leaders exchanged warm greetings and reaffirmed their commitment to further strengthening the India-Switzerland partnership. Following the brief interaction, Prime Minister Modi proceeded to Evian, located about 45 kilometers from Geneva. Our correspondent covering the Prime Minister's G7 visit has filed this report.
3: This marks the Prime Minister's seventh consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India, as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. India's regular participation in the summit underscores its growing role in addressing key global challenges and contributing to international efforts to peace, security, sustainable development and economic growth. Ankit Kumar for Akashvani News, Evian, France.
2: French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister this evening. Thereafter, Prime Minister Modi will participate in a high-level working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. The session will bring together leaders of the G7 countries, partner nations, and senior representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later tonight, he will attend a gala dinner hosted by President Macron. A key engagement during the visit will be Prime Minister Modi's meeting with US President Donald Trump tomorrow. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across sectors. They're also likely to exchange views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Ahead of the re-examination of National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026, which is scheduled for 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency, NTA, has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, the NTA said that a restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. The Supreme Court today sought response from the Centre and States on a plea alleging the misuse of the Unique Identification Authority of India issued Aadhaar cards as proof of citizenship, domicile and residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. A bench of Chief Justice Suryakant and Justice V. Mona issued notices to the Centre and all the states and union territories. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism, or JCM, under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse emission reduction and sustainable development initiatives. According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the rules of implementation were adopted on the 8th of June this year. Extending their rally for a third consecutive session, domestic benchmark equity indices ended today's trade with gains of more than 0.5%. The Sensex jumped 544 points, or 0.7%, to close at 76,808, while the Nifty rose 135 points, or 0.6%, to settle at 23,989. In women's hockey, India stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। आइए सुनते हैं फिर तेरी कहानी याद आई से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: www.dfpd.gov.in. I repeat the website, that is at www.dfpd.gov.in. The National Disaster Management Authority, NDMA, Government of India, invites applications for two contractual senior consultant posts, community-based disaster risk reduction and mitigation of floods at NDMA Bhavan, New Delhi, one vacancy each. For CBDRR, candidates should have at least 5 years' experience in community-based disaster risk reduction or related development. Disaster management work is required, preferably with government, public or international organizations. For flood mitigation, minimum 5 years' experience in flood risk management, hydrology or water-related projects is required, with preference for field-based CBDRR experience. Both posts offer 1,25,000 to 1,75,000 rupees per month, with an age limit of 50 years, relaxable up to 62 years for retired government employees. Applications must be submitted online via the NDMA website within 20 days of the release of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website at www.ndma.gov.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। UMDAE सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंसेज मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रोफेसर सूक्ष्म जीव विज्ञान, सहायक प्रोफेसर प्रतिरक्षा विज्ञान, रीडर कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान, एसोसिएट प्रोफेसर अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान, रीडर अति तीव्र प्रकाश रसायन, एसोसिएट प्रोफेसर भौतिक रसायन विज्ञान, सहायक प्रोफेसर कार्बनिक अकार्बनिक रसायन विज्ञान, रीडर बीज गणित संख्या सिद्धांत और लाई, सहायक प्रोफेसर विश्लेषण असतत गणित और एसोसिएट प्रोफेसर सैद्धांतिक भौतिकी, सहायक प्रोफेसर क्वांटम संघनित पदार्थ, सहायक प्रोफेसर फोटोनिक्स प्रायोगिक। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.cbs.ac.in। ये विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र के 13 से 19 जून 2026 के अंक में भी देखा जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 15 जुलाई 2026। भारत सरकार का उपक्रम राइट्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रबंधक सिविल तथा अभियंता सिविल दोनों ही पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत विवरण के लिए देख सकते हैं आप राइट्स की वेबसाइट www.rights.com। ऑयल इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। उप मुख्य रसायनज्ञ एक पद, उप मुख्य भूविज्ञानी एक पद, उप मुख्य इंजीनियर एक पद, उप मुख्य भू भौतिकीविद एक पद, उप मुख्य अभियंता 5 पद और अर्थशास्त्री 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.oil-india.com/advertisement-list। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 28 जून 2026। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में लेखाकार के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। केंद्र सरकार के अधिकारियों से इस पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण और आवेदन पत्र की जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट www.ncm.nic.in। विकास आयुक्त कार्यालय कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र काकनाड कोचीन कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कुल एक पद उपलब्ध है। आवेदन संबंधी नियम, शर्तों, योग्यता, आरक्षण आदि की पूरी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.csez.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी प्यारी प्यारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या लेकर आए हैं आज वो हमारे लिए कुछ खास। इसके अलावा आप तो जानते हैं कि खेल गतिविधियों पर रहती है हमारी बराबर नजर, और साथ ही हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस सफर में आज आपका हम सफर हूं मैं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं मनोज सिंह राणा। नमस्कार मनोज।
4: नमस्कार मुनीश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स हु हैव ट्यून्ड इनटू आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। इन दिस प्रोग्राम वी विल रिमेंबर दोज पर्सनालिटी हु वर बोर्न or those who died on this day, that is the 16th of June, which is the 167th day of the year. In addition, we'll provide you with a roundup of national, regional, business and sports news. Munish, first, let's begin with the headlines.
1: बिल्कुल मनोज, हम शुभारंभ करते हैं, आइए मुख्य समाचार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियो में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेजेस वाराणसी एक्सिबिशन इन ब्रातिस्लावा, एम्फसाइजेस रोल ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन स्ट्रेंथनिंग टाइज।
1: और नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। संदेश संपादन की सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद।
4: India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure.
1: और भारत ने महिला FIH Nations Cup हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में कर लिया है प्रवेश।
4: And now, listeners, it's time for our first segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national level today. We'll talk about Vikasit Bharat Youth Parliament 2026. Yuva, or the youth, is one of the four core demographics that the vision of Vikasit Bharat looks to empower. Today we discuss a topic that lies at the very heart of our nation, the role of citizens, especially young citizens, in strengthening India's democracy. Recently, while interacting with participants of the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Lok Sabha Speaker Om Birla emphasized the importance of greater public participation in democracy. Munish also pointed out that despite being home to the world's largest population, diverse cultures, multiple languages and varied geographical conditions, India has successfully emerged as the world's largest democracy after independence, with increasing involvement of its people in the democratic process.
1: बिल्कुल मनोज, और उन्होंने ये भी कहा, यानी श्री बिरला ने ये याद दिलाया कि लोकतंत्र जो है वो भारत की कार्य संस्कृति और सोच का एक अहम हिस्सा रहा है। देश के भविष्य को आकार देने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में समावेशी भागीदारी बहुत जरूरी है। उनका संदेश समयोचित है, महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को अक्सर केवल सरकार के कैसे रूप के तौर पर

0: समझ लिया जाता है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हालांकि चुनाव बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतंत्र तो वोट डालने की प्रक्रिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है। क्यों मनोज?
1: जी मनीष, एंड द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर सच यंग वॉइसेस टू एंगेज इन नेशनल डिस्कशंस एंड शेप द विजन फॉर विकसित भारत एट 2047। इट फॉस्टर्स लीडरशिप, civic participation and policy discussions, enabling students to deliberate on key national issues. A point that Mr. Om Birla also observed, that India's democracy is not merely a system of governance, but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. And this brings us to an important question, Manish. Why is youth participation so essential for a healthy and functioning democracy?
0: देखिए, दरअसल इसका जवाब एक सीधी सी बात से शुरू होता है। युवा हमारे देश का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी हैं, और आज बनाई जाने वाली नीतियां, नेताओं के फैसले और समाज की प्राथमिकताएं ही उस भारत को आकार देंगी जो आज के युवाओं को कल विरासत में मिलेगा। जब युवा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं तो वो अपने साथ एक नए नजरिए, नए विचार और पुरानी सोच को चुनौती देने का जज्बा भी लेकर के आते हैं। वो अक्सर तकनीकी तरक्की, पर्यावरण के लिए जागरूकता, सामाजिक पहल और समुदाय से जुड़ने के कामों में सबसे आगे रहते हैं, और उनकी ऊर्जा और रचनात्मक, सकारात्मक बदलाव लाने में एक बड़ी ताकत बन सकती है।
1: And with one of the world's largest young populations, India possesses an extraordinary demographic advantage. Young people are not merely the leaders of tomorrow, they're the change makers of today. Across the country, youth are innovating, building startups, volunteering for social causes, participating in skill development programs, and contributing fresh ideas for nation building. At the same time, when they participate in the democratic process, the participation teaches young people important values and life skills. It encourages them to listen respectfully to differing opinions, think critically, analyze issues logically, and engage in constructive debate. These experiences, Munish, really help the youth help nurture informed, responsible, and empathetic citizens that they become.
0: Indeed, Manoj, and herein lies the importance of youth parliament. Chunki isse hi hame pata lagta hai ki aisi pehel kyun bahut ahem hai. Viksit Bharat youth parliament ke mahatv par baat karte hue, Shri Birla ne ise yuvaon mein loktantrik sanskriti ko badhava dene wala ek sashakt manch bataya. Unhone kaha ki aisi pehel se netritv, kartavya bodh, tarkik soch और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने जैसे गुण विकसित होते हैं। यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा लेने वाले सिर्फ भाषण ही नहीं देते, बल्कि वो तैयारी, रिसर्च, टीमवर्क और सम्मानजनक असहमति का महत्व भी सीखते हैं। वो खुद अनुभव करते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं आखिर काम कैसे करती हैं, और टकराव के बजाय चर्चा से और सहयोग से आम सहमति कैसे बन सकती है।
1: That's right, and democracy thrives when young citizens participate actively and responsibly, voting in elections, engaging in constructive public discussions, understanding public policies, participating in local governance, volunteering for community initiatives, and holding institutions accountable are all essential democratic practices. In fact, most importantly, when the youth becomes eligible, they can vote thoughtfully and independently, guided by facts, values, and the larger interests of society.
0: दोस्तों, इतिहास ने हमें बार-बार दिखाया है कि देशों को आकार देने और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में युवाओं ने किस तरह से अहम भूमिका निभाई। उनका साहस, आदर्शवाद और दृढ़ संकल्प अक्सर बड़े बदलाव लाने की प्रेरणा देते हैं। हालांकि सार्थक भागीदारी के लिए जागरूकता, धैर्य और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की भी जरूरत होती है। आज के दौर में जब फौरन बातचीत और जानकारी तक पहुंच आसान है, युवा नागरिकों पर भी एक अहम जिम्मेदारी है तथ्यों और गलत सूचनाओं के बीच फर्क करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सम्मान से बातचीत करना और सार्वजनिक चर्चाओं में सकारात्मक योगदान देना।
1: And this constructive contribution is through the voice. But democracy is strengthened not by the loudest voices, but by informed, inclusive and constructive participation. Dear listeners, India's democratic journey has been nothing less than remarkable. From the early years after independence to becoming the world's largest democracy, the country's success has been built on faith and participation of its people. As India moves forward on its path towards becoming a developed nation, the involvement of its youth will be indispensable. Their aspirations, ideas, and commitment to public service can help address national challenges and unlock new opportunities for growth and innovation.
0: Vikasit Bharat Yuva Sansad 2026 mein Lok Sabha Speaker Om Birla ka sandesh hame ye yaad dilata hai ki loktantra sirf नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है। चाहे सोच समझकर वोट देना हो, समाज सेवा हो, लोगों के बीच बातचीत हो या फिर जिम्मेदार नेतृत्व, हर इंसान की इसमें भूमिका है। और भारत के युवाओं के लिए ये भूमिका बेहद अहम है। आखिरकार वो सिर्फ आने वाले कल के नेता नहीं है, बल्कि वो आज के भारत को आकार देने में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं।
1: Let us therefore encourage our young citizens to ask questions, seek knowledge, participate with integrity, and uphold the values enshrined in our constitution. By doing so, they'll help ensure that India's democracy remains vibrant, resilient, and inclusive for generations to come. Thus, the Vikasit Bharat Youth Parliament is far more than a program. It is a movement that channels the energy, ideas, and aspirations of India's youth into a national conversation. After all, the road to a developed India or a Vikasit Bharat will not be built by governments alone. It will be shaped by collective efforts of millions of citizens, especially the young minds who dream, innovate and act.
0: तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व महासागर दिवस तो हमने हाल में मनाया ही था, और हम आपको बता दें कि आज है एक ऐसा दिन जो समुद्र के कछुओं को समर्पित है। और कैसे ये मनाया जा रहा है दिन, ये जानेंगे हम मनोज से।
1: जी मनीष, वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, सम ऑफ द ओशंस ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिमार्केबल ट्रैवलर्स, द सी टर्टल्स। It is the World Sea Turtle Day, observed every year on June the 16th. But sea turtles face many threats. Plastic pollution, discarded fishing gear, accidental capture in fishing nets, coastal development, boat strikes and climate change all endanger their survival. The question arises, Munish, why do we celebrate this on 16th of June? And the credit for this goes to Dr. Archie Carr, often regarded as the father of sea turtle conservation. World Sea Turtle Day is celebrated the same day as Dr. Carr's birthday. So on this World Sea Turtle Day, let's celebrate these resilient ocean voyagers. Let's do our part to ensure that sea turtles continue their ancient journey for generations to come.
0: और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का क्या कुछ है खास उनके पास।
1: Let's first of all visit the land of culture. In a major initiative aimed at preserving Odisha's linguistic heritage, cultural identity and historical authenticity, the Odisha government has approved the correction of distorted English spellings of 64 places across 26 districts. The decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Mohan Charan Majhi, held recently. We have more details from our correspondent.
2: The Odisha government observed that names of several places continue to be reflected in official English records by distorted spellings dating back to the colonial era, which do not accurately represent their original Odia pronunciation. Such distortions were inconsistent with Odia phonetics and adversely affected Odia cultural identity or Odia Asmita. Following directions from Chief Minister Mohan Charan Majhi, district collectors identified places where the officially used English spellings differ from their authentic Odia names. Based based on reports received from district administrations, public representatives and citizens, a high-level committee headed by eminent Odia author Dr. Pratibha Rai examined the proposals and recommended revised spellings for 64 places covering 26

0: Srimati Anu Garg, Chief Secretary of Odisha, says,
1: when the Britishers had started writing it, they were not able to pronounce the typical Odia words. As a result, the English version was always misspelt. We got many requests from districts, from public representatives, which were then forwarded to a committee constituted by the government, and that committee has now given some recommendations.
0: With the changes in spelling, every name will now echo the language, history and soul of Odisha. For Parikrama, this is Nirmalya Behra for Akashvani Katak.
2: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 14 जून 2026 को गोरखपुर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस योजना के तहत 7 श्रेणी के लाभार्थियों को 10 तरह की रेसिपी उपलब्ध कराई जाएगी। इन 7 श्रेणी के लाभार्थियों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, कुपोषित बच्चे और गर्भवती तथा धात्री महिलाएं योजना के केंद्र बिंदु हैं। योजना के माध्यम से अलग अलग श्रेणी के लाभार्थियों को शिशु अमृत और शिशु आहार, बाल पुष्टिकर, आरोग्य पोषण, बाल संजीवनी, सक्षम पोषण और संपूर्ण मातृ आहार नाम से रेसिपी उपलब्ध कराई जाएंगी।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 जून 2026 को सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना के 7 श्रेणी के लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार दिया। इस योजना से प्रदेश के करीब 1.3 करोड़ बच्चे और 22 लाख से अधिक गर्भवती एवं धात्री महिलाएं लाभान्वित होंगी। श्री योगी ने योजना के शुभारंभ अवसर पर 4 बच्चों को अन्नप्राशन और 3 गर्भवती की गोद भराई कर सुपोषण का संदेश दिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य व पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि नवीन पुष्टाहार में आयु वर्ग के अनुसार पौष्टिक व गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री शामिल की गई है, जिससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा, साथ ही गर्भवती व धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री श्री योगी ने उम्मीद जताई कि नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना से प्रदेश में कुपोषण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कैलोरी एवं प्रोटीन के साथ 11 अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से बने नवीन अनुपूरक पुष्टाहार को उपलब्ध कराया जाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से वेद प्रकाश पाठक।
4: In our Parikrama, let us travel from north to the northeast, where Nagaland's aspiration to emerge as India's Kiwi capital has received a significant boost with a major international collaboration. The state government is moving forward with plans to establish the country's first ever Centre of Excellence for Kiwi Fruit in partnership with New Zealand. The initiative is expected to strengthen scientific cultivation, improve productivity and enhance farmers' income. Our Kohima correspondent has filed a report.
5: Nagaland's ambitious plan to transform its kiwi sector is gaining momentum with concrete steps towards setting up India's first center of excellence for kiwi fruit. The project has entered a crucial phase following the recent visit of an 11-member delegation from New Zealand, which held discussions and conducted assessments to advance the initiative. The delegation comprised scientists and technical experts from New Zealand's Bioeconomy Science Institute, representatives of the New Zealand Embassy in New Delhi, and officials from the Union Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. The Center of Excellence is proposed to be set up at Fitzero in Peck District and will function as a hub for scientific research, farmer capacity building, technology transfer and the promotion of modern cultivation practices. As part of the initiative, a weather monitoring station is being installed at the site, which will provide real-time data on weather conditions, soil health and water parameters, enabling farmers to adopt precision farming techniques and make informed decisions to improve both productivity safety and fruit quality. The collaboration is also expected to create opportunities for farmer exchange programs, allowing growers from Nagaland to gain first-hand exposure to advanced cultivation methods and best practices in New Zealand, one of the world's leading producers of kiwi fruit. Nagaland is already the second largest kiwi fruit producing state in India. With international expertise, scientific innovation, and modern agricultural technologies, the Center of Excellence is expected to raise production standards, strengthen market competitiveness, and increase income opportunities for farmers, bringing Nagaland closer to its vision of becoming the kiwi state of India. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
2: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित पत्रकार परिषद में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए देश के आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनने का विश्वास व्यक्त किया। आइए जानते हैं हमारे प्रतिनिधि से।
6: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना तथा कचरे से जैव ईंधन अर्थात बायोफ्यूल निर्माण को बढ़ावा देने संबंधी प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि
7: जहाँ तक महिलाओं के बारे में सशक्तिकरण के बारे में है, मैं महिला बचत गट की जो समूह है उनकी परिस्थितियाँ बदल गई है। कुछ मोटे तौर पर मैं कुछ परिवार में विशेष रूप से जो बेनिफिट मिले हैं आयुष्मान भारत में, जो गरीब परिवार है जो अपने स्वास्थ्य विषयक तकलीफों का उपचार नहीं कर सकते थे, उन सबको 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का फायदा मिला है और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का कवरेज मिला हुआ है। हमारी पीएम उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन मिला है परिवारों को। विशेष रूप से जनधन योजना में करीब 58 करोड़ लोगों ने पहली बार बैंक में खाता खोला है और एक प्रकार से उस खाते खोलने के बेनिफिट भी उनको मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय और स्वच्छता में 12 करोड़ शौचालय बने और नागपुर शहर में तो हमने स्वच्छता के बारे में एक अच्छा रिकॉर्ड प्रस्तावित किया है कि हमारे यहाँ जो प्रकल्प हो रहा है कचरे का, कचरे को सेग्रीगेट करके हम उससे बायो CNG बना रहे हैं।
6: इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विकसित भारत की संकल्पना का उल्लेख करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देश तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत और अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर तथा समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
2: और आइए दोस्तों अब चलते हैं खेल के मैदान में, जाने वहां की हलचल। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया और इस जीत के साथ ही भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में पहुंच गया है शीर्ष पर। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होना है। वहीं पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का मुकाबला होगा जर्मनी से।
4: In some business news, extending their rally for a third consecutive session, domestic benchmark equity indices ended today's trade with gains of more than 0.5%. The Sensex jumped 544 points, or 0.7%, to close at 76,808, while the Nifty rose 135 points, or 0.6%, to settle at 23,989. For more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
2: और आइए दोस्तों अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उसके बाद हम जिक्र करेंगे उन महान व्यक्तित्वों का भी है आज जिनकी पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
8: The 16th of June is the death anniversary of freedom fighter Chittaranjan Das. C.R. Das was born on the 5th of November 1870 in Kolkata. Das completed his graduation from Presidency College in 1890. The same year, he went to England to qualify for the ICS, which was dominated by the British.
9: Unfortunately, he failed. As a result, he opted to join the legal profession. While in England, Das campaigned for Dadabhai Naroji to help win a seat in the House of Commons.
8: 2 years later, Das came back to India and started practicing as a barrister at the Calcutta High Court. As a lawyer, C.R. Das defended Indians who were accused of political offences. He appeared in defence of freedom fighters Brahma Bandhab Upadhyay and Bhupendranath Datta, who were charged with sedition.
9: In 1908, Das attained widespread fame when he was successfully able to defend Aurobindo Ghosh in the Alipur bomb case. He also had a close association with Bipin Chandra Pal,

0: and supported both him and Koch in publishing the English weekly Vande Mataram.
1: और दोस्तों आज है पुण्यतिथि चार्ल्स कोरिया साहब की, जो एक मशहूर भारतीय वास्तुकार और शहरी नियोजक थे। आज़ादी के बाद भारत में आधुनिक वास्तुकला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स कोरिया को। शहरी गरीबों की ज़रूरतों और पारंपरिक तरीकों और सामग्रियों के इस्तेमाल के लिए उन्हें उनकी संवेदनशीलता के लिए भी याद किया जाता है। पद्म पुरस्कारों से अलंकृत चार्ल्स कोरिया ने स्वतंत्रता के बाद के भारत में वास्तुकला को विकसित करने में अपना अहम योगदान दिया और कई बेहद उत्कृष्ट संरचनाएं डिजाइन की। अहमदाबाद में महात्मा गांधी मेमोरियल और मध्य प्रदेश में विधान भवन की उत्कृष्ट संरचनाएं उनके हुनर का ही नमूना है।
2: From the silver screen to the hearts of millions, Mithun Chakraborty remains a true Bollywood icon. He was born today on this day in Kolkata, then Calcutta, in 1950. He rose from humble beginnings to become one of India's most recognizable stars. Chakraborty made his acting debut with art house drama Mrigaya in 1976, directed by Mrinal Sen, for which he won his first National Film Award for Best Actor. He holds the record of being the only actor to win National Award for Best Actor for his debut film. His breakthrough came with performance that combined intensity, charisma and raw talent. And then came Disco Dancer.

और दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं शब्दों के उस जादूगर को जिन्होंने अदबी महफिलों से लेकर बॉलीवुड के सिनेमा के पर्दे तक अपनी गजलों से मोहब्बत और संजीदगी का एक नया दौर शुरू किया। आज आधुनिक उर्दू शायरी के आला तरीन शायर और प्रख्यात शिक्षाविद कुंवर अखलाक मोहम्मद खान की जयंती है, जिन्हें लोग प्यार से शहरयार के नाम से भी याद करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला में जन्मे शहरयार साहब ने अपनी रूहानी शायरी से करोड़ों दिलों पर राज किया। और सुनते हैं एक उनकी गजल का एक छोटा सा टुकड़ा फिल्म गमन से।

और दोस्तों अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। आज्ञा दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और मेरे साथी मनोज को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप हमारा प्रसारण डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 67 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये दरहोरा, सेमई, करंजवार, खरसोता, परमेश्वरपुर, हरिहरपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, जवाखाण, अखोरा, कुंदी कला, जामदोहर, सिधमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, लखनपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, पटकुरा, दांतीढाब, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, साजापानी, कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 100 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदु चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का समय होगा रात 8:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:25 पर। कुछ ही देर में यानी 5:10 पर होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें अपन कोट में चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस पर। साथ ही सुनिएगा सवाल जवाब और माटी के गीत। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बीड़ियां का समय होगा शाम 6:30 पर। 7:21 पर किसान साथी सुन सकेंगे कार्यक्रम चौपाल। इसमें सुनिएगा सोयाबीन के उन्नत और वैज्ञानिक खेती विषय पर आज की बात में चर्चा। किसानवाणी में 7:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी का विषय होगा मानसून के पूर्व पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान बचाव और उपचार तथा टीकाकरण का महत्व। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर के एल राम अतिरिक्त उप संचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांडर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 8:15 पर कलाकार होंगे पुराणिक साहू और साथी। श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का राग यमन में ख्याल गायन। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 7:00, 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंगले लीड्स में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा कल शाम 6:30 से लेकर 6:45 तक तथा शाम 7:00 से लेकर 8:45 तक 9:15 से लेकर मैच की समाप्ति तक। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा कल सुबह 7:05 पर। आपके पत्र सुनिएगा कल सुबह 8:30 पर। प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक हटवार। गांधी चर्चा महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ सुनिएगा कल सुबह 9:00। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर कलाकार होंगे संतोष दिवाकर। इसी कार्यक्रम में कल दिन के 12:30 पर कलाकार होंगे जगजीत सिंह। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: सज गए हे युवानी के बगिया और रेडियो की तिरमा कान लगाए बैठे हमार जम्मू मयारू संगवारी मल्ला तुहर तृप्ति भारती के राम राम
1: संगमा अपन जोहरिया सुमित तिवारी के तको स्वीकारो सुघर जय जोहार।
0: सुमित आज तो ते भारी जमकत हस, का बात है?
1: या कुछ नहीं संगी, बस ए दे काली घर ले आओ ना तो तेखरे खुशी है।
0: सिर तो उनका था सुमित, घर माँ कतको गारी खा फिर बाहिर माँ मुँह लाले दिखते, माने खुशी के मारे लाल दिखते। हाँ, हाँ, हाँ,
1: तो ठठला समझा था जी, ते हाँ नानपन के कहनी बतावा था है? अब जैसे कहूँ हपट के गिर गए तो महतारी पता चल गए तो गिरे हस तेखर पीरा तो रही बेच करी।
0: हाँ, हाँ,
1: संग माँ काबर गिरे की दो चार घना महतारी की तरफ ने ना प्रसाद तको मिल जाते।
0: अनुभव भारी गहरा लागत है, आप बीती बतावे तब बने भाव आते।
1: मुहिल हूँ देर रास्ते हैं, बोले भाई बोले, अब का कर सकथन, महतारी के आग्रह में तो ककरो नहीं चले, हमर देवता धामे नहीं बाँचिस तो मैं कौन खेत के ढला भाई।
0: यही तब परिवार के माया हरे सुमित,
1: सिरतों
0: दाई बाबू के सिख, महतारी के दुलार, बाबा के मस्खरी और बड़े बाबू के नियम। जब कोनो लइका ला ननपन ले मिलते ना तो ओखर भविष्य ह सुधर जाते।
1: सिरतों माँ, जब कोनो पढ़िया लइका के मोबाइल के रिचार्ज सिरा जाते ना तो वह तभी वाला बाबू सुरता थे।
0: हाँ।
1: और कोनो नौकरी करैया तीरा पूछबे ना तो वो किथे कि दिन भर पूरा दुनिया भर बूता कर फिर संझा के ना अपन परिवार भर बिता, दो मिनट ओकर संग में बैठ तभी हमारा शांति मिलते की के।
0: संगी हो, हमारे संस्कृति पुरातन सभ्यता के सबले बड़का ताकत परिवार होते। जी हाँ, अतेक रिश्ता है कि विदेश वाले मन तको सोच में पड़ जाते।
1: बिल्कुल भाई,
0: परिवार अपन आप माँ एक महाविद्यालय होते, दुनिया होते, जी हाँ जिंदगी के सबो सीख मिल जाते।
1: एकदम श्रीतोन कहा था बस, और इतना सीख और कहून में नहीं मिल सके, ये कोनो किताब में नहीं मिला तृप्ति है।
0: जब हमन छोटे रहान त घर माँ एक ऐसे मनखे रही थे जिन कम बोलते फिर ज्यादा सोचते, ओ हरे हमर बाबू। ननपन में लागते कि भारी चिल्ला थे, हर जिनिस में रोक टोक करते की के, फिर जैसे जैसे हमन बाढ़थन तैसे तैसे समझ माँ थे कि वो कड़ाई नहीं रहीस, जिम्मेदारी रहीस की के।
1: बिल्कुल भाई, और संगी हो आज की ये दौड़ भाग वाले बेरा मना बाहर कोनो कमाए खाए बार जाते ना तो सब ले भारी मन ना महतारी के होते, अपन ले दुरिया करे के मन तो नहीं करे, फिर अपन लेका के भविष्य के सीधे ना अपन आंसू ला लुको लेते हो मन हा।
0: सुमित, आजकल गांव में रोजगार के कमी है, तेकर सेती युवा शहर कोती भागते और कोनो कोनो ता विदेश कोती घलो जाते।
1: सिरतन भाई, अपन सपना लो तो सब ला पूरा करना चाहिए, ये बने एक बात घलो आए।
0: हाँ।
1: फिर तृप्ति, एक संग अपन घर परिवार ला बिसरा देना मोला कैसे ना बने नहीं लगे।

0: भाई जब भी बेरा मिला है ना तो अपन काम ले फुर्सत पाके ना घर कोती आ ही जाना चाहिए, नहीं तो बहाना मार के आ जाना चाहिए।
1: हाँ
0: हैं
1: संगी, देख गोठे गोठ माँ एव जिनिस मिल गए
0: कागोड़ भाई।
1: आज ना सुमित, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस आए।
0: अच्छा फिर तृप्ति,
1: हाँ
0: मैं तो पोषण दिवस सुने रहे हूँ, ये प्रेषण दिवस कहा रही जी।
1: संगी, दुनिया भर के जतका प्रवासी कामगार मन अपन कमाए पैसा ला घर भेजते, तब ओखर परिवार और ओखर मूल देश के विकास मा दिए जाए वाला महत्वपूर्ण योगदान ला सम्मानित करे बर इला मनाया जाथे।
0: माने सरल भाषा में कहान था कि जब विदेश में कोनो हाँ कमाए बर जाते और वहाँ है ना, तो वहाँ के पैसा अलग है और हमारे देश के पैसा अलग है, फिर वहाँ कमा के अपन देश अपन घर पर भेजते ना, तो वो विदेशी मुद्रा हा हमारे घर के बड़े काम आते और संगे संग हमारे देश भर तको वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते है नहीं।
1: हाँ सिर तो एकर शुरुआत पहली बेर 2008 माँ करे गे रही, तहन 2015 माँ आधिकारिक वैश्विक मान्यता मिली।
0: संगी हो पेरा हा कतका जल्दी बदला जावत है, जेन लड़का काली अंगड़ी धर के चले ना तेन हा आज नौकरी करे बर बाहर भागत हवे।
1: हाँ संगी हो, महंगा घोड़ा गाड़ी बंगला सब अपन जगह ठीक है, फिर परिवार संग दू पल के खुशी बड़ भागमानी मल्ला मिलते, जब सब जन साथ छोड़ देते तब परिवार खड़े रहते।
0: सीतोन में भाई आज के बेरा में अपन व्यस्त दिनचर्या लेना संगी हो, अब बेरा निकाल के अपन दाई दादा के हाल चाल पूछ लेना चाहिए, कुछ गोठियापन नहीं रहा है तब हो कुछ ना कुछ पीछे वहाँ निकाल के उखर मन से ना बैठ जाना चाहिए, उखर मन से राय ले लेना चाहिए जेखर ले उह मतलब खुशी मिल जाए है नहीं।
1: सिर्फ
0: संगी हो बेरा है तो बाहर बेरा हवा है तो बाहर कतको कमाओ, फिर सदा बाहर रहना ये बने बात नु है, काबर की जब हमन नानपन रहे हैं ना तो हमार महतारी बाबू मन अपन ले अलग नहीं हुआ देरी से हमार बार खड़े रहे, तो हमरो फर्ज बनते कि जब उमन सियान हो जाते तो उमन ला अपन संग मत रखो, उखर संग हमला रहना चाहिए और एकरे महत्व वाला समझाओ और सुघर सुघर छैया भुइया के मान ला बढ़ावत रहो।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो माटी के सुघर गीत ला, जउन ला अपन सुघर सुर म पिरोई रहिन रियाजुद्दीन मिर्जा और साथी मन।
1: अवेला अपन अंतसले सुने बर चाहरीन हमारे ये संगी मन हा, जिन मन है सीरी गाता पाल ले, धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका, पूनम साहू मन। चना गाँव ले संगवारी है कोमल सोरी, सोहन यादव, विष्णु साहू, आशीष नेताम, नंदलाल मरकामन, अरमरी खुर्द दुर्गे ले है चुरामन लाल वार्डे, जैनी वार्डे, तुईसा मिराज वार्डे मन। नर्मदा धाम सुरसुरी ले है विष्णु यादव, सरस्वती कविता यादव, ममता यादव मन। और डोंगरगांव ले हवे राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का तन्मय गजभिये। और पिपरिया ले है कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता मन। संगी हो एक ठिन सूचना सुनाओ। चौथैया सोमवार यानी 22 जून के प्रसारित होइया हिंदी कार्यक्रम हेलो युवाणी के रिकॉर्डिंग काली ज्वर यानी बुधवार 17 जून के बिहनिया 11 बजे ले 11:30 बजे के बीच में होही। जेखर बर हमर फोन नंबर है 400-3482, 400-3483, 400-3484, SDT कोड है 0771। सूचना इहें तक।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
3: आँखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
4: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
4: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सुमित, आज कौन दिन आए
1: भाई? आज तो मंगलवार आए, इसी लागत मतलब।
0: अच्छा हाँ। भाई बने कहा था सुमित आज ना मंगलवार के दिन आए, और आज का होते
1: भाई? आज हमार संगी मन के ज्ञानी के खजाना बाढ़ जाते हैं।
0: हाँ।
1: माने मंगलवार के क्रम सवाल जवाब की देना है।
0: हाँ।
1: नहीं तो भाई संगवारी मन अगोरा करत हुई तृप्ति है ना, तो चल झटकुन शुरू करथन क्रम
0: सवाल जवाब।
1: तो संगी हो सबले पहली जान लेथन पाछू अंक में पूछे गए सवाल औखर सही जवाब ल। तो तृप्ति भाई मैं सवाल दोहरावा जावा था जिन पाछू अंक में पूछे गए है।
0: हाँ।
1: और तय औखर सही जवाब ल बतावा जा।
0: हाँ।
1: तो संगवारी हो क्रम सवाल जवाब अंक 234 माने पाछू पूछे गए क्रम सवाल जवाब के पहली या सवाल रही से हाल ही में PME ड्राइव योजना कौन केंद्रीय मंत्रालय शुरू करेगे है?
0: और संगवारी हुए खर सही जवाब आए भारी उद्योग मंत्रालय। ए योजना भारत मा इलेक्ट्रिक वाहन ला अपनाए बर और निर्माण ला बढ़ावा दे बर लागू करेगे है।
1: और यहाँ खातिर हमारे दूसरी यह सवाल रही से दास कैपिटल नामक पुस्तक ला कौन लिखे रहीस?
0: अब खर सही जवाब है कार्ल मार्क्स। एकर प्रकाशन 1867 मा करेगे रहीन।
1: और यहाँ खातिर हमारे तीसरिया सवाल रही से महिला समृद्धि योजना कहाँ शुरू हुए है?
0: एकर सही जवाब है संगवारी हो दिल्ली में। ए योजना ला सरकार द्वारा आर्थिक रूप ले कमजोर और निम्न आय वर्ग के महिला मल्ला सशक्त बनाए के उद्देश्य ले शुरू करेगी।
1: यहाँ खातिर हमारा चौथैया सवाल है संगी हो हाल ही मा छत्तीसगढ़ के कौन सिपाही ला शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगे है?
0: संगवारी हुए खर सही जवाब आए इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख और सिपाही भोजराम साहू। ये तीनों वीर जवान ला राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा देश के तीसरा सबले बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी।
1: यंग खातिर हमार पांचवीं सवाल रही से हाल ही में बिलासपुर के कौन युवा क्रिकेटर ला इंडिया ए टीम के श्रीलंका दौरा पर चुने गए है?
0: खर सही जवाब है आयुष पांडे, जोन सीरीज में बतौर ओपनर बल्लेबाज के

0: भूमिका निभाही।
1: व्यंग खातिर हमार छठवैया आखिरी सवाल रही से कि कौन देश के टीम हा सबले ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप पर फुटबॉल के विजेता रहे है।
0: संगवारी हुए खर सही जवाब है ब्राजील, जो 5 बार फीफा वर्ल्ड कप के खिताब जीते है।
1: तो संगी हो अब जान लेथन 6 सही जवाब पठोइया संगवारी मन के नाम ला जेन मन ए प्रकार ले हवे। टिकरापारा रायपुर ले लता देवी चौहान, धरसीवा बस स्टैंड ले हवे छेदुलाल यादव, सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अकल्पना रानू खुशी प्रवीण कुमार साहू इकबाल गुरेसी मन, सैगम मगलडोड ले हवे फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित देविका रानी गजेंद्र कुमार हियांस चंदन मन, कोयलारी कमरधा ले कैला चंद्राकर मुकुंद पुण्येन्द्र साहिल चंद्राकर मन, परसाटोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचिनी तुषारणी खुमेंद्र मसिया मन, सिंगारवाड़ी घुटकू ले भगत राम पटेल किशन सोनम मानवी पटेल मन, बन बघेराई ले संगी है योगेश सारवा आशा नीरज नीलेश अंजलि रोशनी सारवा मन, रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू चित्ररेखा शुभम सेजल साहू मन, लोरमी चचेड़ी लेहे कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मन, पीपरपारा पालचुआ मंगेली लेहे उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन वंशिका दिवाकर मन, पुराना छुई खदान ले संगवारी मन हवे पूजा जंघेल बेबी धारणी रेखा मास्टर ध्रुव जंगेल मन, धरसीवाले हे संगी मन सीता अर्चना मन, कर्मा चौक लोहारडी ले हावे अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी खुशांत निशांत साहू मन, बाघामोड़ा कुमाखान ले हावे प्रज्ञानंद देवांगन नंदनी प्रकाश देवांगन मन, वहीं चलो संगवारी मन हावे गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन मन, पुतकी कला कमरधा ले है राधेश्याम पांडे वीणा नयन सुमांशु पांडे मन, बंगला मटिया बालोर ले सिंह है शिव कुमार अंगारे अंजलि त्र्यंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे मन, बंगला मटिया बालोर ले है शिव कुमार अंगारे मन और बोरसरा नैला ले है प्रमोद कुमार साहू भीमा वैभवी विभूति साहू मन, दत्तरेंगी ले है नोखेलाल वर्मा हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा मन, और सहसपुर लोहारा ले है गुनीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरज राजपूत मन, अमलीडी कमरधले संगी है संतोष राजपूत हेमप्रभा पूर्वी गौरव राजपूत मन, मोदी महासमुंद ले है रोशनी छाया रूप सिंह दीवान और पिपरिया ले है कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता संगी मन
0: और इहिर किम ले हमर यहू संगवारी मन 6 सही जवाब पठो है। कुमरदा ले ताराचंद साहू ओ माही धर्मेंद्र साहू, बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा यश प्रयाण शिवम प्रहलाद राजेंद्र वर्मा मन, हमर संगवारी मन है नंद कुमार ठाकुर प्रमिला खुशबू ज्योति ठाकुर मन, ग्राम चरौदा बार नवा पारा अभ्यारण जिला बलौदा बाजार ले मर संगी है नंद कुमार ठाकुर प्रमिला खुशबू ज्योति ठाकुर मन, छत्तीसगढ़ पथरिया भरे वाले संगी है चंदुला सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा अवान्या सिंगरौल मन, बिलाईगढ़ ले संगी है रोशन लाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन, लुकाउपाली छतवन ले संगी है पुनीतराम सूर्यवंशी निर्मला निहारिका पंकज सिंह सूर्यवंशी मन, खम्हरिया ले संगी है साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार मन, खम्हार मुड़ा ले संगी है सतीश गिरी गोस्वामी श्रेयास गिरी शिवाय गिरी एकांशी गोस्वामी मन, नवागढ़ कटैले संगी है नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत सारदा मयंक वर्मा मन, पटेल नगर मलोट ले संगी है रमेश कुमार जाजुरिया गीता रानी गगनदीप आरजू जाजुरिया गुड्डू मन, भड़गा कोदवा गोड़ान ले संगी है श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल पूजा मरावी मन, कुई ग्राम भंगी टोला ले संगी है ननका राम धुर्वे जामुनबाई फिरत राम मालती धुर्वे मन, पलारी छत्तीसगढ़ ले संगी है नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद लखनलाल देवांगन मन, हमर संगवारी है रोहांसी छत्तीसगढ़ ले मुकेश साहू नंदिनी मनीष मयंक जानकी साहू चिरमिरी कुरासिया कालरी ले संगी है इंद्र भांसी अनुभव ऋषभ राम सहोदर नारायण प्रसाद दिनेश प्रसाद कालिंद्री लहरे मन,
1: और संगी मन हावे पाहंदा पलारी ले नीतीश ईशान देवांगन सावित्री बाई तनुजा देवांगन मन, बाग बहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौंसल सेन मन, अड़ा नानघाट ले माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा, फुलझर घटारानी ले योगेश्वर साहू डोमेश्वरी यामिनी मुस्कान हर्षिता साहू, और बसना ले संगवारी हावे चंपा देवांगन राधे श्याम राजू जगदीश देवांगन मन, महामाया चौक मेघापार चिल्फी ले रामकुमार पटेल संतोषी दीपांशु दिव्या दीपांजलि दीपक टेकलाल पटेल, मदनपुर कमरधले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू मन, भाटापारा ले बचकामल यादव बसंत भृगु विनय ठाकुर चुवाराम वर्मा अब्दुल मजीद कुरैसी रेहाना बेगम, भनपुरी मुसरा ले आत्माराम यादव सुखदेव विदेशी होमेश्वर मनेश्वर लाक्षी तुलसी यादव संगी मन,
0: इही रकिम ले हमर यहू संगवारी मन छह सही जवाब पठो हे रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा बुढ़ा देव पारा लुकापाली छतवन ले नीतू जीतू रिया जया राहुल सूर्यवंशी मन रूपापाली बसना ले हीरा लाल जगत देवेश ब्रिजेश जगत एकता लवण्या कश्यप मनहा कोरासी भैसा रायपुर ले संगी मन हे पवन कुमार साहू क्रांति देवी पंकज सुस्मिता दीपिका साहू जवाहर नगर दुर्ग ले आर सी कामड़े करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े मन हमर संगी हे ढोड़ी घोटिया मोहला मानपुर ले महेश कुमार निषाद रंभा रानी निखिल कुमार नैतिक कुमार निषाद मन पुष्पांजलि स्वप्निल कुमार निषाद मन
1: और संगी मन हावय हिंसा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव मानस शांति ऋचा गायत्री वैष्णव मन महासमुंद ले भिकम दास नर्मदा हिरमणि दीपक लक्ष्यदास मन कनिया दमो बाला घाट ले संगवारी हावय ध्रुवा राम साहू परसराम देवानंद श्वेता योगिता काजल साहू आर्यनगर कोका भिलाई लेहे उत्तम सिंह जंगेल मोरास अनिल अजीत आयुष नंदिनी जंगेल मनहा और गंडई टिकरी पारा लेहे जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक जयश्री ऋषभ ऋचा देवांगन पहारा अहिवारा लेहे पोषण बंछोर चंद्रकिरणन प्रीति छाया बंछोर मन देवरी भाटा पारा ले संगी है गनुलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री मन यवतमाल विदर्भ लेहे संतोष खड़से और विनोद खड़से मन मुंडा टोला डोंडी लोहारा लेहे डोमेंद्र नेताम गंगेश्वरी चंचल कामेश माहिर नेताम मन सांकरा सोमनी लेहे नारायण लाल साहू कुलवंतीन देवी दिवेंद्र प्रताप नेहा मिलिंद प्रणय रुद्रांश प्रताप साहू मन और पलारी लेहे प्रकाश वर्मा निखिल प्रिंस यशस्वी वर्मा मन गेंदा टोला बाजार चौक लेहे वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता संगी मन
0: इही रिकिम ले हमर यहू संगवारी मन छह सही जवाब पठो हे भानपुरी मुसरा ले रोशन कुमार वर्मा शरद कुलेश मुकेश राजू विकास वंशिका देविका रूपेश मानवी वर्मा मन सह्या मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी मन हसदा नंबर दो ले कमलेश साहू जितेंद्र दिलीप प्रवीण पायल लक्ष्मी गीतांजलि आकांक्षा पार्वती टिकेश्वरी नागेश्वरी तुलसाराम साहू मन बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन मन कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव मन भदरसी ले संगी है घनाराम सेन गीतेश दीपेश निर्मला सेन मन हमर संगी है तेंदू भाठा मगरलोड ले उमेंद कुमार निषाद मोहेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर किशन भूपेश दिव्यांश शिवा निषाद मन हमर संगी है दत्रेंगी ले विश्राम यदु पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदु सुंदरपारा रोहांसी ले डगेश्वर राम साहू नूतन गौरव घनश्याम साहू दत्रेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा भीमखोज तरपोंगी ले संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा शीतल गुप्ता खल्लारी भीम खोजले जी एल साहू सरोज छोटी पिंकी पोटिया कला दुर्गले संजय साहू सुजाता ससांग सीमा साहू मन
1: ये तरी संगी छह सही जवाब पठुया संगवारी मन के नाम ला अब जान लेथन पांच सही जवाब पठुया संगवारी मन के नाम जिन मन है यह वह दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर ले छनूलाल यादव पुष्पलता अर्पिता अभिनव बलदाऊ राजेश्वरी आस्था अनुराग अभिषेक प्राची प्रियल डुग्गू कान्हा यादव मन लोरमी चचेड़ी लेहे शंकर कोलाम संतोषी संजय संध्या शिवम कोलाम मन और चरडोंगरी पिपरिया ले हावय दुर्गाराम साहू अजय जय किशन इंद्राणी माया साहू मन खैरागढ़ राज लालपुर ले हावय मोतीलाल भीमटे सुशीला मेघा नेहा येसु भीमटे मन रोहांसी पलारी लेहे श्याम लाल साहू युवराज साहू लच्छनपुर लेहे रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू कुर्मा जांजगीर चांपा लेहे दिलदार मिरी ज्योति जानवी दीक्षांत मिरी और कुटेना पांडुका गरियाबंद लेहे टीकम साहू गुरुआ भूषण कुसुम जीतू लेखू गेंदु गोपाल पुष्पलता भोला झरना लक्ष्मी लवली झामेश्वरी साहू शशिकांत विरास ओजल काव्यांश कीर्तिमान साहू संगवारी मन तो संगी हो ये तरी समय सही जवाब पठोया संगवारी मन के नाम है जेन जेन आप सबो संगवारी मन हमला अपन जवाब पठो हो जेकर जेकर जवाब है सही हुई से तेन सबो संगवारी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई है तो तृप्ति
0: हाँ?
1: भाई संगवारी मन हा अब अगोरा करत है कि क्रम सवाल जवाब के अगला अंक पर
0: हाँ?
1: जो है सुमित सवाल बता देते थे कि क्या है ना
0: हाँ, हाँ, फिर हाँ फिर संगी ओकर ले पहले सुन ले थन ए सुघर गीत ला
1: तो संगी हो हमन हा आप मन पेन और कागज ला धर के बैठाओ और गाना के बाद हम सुनथन क्रम सवाल जवाब के अगला सवाल ला

बस्तर ले मैला हूँ तोर पर टिकली माला फुंदरी रायगढ़ देवो नांग मुरी कर धन पहनियो मुंदरी बस्तर ले मैला हूँ तोर पर टिकली माला फुंदरी रायगढ़ देवो नांग मुरी कर धन पहनियो।

हाजपुर चांपा के सुंदर पुल खालुगरा कोसाही नाद गांव के सुरा साटी सबों के मन लाभाही बिलासपुर चांपा।

0: तोर कंचन कायल वो सुन पुत्री सही समरा हूँ। संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो माटी के सुघर गीतला जौनला अपन सुघर सुर में पिरो रहीन पंचराम मिर्झा और कुलवंतिन बाई हा।
1: और अपन अंतसले सुने बर चाहरीन हमारे संगी मन है जेमन है नागा डबरी ले बालीराम साहू तोरण बाई डिकेन्द्र प्रीति अमन छवि टोपेश मेहान साहू मनहा और ईशाली भिराइली है दुखुराम साहू हेमा उत्तम उर्वशी अलका सेजल साहू मनहा।

0: पठेना लेहे बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव लेहे सुजान वर्मा, सुहाद्रा आयुष कृत वर्मा मनहा, शीतला नगर दुर्ग ले संगवारी हे शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, अमरपुर पेंड्रा लेहे दिशा दिव्यांश आरोही लवि श्रीवास्तव मनहा, और मोहदी महासमुंद लेहे रोशनी छाया रूपसी दीवान मनहा, बेमेतरा ले संगी हे पूनम सारथी पूजा आरती भाव्या सुषमा सारथी मन, शिक्षा नगर दुर्ग लेहे राकेश वर्मा सचिन वाणी वर्मा मनहा।
1: सुमित संगवारी मन हा कापी और पेन लधर के तैयार हो ही भाई।
0: बिल्कुल भाई, तो झटकुन बता रहा क्रम सवाल जवाब अंक 235 के सवाल मल्ला।
1: तो संगवारी हो, क्रम सवाल जवाब अंक 235 के हमार पहलिया सवाल आए, आराम बाग जो आगरा में स्थित है एकर निर्माण कर्ता के नाव बतावो।
0: संगी हो, क्रम सवाल जवाब अंक 235 के मैं पहलिया सवाल फिर दोहरावत हूँ, जिन ऐसे है, आराम बाग जौन आगरा में स्थित हवे एकर निर्माणकर्ता के नाव बतावो।
1: ए अंक खातिर हमर दूसरा सवाल है संगी हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के शुरुआत कब करेगे रहीन।
0: ए अंक खातिर दूसरिया सवाल है संगी हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के शुरुआत कब करेगे रहीस।
1: संगवारी हो, अंक खातिर हमारे तीसरा सवाल है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलैया सबले छोटे देश के नाव बतावो।
0: संगी हो, अंक खातिर हमारे तीसरा सवाल है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलैया सबले छोटे देश के नाव बतावो।
1: अंक खातिर हमारे चौथा सवाल है संगी हो, भारत के पहली टेक्नी कलर फिल्म के नाव बतावो।
0: संगी हो, ये क्रम खातिर हमार चौथा सवाल है, भारत के पहली टेक्नी कलर फिल्म के नाव बतावो।
1: संगवारी हो, अंक खातिर हमार पांचवा सवाल आए, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनैया पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन आए।
0: संगी हो, अंक खातिर हमार पांचवैया सवाल है, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनैया पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन आए।
1: संगवारी हो, क्रम सवाल जवाब अंक 235 खातिर हमार छठवा और आखिरी सवाल है जो ना छत्तीसगढ़ ही जनौला, एक चले चीता के चाल मा दूसर घोड़ा होए तीसर चले हाथी के चाल मा तभो ले सामना होए।
0: संगी हो, यंग खातिर हमार छठवैया व आखिरी सवाल हवा जिन्हें छत्तीसगढ़ी जनौला, एक चले चीता के चाल मा एक चले चीता के चाल मा दूसर घोड़ा होए तीसर चले हाथी के चाल मा तभो ले सामना होए, इखर जनौला के जवाब बताओ। तो संगी हो, ये तरीस क्रम सवाल जवाब अंक 235 के सब्बो सवाल मन हा, तो आप मन तो लिख डरे हो, अब झटकुन हमला हमार पता मा आपन हा एकर सही जवाब ला पठो डरो, ते खबर हमार पता हा भाई।
1: संगवारी हो, आप मन पाती के माध्यम ले अपन विचार पठोना चाहू तो ओखर बर हमार पता हवे, क्रम सवाल जवाब अंक 235 द्वारा केंद्र निर्देशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 युववाणी अनुभाग आकाशवाणी रायपुर और पिन कोड आए 492001। अब आप मन ईमेल के माध्यम ले अपन जवाब पठोना चाहू तो ओखर बर हमर पता हवे airyouth9@gmail.com। तसंगवारी हो, हमर आज के क्रम रिहिस इहे तक।
0: संगी हो, एक ठन जरूरी सूचना सुनाओ, चौथैया सोमवार यानी 22 जून के प्रसारित होए वाला हिंदी कार्यक्रम हेलो युवाणी के रिकॉर्डिंग काली जुवर यानी बुधवार 17 जून के बिहनिया 11 बजे ले 11:30 बजे के बीच में हो ही, जेखा बर हमर फोन नंबर है 400-3482 400-3483 400-3484 और एक खबर STD कोड है 0771। सूचना यहीं तक।
1: सुमित,
0: हाँ,
1: आज के तारीखा है
0: भाई? आज तो 16 जून है।
1: माने स्कूल जाए के दिन है सुमित।
0: हो तृप्ति, आज ले तो लेका मन है ना, स्कूल खुल गया हवे।
1: हाँ, हाँ संगी, एक

0: से जगह जिहा हमर आने वाला भविष्य के नींव तैयार होते।
1: बिल्कुल भाई, जिहा जाए के दिन घलो रोथन और आए के दिन घलो रोथन।
0: हाँ संगी, फिर भाव अलग रही थे ना। जब भर्ती होथन तब दाई बाबू के माया ला छोड़ के स्कूल नहीं जावन कही के रोथन, और पढ़ाई पूरा होए के बाद जब बारहवीं पढ़ के स्कूल ले निकले के बारी आते, तब हमर गुरु हमर संगे साथी और स्कूल के वो सुरता ला छोड़े के मन नहीं करे।
1: सही तो कहा था भाई, तृप्ति शिक्षा जम्मो जन पर जरूरी है।
0: हाँ।
1: काबर पढ़वे तभी तो जिंदगी के रद्दा मा सुघर गढ़वे।
0: और ऐसने में स्कूल भेजा दाई के अंता सा का कहा थे जानता सुमित?
1: का कहा थे भाई?
0: हाथ में बस्ता धरे और होठ में मुस्कान है, देख तो बाड़ गे मोर लइका हा, संजोय बर जब मुजहान है, नवा स्कूल ड्रेस पहिर के खीसा में सपना संजोवत है, पढ़ लिख के मैं फलाना बनहूं, आनी बानी के पिरोवत है, आनी बानी के पिरोवत है।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहो माटी के सुघर गीतला जउन ला अपन सुघर सुर म पिरोय रहिन खुशी दास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन मन।
1: अभिला सुने बर चाहे रिन हमारे ये संगी मन हा, जे मन हे धमनी किरवैले ममता धीवर मुन्नी धीवर मन हा, चरोदा ले हे संगी मन हा नंद कुमार ठाकुर प्रमिला खुशबू ज्योति ठाकुर मन हा, पटेल नगर मगरलोट ले हे रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप आरजू जाजोरिया मन, कांकेर संबलपुर ले हे फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव मन हा, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले हे उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन वंशिका दिवाकर मन हा, भिलाईगढ़ ले हे रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिंपल देवांगन संगी मन हा, और हिंगोली महाराष्ट्र ले हे शाहजी बोड़खेड़े नंदा हनुमान बोड़खे मन हा, और ढोडरी घोटिया ले संगवारी मन हावय महेश कुमार निषाद रंभा रानी निखिल नीति नैतिक पुष्पांजलि स्वप्निल निशाल संगवारी मन हा।
0: सुमित, ये दे आषाढ़ आने वाला है
1: सीतन भाई,
0: अब मानसून तको तहन बने पानी गिर ही और गर्मी हथोकिन कम हो ही।
1: ठीक तो कहा थस।
0: हाँ।
1: और उमस कर ही तेखर तेखर का भुला गए से बोला।
0: ओ तहे फिर जब बरखा के पहली बूंद धरती के गोदी में गिरते ना तो सूखा धरती हा हरिया जथे।
1: सीतन भाई, नदिया नरवा सब बोहना पानी ले लबा लब भज थे और लहर लहर जिसे माँ के अचरा जिसे लहराते नहीं।
0: हाँ, हाँ।
1: लहरा लहले थे।
0: हाँ। संगी, पानी ला जीवन दायनी बताए गए एक हर हमला मान करना चाहिए।
1: सीर्तुन, अब नदिया के तीर तीर अपन सुरताला सजावन और सुघर ओखर तीर मा पेड़ लगावन।

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे माटी के सुघर गीत ला जउन ला अपन सुघर सुर में पिरो रही विदुषी ममता चंद्राकर और सुनील सोनी है।
1: अवेला सुने पर चाहे रही हमारे ये संगी मन हा हथिनी पारा भाटा पारा ले चुवा राम वर्मा मुकेश दुलारी दुर्गा दुलेश्वरी वर्मा मन पावर हाउस भिलाऊ जामुन ले है संगवारी मन हा विकास वर्मा खुशी संजय प्रधान पूजा प्रधान मन हा और पटपर डोंगरगढ़ ले है राम गोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार कविता जयंती ध्रुव मन हा और सिंगल ए संगवारी मन हावे प्रदीप सविता जैन देवेंद्र जैन मन हा। संगी हो अब एक ठन सूचना सुन लेथन। चौथैया सोमवार यानी 22 जून के प्रसारित होवैया हिंदी कार्यक्रम हेलो युवाणी के रिकॉर्डिंग काली जुवर यानी बुधवार 17 जून के बिहनिया 11 बजे ले 11:30 के बीच में होही। सूचना यहाँ तक।
0: संगवारी हो, जाए से पहले आप मन ला काली के कार्यक्रम बता देता हूँ। काली के कार्यक्रम सजी हिंदी जे मा आप मन सुनू क्रम पत्र मिला और यादें।
1: तो संगी हो, आप मन हा ये बदलत मौसम के बेरा मा अपन सेहत के विशेष रूप से ध्यान देवो, काबर की जब मौसम बदलते ना तो तरह तरह के रोग राई आते, त बने बने खाए पिए की व्यवस्था कराओ और ऐसे जिनिस लखाओ जेखर ले हमार रोग प्रतिरोधक जिन क्षमता है तेन बढ़े। तो यही विचार संग अपन संगी सुमित तिवारी
0: अतृप्ति भारती ला दो विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद की और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में आज शुरू हुई नवा शिक्षा सत्र। स्कूल में शिक्षक मन है विद्यार्थी मन के टीका लगा के करीन स्वागत। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। और वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार है आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। अब समाचार विस्तार ले। नवा शैक्षणिक सत्र के शुरुआत होए के संगे संग आज ले प्रदेश के जम्मू सरकारी और प्राइवेट स्कूल मन खुल गए है। आज ले स्कूल मन में शाला प्रवेश उत्सव घलो मनाए जावत है जौन 27 जून तक चलही। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचैया नवा लड़का मन के टीका लगा के स्वागत करेगी। उन्हें विद्यार्थी मन ला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यूनिफॉर्म और साइकिल घलो बांटे जावत है। नवा शिक्षा सत्र की शुरुआत ले पहली काली परिवहन विभाग यातायात पुलिस स्वास्थ्य विभाग और जिला सेनानी कार्यालय के सामला टीम है स्कूल बस मन के जांच करी। ये दौरान स्कूल बस के सुरक्षा मानक दस्तावेज और कर्मचारी मन के स्वास्थ्य के परीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 45 स्कूल बस संचालक मल्ला कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। राज्यपाल रमन डेका है आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप संघ राखे गए 2 दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव के शुभारंभ करी। ये मौका में राज्यपाल कहने की AI आधुनिक युग के एक विशेष तकनीकी हर है जौन चिकित्सा कृषि अर्थव्यवस्था और शिक्षा समेत आने आने क्षेत्र में मानव के सहायक बन सकत है। फिर यह मानव बुद्धि संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य के स्थान नहीं ले सके। ओमन युवा मन ले आह्वान करीन है कि ओमन AI और आने आने तकनीक के उपयोग नवाचार और समाज के हित में काम करे। ये मौका में राज्यपाल AI कौशल रथ ला हरियर झंडा दिखा के रवाना करीन। ये रथ प्रदेश के आने आने क्षेत्र में जाके विद्यार्थी शिक्षक और आम लोगन मन ला AI के उपयोगिता संभावना और रोजगार के मौका के जानकारी दी। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 के स्थायी प्रतीक्षा सूची समेत आने आने विषय ऊपर चर्चा करे जाही। एकर संगे संग विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी के बारे में घलो लोगन मल्ला जानकारी दे जाही। ग्राम सभा में पाछू बैठका में पारित प्रस्ताव के समीक्षा पंचायत के आय व्यय के अनुमोदन आने आने विकास काम के प्रगति और पंचायत संपत्ति के प्रबंधन जैसन विषय में घलो गोट बात करी जाही। संघ लोक सेवा आयोग UPSC हा ए बच्छर के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दे है। आयोग बताइने कि 1000 ले ज्यादा पद मन बर 13000 ले ज्यादा उम्मीदवार मन के सिविल सेवा मुख्य परीक्षा बर चुनाई हो है। UPSC हा उम्मीदवार मन ला यहू बताइने कि उखर नंबर कट ऑफ अंक और उत्तर सूची आखिरी रिजल्ट घोषित होए के बाद आयोग के वेबसाइट में अपलोड करी जाही। उम्मीदवार UPSC के आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in में प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में NDA सरकार के 12 बच्छर पूरा हुए में भारतीय जनता पार्टी डहाले प्रदेश के आने आने जिला में पत्रकार वार्ता आयोजित करी जावत है। यही कड़ी में रायपुर में पत्रकार मल्ले गोट बात करत भाजपा के प्रदेश मंत्री अमित साहू कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक दिन राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण ला समर्पित रहे है। उन्हें पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल है मुंगेली में राखे गए पत्रकार वार्ता में कहने की मोदी सरकार के 12 बच्छर विकास विश्वास और जन कल्याण के ऐतिहासिक यात्रा के प्रतीक है। उती खैरागढ़ जिला भाजपा कार्यालय में राखी के पत्रकार वार्ता ला संबोधित करत प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बच्छर की उपलब्धि जन कल्याणकारी योजना और भारत के विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR। ट्विटर हैंडल CGA

0: AIR News और हमारे YouTube चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ल देखत राज्य सरकार ह आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे हे। ये रोक 15 अगस्त तक रही। ये दौरान नदिया नरवा और तरिया मन में मछली पकड़े में रोक रही। छोटे तरिया और जल स्रोत जिखर संपर्क कोनो भी नदिया नरवा ले नहीं है वहां ये रोक नहीं रहा है। एकर संगे संग बड़े जलाशय में व्यावसायिक रूप ले संचालित करैया केज कल्चर गतिविधि में लगल ये प्रतिबंध ले बाहर रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत कोनो भी मनखे या संस्था प्रतिबंध के उल्लंघन करत पाए जाही त उखर मन ऊपर 25,000 रुपया तक के जुर्माना लगाए जाही। अवैया 21 जून के मनाए जाने वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के बारे में राज्य के मुख्य सचिव विकास सिल्हा आज मंत्रालय में बैठक लीन। ये समीक्षा बैठक में अन्य अन्य विभाग के बड़का अधिकारी मन शामिल हुई। अधिकारी मन बताइए कि यह बच्छर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिला में रखे जाही। उन्हें राज्य के हरेक ग्राम पंचायत के प्रमुख जगह मन में योगाभ्यास के कार्यक्रम रखे के जम्मू जिलाधिकारी मल्ला निर्देश दे गए है। मुख्य सचिव है अधिकारी मल्ला कहीं है कि 21 जून के नीट पुनर्परीक्षा रखे गए है इला ध्यान में रखत यह सुनिश्चित करे जाए कि योग दिवस आयोजन के सेती नीट परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी मल्ला कोनो किस्म की असुविधा जन हो। ये बच्चर योग दिवस के थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित करेगी है। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव 5 गांव में जन चौपाल लगा के गांव वाले मन ले गोट बात करी। उमन विकास काम और सरकारी योजना मन के जानकारी लेन। ये दौरान आने आने गांव पर लाखों रुपया के विकास काम के घोषणा करी और युवा खिलाड़ी मल्ला क्रिकेट किट घलो दिन। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग डहर ले बिजली के दर में करेगी बढ़ोतरी के प्रदेश कांग्रेस डहर ले विरोध करे जावत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा आज रायपुर में पत्रकार मन ले गोट बात करत कहीं कि बिजली के दाम में करेगी बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापिस ले के कांग्रेस आंदोलन करही। उमन कहीं कि काली 17 जून के प्रदेश के सबो जिला के बिजली ऑफिस के घेराव करे जाही। उन्हें 18 जून के कांग्रेस जम्मू जिला में पत्रकार वार्ता करके बिजली के दाम में हुए बढ़ोतरी के विरोध करी। श्री बैजा बताइए कि जुलाई के पहली हफ्ता में कांग्रेस कार्यकर्ता मन है स्मार्ट मीटर के खिलाफ घर घर ले आवेदन भरवा के स्मार्ट मीटर हटाए के मांग करी। खबर के मुताबिक राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ता मन के बिजली बिल में हरेक यूनिट पाछू 30 ले 50 पैसा और गैर घरेलू बिजली दर में 20 ले 40 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करे है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जुड़े सबो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मन में स्नातक और स्नातकोत्तर पहली सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज ले शुरू हो गए है। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरण में होगी। विद्यार्थी मन ला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन करना होगी। शक्ति जिला में एसीबी बिलासपुर की टीम है रिश्वत लेवा शक्ति जनपद पंचायत के सीईओ निखिल कश्यप बाबू अविनाश ठाकुर और चपरासी लक्षण भानु ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन ऊपर 1,00,000 रुपया की रिश्वत लेके आरोप हवे। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण काम के चेक जारी करे के एवज में रिश्वत मांगे रहीस। एसीबी है तीनों जन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रदेश में आज ले शुरू हुई नवा शिक्षा सत्र। स्कूल में शिक्षक मन है विद्यार्थी मन के टीका लगा के करी स्वागत। प्रदेश के जम्मू ग्राम पंचायत मन में 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही और वर्षा ऋतु में मछली मन के प्रजनन ला देखत राज्य सरकार है आज ले मछली पकड़े में रोक लगा दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने को हैं। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए, उसकी दोस्ती के लिए अपना प्राण दे दे। जैसे तेल और खुशबू से, वैसे ही एक दोस्त के दिल की अच्छी दोस्ती और साथ से दोस्त का मन आनंदित हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय में प्रोग्राम लेके आए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर रिश्ता दोस्ती का, दोस्ती जो जीवन को महका देती है, या यूं कहें कि जीवन को आसान कर देती है। दोस्ती, दोस्ती नाम है शरारत का, मुस्कुराहट का, उम्र भर की चाहत का। दोस्ती एक एहसास है, न भूल सको वो ख्वाब है, कभी यादों में कभी ख्वाबों में, वो हर कहीं मिल जाता है। कोई आए न आए, दोस्त हर मुसीबत में दौड़ा चला आता है। दोस्ती सुकून है जो हमें हर तकलीफ से निजात दिलाता है। दुख की तपन में दोस्त शीतल बयार बनकर आता है। कभी छेड़छाड़ कभी इकरार, हर दिन की तकरार, मगर दिलों में है प्यार, दोस्ती इसी का नाम है सरकार। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती बहुत ही खास और गहरा रिश्ता है और हम सबके जीवन में ये रिश्ता होता ही है, या हम सब इस रिश्ते को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच्चे मित्र हीरे की तरह कीमती और दुर्लभ होते हैं, जो आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिल जाते हैं तो हमको इसको बहुत संभाल कर सहेज कर रखना चाहिए। हमको इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। कुछ भी हो, हमको बस अपने दोस्त के लिए वफादार रहना चाहिए। कई बार ऐसा वक्त आता है कि हमारी जिंदगी में, हम जिंदगी में उलझ रहे होते हैं और जिंदगी में हार रहे होते हैं, और आसपास कोई ऐसा नहीं दिखता जिसको हम अपने दिल की बात बता सकें। और ऐसे वक्त पर अगर कोई होता है जहां हम सहज महसूस करें, तो वो होता है दोस्त का साथ। और आज ऐसे ही एक प्यार भरे रिश्ते की कहानी लेकर मैं आई हूँ। ऐसी दोस्ती जो अद्भुत थी, जहाँ प्यार, विश्वास सब कुछ था, जहाँ सिर्फ एक दूसरे का होना ही सब कुछ था। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा।

बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम सुमा था। काफी बड़ा राज्य था उसका। उसके बड़े बेटे का नाम जीवा था। बहुत सुंदर, योग्य, हर बात में उत्तम था। राजा का बड़ा बेटा था तो आगे चलकर आने वाला राजा उसी को होना था। और उसी राज्य में एक लड़का था जिसका नाम देव था। वह एक चरवाहा था और वीणा बजाता था। एक बार की बात है, इस राज्य में एक दिन संकट आ गया। एक दुश्मन ने इस राज्य में हमला कर दिया और वह दुश्मन इतना खतरनाक था कि कोई भी उससे युद्ध करने को नहीं जा पा रहा था। राजा की हिम्मत भी नहीं थी कि वह उससे युद्ध करे और ना ही प्रजा के किसी इंसान में हिम्मत थी कि कोई जाकर उससे युद्ध करे। सब डरे हुए थे। तब देव को पता चला, वो चरवाहा था और अपने घर में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई भी राजा की सेना में ही थे, पर पूरे राज्य में किसी के अंदर युद्ध करने का साहस नहीं था। तब ये बात देव तक पहुंची और देव ने राजा से कहा कि वह युद्ध करने को जाएगा। राजा ने और सब ने उसको बहुत मना किया और कहा कि वह अभी छोटा है और ना ही उसे युद्ध की समझ है, और जिससे युद्ध करना है वो तो बहुत बड़ा योद्धा है। तब देव ने कहा कि वह रोज जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता है और वहां पर कई बार वो जंगली जानवरों से अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता है। तब समय आया कि राजा ने देव की बात मान ली और देव ने उस दुश्मन को मार गिराया। और हुआ यूं कि वह देव देखते देखते सबका चहेता हो गया और राजा का बड़ा बेटा जीवा देव को अच्छा मानने लगा और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और जीवा देव को बेहद प्यार करने लगा। वो राजा का बेटा था और देव चरवाहा था, पर दोनों के बीच बेहद प्यार था। तब ऐसा हुआ कि प्रजा के बीच देव काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था और यह देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा और राजा को देव से जलन होने लगी। दूसरी तरफ जीवा और देव की दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही थी। कुछ समय बीतता गया और राजा के अंदर की जलन बढ़ती गई, क्योंकि राज्य के लोगों के लिए देव एक नायक के समान हो गया था। तो राजा की ईर्ष्या और क्रोध देव के लिए इतना ज्यादा हो गया कि राजा ने देव को मार डालने का निश्चय किया और राजा देव को मारने का बार बार प्रयत्न करने लगा और हर बार देव बच जाता था। राजा का बेटा जीवा देव को सब कुछ बता देता था। जो भी उसका पिता योजनाएं बनाता था देव को मारने के लिए, जीवा सब कुछ देव को बता देता था। जीवा ने अपनी तलवार, अपने राजकीय वस्त्र, अपना धनुष, सब कुछ देव को दे दिया और दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी क्यों ना हो, उनकी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। एक दिन राजा ने अपने बेटे जीवा को बुलाकर कहा कि वे देव को मार डाले, पर जीवा ने ऐसा नहीं किया और उल्टा राजा से वचन ले लिया कि वह देव को कुछ नहीं करेंगे। पर एक दिन राजा ने सेना भेज दी देव को मारने के लिए और देव वहां से भाग गया। तब देव ने और जीवा ने गुप्त में एक बैठक की और उस गुप्त बैठक में दोनों ने मिलकर एक दूसरे से वादा किया कि कुछ भी हो पर वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, एक दूसरे के परिवार पर दया करेंगे और एक दूसरे के परिवार की हिफाजत करेंगे। तब देव के पास राजा के घर से दावत का निमंत्रण आया, क्योंकि देव राजा के सेना में था। देव को राजा के उस भोज में शामिल होना था। तब देव ने और जीवा ने तय किया कि जीवा अपने घर जाकर पता लगाएगा कि कहीं भोज में देव की जान को खतरा तो नहीं है, और अगर हुआ तो देव को जीवा सब कुछ बता देगा। तब भोज का समय निकट आया और देव भोज में नहीं गया। तब राजा ने पूछा कि देव क्यों नहीं आया। तब जीवा ने राजा को कुछ बहाना बता दिया। तभी राजा क्रोधित हुआ और राजा का सारा क्रोध जीवा पर निकला। राजा ने अपने बेटे से कहा कि तुम क्यों नहीं समझते हो कि जब तक देव जिंदा है तुम राजा नहीं बन सकते।
प्रजा के अंदर देव के लिए प्यार है, और देव के होते हुए तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। इसलिए जाओ और देव को लेकर आओ ताकि मैं उसको मार दूं। तब जीवा ने कहा, आप क्यों देव को मारना चाहते हैं? तब क्रोध में राजा ने अपने बेटे के ऊपर ही भाला फेंक दिया, पर जीवा बच गया। तब जीवा को समझ आ गया कि देव की जान को खतरा है, और जीवा वहां से चला गया और उसने जाकर देव को सब कुछ बता दिया और देव से कहा कि उसकी जान को खतरा है और वो वहां से भाग जाए। दोस्तों, तब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वे बहुत रोए। तब जीवा ने देव से कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, पर हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। ईश्वर तुम्हारे और मेरे वंश के बीच में हमेशा रहेगा। तब दोनों ने एक बार और एक दूसरे को गले लगाया और वो दोनों लिपट लिपट कर रोने लगे, और फिर देव वहां से दूर सुरक्षित जगह पर चला गया और जीवा अपने घर वापस आ गया। तब कुछ वक्त के बाद अचानक फिर उस राज्य पर आक्रमण हुआ और युद्ध होने लगा। देव वहां नहीं था। तब उस युद्ध में राजा और उसके पुत्र मारे गए और जीवा भी उस युद्ध में मारा गया। तब देव तक ही समाचार गया। देव टूट गया, उसने अपने एक अच्छे सच्चे भाई जैसे दोस्त को खो दिया। तब देव ने उस इंसान को मार डाला जिसने राजा और उसके पुत्रों को मारा था।

तब उस देश का नया राजा देव को बनाया गया। और फिर देव ने सबसे पहले जीवा के परिवार से उसके बेटे को बुलाया और जितना कुछ राजा का था और जीवा का था सब कुछ उसको लौटा दिया और उसको अपने साथ अपने महल में रखा। और इस तरीके से देव ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, एक अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जी हाँ, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। देखा दोस्तों, सिर्फ दोस्त कह देने से दोस्ती नहीं हो जाती। दोस्ती निभाने के लिए सच्चाई, वफादारी और अटूट प्यार का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, जैसा देव और जीवा के बीच में था। जीवा दोस्ती के कारण अपने पिता के खिलाफ चला गया क्योंकि उसको पता था कि देव सही है। जीवा को भी पता था कि देव के होते हुए जीवा कभी राजा नहीं बन सकता, पर फिर भी उसके लिए राजगद्दी जरूरी नहीं थी, अपना दोस्त जरूरी था। और बदले में देव ने अपना वचन पूरा किया और जीवा के परिवार की देखभाल की।

हाँ दोस्तों, आज हमको भी जरूरत है कि अगर हम दोस्ती करते हैं तो ऐसी पवित्रता होनी चाहिए हमारी दोस्ती में, विश्वास होना चाहिए हमारी दोस्ती में। किसी ने इस प्रकार कहा है कि दोस्ती करो तो ऐसी करो कि भगवान भी आपको दोस्त बनाना चाहे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। तो दोस्तों, ऐसे ही दोस्ती निभाते रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बीड़ियाँ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुले। स्कूलों में मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध। और यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। ग्राम सभा में पिछली बैठकों में पारित प्रस्तावों की समीक्षा, पंचायतों के आय व्यय का अनुमोदन, विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति और पंचायत संपत्तियों के प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल गए हैं। आज से स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जा रहा है, जो 27 जून तक चलेगा। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण भी किया जा रहा है। राज्यपाल रमन डेका ने आज डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर और आईसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे AI और अन्य नई तकनीकों का उपयोग नवाचार तथा समाज हित के कार्यों में करें। इस मौके पर राज्यपाल ने AI कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा आम नागरिकों को AI की उपयोगिता, भावनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी देगा। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध NEET UG की पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 15 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान नदी, नालों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे छोटे तालाब और जलस्रोत जिनका संपर्क किसी भी नदी नाले से नहीं है, उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा बड़े जलाशयों में व्यावसायिक रूप से संचालित की जाने वाली केज कल्चर गतिविधियों को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक दिन राष्ट्र प्रथम और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक श्री मोदी के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुंगेली में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास, विश्वास और जन कल्याण की ऐतिहासिक यात्रा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं खैरागढ़ जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने बताया है कि 1,000 से अधिक रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। UPSC ने उम्मीदवारों को यह भी बताया है कि उनके अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
11: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी का प्रदेश कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली के दाम में की गई बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि कल 17 जून को प्रदेश के सभी जिलों में बिजली दफ्तर का घेराव किया जाएगा। वहीं 18 जून को कांग्रेस सभी जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बिजली के दाम में हाल ही में की गई बढ़ोतरी का विरोध करेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे और गैर घरेलू बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव विकास शील ने आज मंत्रालय में बैठक ली। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिले में आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में 21 जून को योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थलों पर अनिवार्य रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। दुर्ग जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और कलेक्टर तथा क्रीड़ांगण समिति के अध्यक्ष अभिजीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित जिला क्रीड़ांगण समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में तय प्रस्ताव के मुताबिक वर्तमान परिसर में बने बैडमिंटन कोर्ट की जमीन को छोड़कर बाकी की पूरी भूमि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के माध्यम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सौंपी जाएगी। इसके लिए भूमि को 33 वर्ष की अवधि की लीज पर देने का प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजा जा रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय और अशासकीय कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। विद्यार्थियों को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहली मेरिट लिस्ट 27 जून को, दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को और तीसरी मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को जारी होगी। सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की टीम ने रिश्वत लेते सक्ती जनपद पंचायत के सीईओ निखिल कश्यप, लिपिक अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लिमतरा पंचायत के निर्माण कार्यों का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में कल सुबह 10 बजे अभनपुर से कुरुत के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे ने आम लोगों से रेलवे लाइन से दूर रहने और अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने को कहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर तेज हवा चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने औषधि नियम में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आज कांकेर में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पथ और फुटकर विक्रेताओं ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए ऋण संबंधी आवेदन जमा किए। बस्तर क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग ने 2 ठेकेदारों का पंजीयन 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कबीरधाम जिले में 35 ग्रामीण महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांव में सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और मरम्मत करेंगी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा 19 जून को कलेक्टोरेट परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के साथ ही आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुले। स्कूलों में मनाया जा रहा है शाला प्रवेश उत्सव। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर लगाया प्रतिबंध और यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
12: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
13: PLI है ना?
14: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए अजब प्रेम की गजब कहानी, इस फिल्म का गीत आतिफ असलम की आवाज़ में। गीतकार हैं अरशाद कामिल, संगीतकार हैं प्रीतम।

फटा पोस्टर निकला हीरो। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ों में। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार प्रीतम।

अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज़ों में लीजिए सुनिए बागी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं संजीव चतुर्वेदी, संगीतकार हैं अमाल मलिक।

राहत फतेह अली खान और असीस कौर की आवाज़ों में लीजिए सुनिए सिम्बा फिल्म का ये गीत। रश्मि विराग के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है तनिष्क बागची ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है सोनू के टीटू की स्वीटी। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार हैं रोचक कोहली।

0: भूषण भाई राम राम।
1: राम राम सतीश भाई। और संगे संग कार्यक्रम सुनिया जम्मू संगी मन लगल हमर दोनों के
0: राम राम, राम।
1: सतीश भाई देखिए पानी बादर के दिन तो अमर गे और ते कहात रहे ना कैसन बेर कट डरे के मुड़ा सन में हुई का मैं गे रहूं बारी डहन
0: अच्छा
1: अरहर डाले हूँ तुम पानी ढीले हूँ
0: का बात
1: और देखे हो तो चिड़ई जाम पाके रहा है।
0: अरे अरे अरे वाह
1: तो बोला टूरत रहे हूँ ये पैक मूल हो गए देरी
0: का
1: और देख भाई ओकर संग में
0: हाँ हाँ
1: थरहट डाले हो फिर अब खेत खार के बूटा साफ सफाई घलो जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी भाई।
1: तो भाई कान बुटाई जो मेड़ पार है हाँ। मल्ला घलो काम चलत है ये दिन में ना सतीश भाई तो हमार काम बूटा है ना जो बरसात के हमार किसानी है ते में बाढ़ जाते हैं। कैसे पैक बताऊं गर्मी में हमन बोर प्लान भर में धान लगाथन अभी जो बरसात के पानी में हमर जम्मू खेत खार जते के ना सबो में खेती करना रहते तो भाई अब मेहनत तो ज्यादा लागबे कर
0: लागबे करते। अब तय बढ़िया मौसम के फायदा उठाता भूषण भाई काबर तैयारी घलो करत है और चिड़ई जाम घलो खात भी आते हैं।
1: अब मौसम के हिसाब ले फल फलहरी मन के घलो आनंद लेना है
0: तो अब बेरा जैसे अब हम गोठियावत हन किसानी के बूता ला तो तैयारी पहली करे बर हमला पड़ते पहली ले कहूँ तैयारी कर लेना थरहा है बीजा है खातू के व्यवस्था कर ले दवाई है बनिहार भूतियार बर अपन या कहना चाहिए खेती बाड़ी बर जो चौमासा में पैसा कौड़ी लगी तेरह व्यवस्था पहले बजट एक बना के रखलन है ना तो कहा को काबर की बतर जैसे चालू हुई ना तहले देखत हम कि एक के बाद एक के एक के बाद एक के ऐसे कब ओकर फसल माने पकती आते वो समझ नहीं आए माने एक के बाद एक बिल्कुल सरलुक काम चलते रहते तब पहले हमें एकर तैयारी कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा होते।
1: ये तो सही कहा था सतीश भाई। हम जम्मू किसान के जो है ना जिंदगी में खेती सिर्फ हमार काम बूता नो है, काबर हम किसानहा आदमी बर ये हमर एक ठन आधार है ये हमर गुजर बसर के यही आस एक ठन है और खेती किसानी अगर बने रही सतीश भाई तो हमर आगू जो हमर जिंदगानी है ना तेनो बने रही काबर एकरे भरोसा जो लोग लेकर तेकर पढ़ाई चलना है एकरे भरोसा घर द्वार ला चलना है खेती भरोसा है तो बने रही हमर किसानी काम बूता तो हमर जिंदगी बने रही जी।
0: देख बहुत तय सोलाना बात कहता है भाई का है पैसा माने आर्थिक एमा सबो चीज है निर्भर हावे
1: हाँ।
0: हमर चे जीवन शैली कहान खान पान ला कहान तो ये बहुत ज्यादा हमर जीवन जो है हमर खेती बाड़ी में आश्रित हावे। बिल्कुल सही कहता है भाई। फिर आजकल देखथन कि मौसम के बदलत चाल खाद बीज के बढ़त दाम और खेती के बढ़त हमर किसान मन बर चुनौती जन होते जाते और ऐसे में जरूरी है कि हमन पुरखा के जो अनुभव हावे जैसे हमर दादा पुरखा में जन रही से बाबा मन जैसे कराए है ना कई ठन अतेक तो ज्यादा तकनीक नहीं आ रही से वो समय जैसन जैसन प्राकृतिक खेती कराए वातावरण शुद्ध रहा एकरो हमला अनुसरण करना चाहिए और बीच बीच में अभी आधुनिक कृषि करे बर हमला बेरा बेरा में हमर कृषि वैज्ञानिक मन के घलोक सलाह हमला लेना चाहिए।
1: ये बहुत जरूरी है भैया वो सतीश भाई गोल बात तो देख हमन करते छावन फिर सुनथन ये संदेश

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सौलभ सेवा माँ।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्यामनगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
1: सतीश भाई, हमन अभी गोट कराते हैं हमारे जो वैज्ञानिक तरीका, वो हमारे पुरखा मन के तरीका। तो भाई पुरखा मन के जो अनुभव है वो हमारे बर बड़ महत्तक है।
2: बिल्कुल भाई।
1: और अभी जो वैज्ञानिक तरीका खेती करना वो अहू जरूरी है नहीं। और हमारे कतकुन किसान संगी मन आज आधुनिक तरीका खेती किसानी करके अपन जो आमदनी है तेला बढ़ाए है, वो अपन सफलता पाए है। और देख हमारे प्रदेश ला का थे धान के कटोरा
2: कटोरा की थी,
1: माने धान के उत्पादन जो है सबले
2: ज्यादा होती
1: है। और फिर पाछू कुछ बचा ले देखा तो धान के नहीं बल्कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान मन है जो मन जम्मू प्रकार के जो फसल है उकर फसल लेवत है। जैसे दलहन फसल हो गए, तिलहन फसल हो गए, मोटा अनाज हो गए, संग संग पशुपालन जोन हो गए, यहू में घलो अच्छा अपन जो है खेती किसानी के उपरा आय साधन जेल कही सकते हैं वह में वह उदिमला अपनाए है, वो बढ़िया सफलता पा रहे। अभी धान के फसल की तैयारी खमन गोट करत रहे हैं। तो भाई एकर संग संग तिलहनी फसल घलो जैसे सोयाबीन हो गए है ना, एकर खेती के घलो सती भाई अभी ना बड़ सुघर मौका है, ओकर बेरा है। कहा
2: भूषण भाई का है जीवन जिंदगी जीवे ना तो कतको अकन जिनिस की जरूरत होते भाई। जैसे खाना है तो है ना, अन्न है तो चावल है, दलहन है, और हमार जीवन में तिलहन है ना, सेके बर चुपरे बर हाथ गोड़ लगा बर तिलहन के तो ये तिलहन के घलो बहुत जरूरी होते। सोयाबीन के बुआई कहाँ तो एक बुआई जो है जून के जून ले जुलाई के आधा महीना तक की सिराती में एकर इला बेरा में बोलना चाहिए।
1: अब ऐसा भी बेरा है,
2: हाँ भी बेरा है काबर ऐसा ढंग से जानकार मन विशेषज्ञ ने कर सलाह देते। और वर्षा के अवैया के एकर संग संग सोयाबीन के बुआई के काम शुरू हो जाना चाहिए, तब ओकर हमला जो उत्पादन है वो बने हो सकते।
1: और जैसे एकर बुआई के हम शुरुआत करत हन तैयारी ढंग ले कर सकथन, जैसे खेत के जोताई करथन तो ओला बढ़िया गहरी जोताई कर लेन, जमीन ला भुरभुरा कर लेन, असमतल बना लेन, खेत में जोन पानी की निकासी की व्यवस्था कवर पानी भरे ले जोन फसल है वो बढ़िया नहीं होवे, तब ओकरो घला व्यवस्था कर लेन। संगे संग जोन आखिरी जोताई जब करबो तो वो समय गोबर खाद एमा अच्छा फायदा के काम हो सकते हैं, अगर गोबर खाद डालबो त।
2: जैसे तो कहा था ना ये कि पानी के निकासी ये बहुत जरूरी बात है भाई। कब फसल कोनो रहे कहूँ डभर्रा हो गए पानी भर गए है ना, कभी कभी अतका बारिश होते कि ये मेढ़ लबालो होते पूरा पर आ जाते यहाँ, तो वो समय में जिन फसल एक दो दिन कहूँ डूबीस ना तो पूरा नष्ट हो जाते, तो हमारे समय खत्म हो जाते। तो ये बात के बिल्कुल हमला ध्यान देबर चाहिए है ना, ताकि हमारे फसल और ये मन बने सुरक्षित हो पावे।
1: और बीज जैसे जमीन के तैयारी जैसे कर लें तो बीज बोन तो बीज बोए बर घलो बीज के उपचार जरूरी है। और भाई हमारे जमीन कैसन है, वो जगह कैसन है, छाव ज्यादा पड़ते घाम पड़ते, ये हिसाब ले कौन से किस्म हम सोयाबीन के बीजा के लेवन एकर ले घलो हम जानकार मन ले सलाह लेन जो कृषि विस्तार अधिकारी है हमारे गाँव में जेल घूमते है ना, ओकर से सलाह लेके काबर बीजा बने रही तो फसल बने रही।
2: बिल्कुल बीज उपचार तो बहुत पहले जरूरी है भाई, काबर जतका बीज हम खेत में डाला थन उतका बीज जामी तभी सार्थकता है ना। तो बीज के जो है भाई परीक्षण हमला पहली कर लेना चाहिए, और वर्षा के बने हो जाए मतलब बने वो चाहिए, वो मग वर्षा हो एक बाद वाला बने वगैरह सुघर वाला बोना चाहिए ताकि ओकर लाभ हमला मिल सके।
1: और बेरा है किसान वाणी के, ओकर प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: हाँ भूषण भाई,
1: हाँ भैया।
0: अभी हमन खेती बाड़ी के गोट करत रहन। अब ये चौमासा घलो कवैया है, खेती के साथ साथ हमर मन के किसान मन के भूज बल कहना चाहिए पशुधन मन होते भाई,
1: हाँ
0: है ना।
1: हाँ
0: तो ओला चौमासा में ओकर देख रेख रख रखाव कहाँ रखना है, ओकर खान पान कैसन चाहिए, कैसन तासीर वाले पशु है, तो ओला कैसने ओला सुरक्षा चाहिए, ये सब बहुत मायने रखते हैं, ओला हमला ध्यान देना चाहिए। तो ऐसने हम विषय आज सुनबो हेलो किसान वाणी क्रम में, और विषय है मानसून के पूर्व में पशुओं में होवैया बीमारी के पहचान, बचाव और टीकाकरण के महत्व। विशेषज्ञ हवे डॉक्टर के एल राम, अतिरिक्त उप संचालक शासकीय पशु चिकित्सालय माढ़र। संचालन करता है हमर भूषण भाई और प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे। तकनीकी सहायक है अंजू विजयनमन।

0: संगवारी हो, आज हलो किसान वाणी जोन हमर फोन इन कार्यक्रम होते, जिनमा आजकल हमर जोन खेती किसानी के जोन काम बूता है, एमे हमर जोन पशुधन है उकर मन के घला महत्वपूर्ण भूमिका है। पही गाय गरु माल मत्ता बने रही तब हमर खेती किसानी काम बूता है बने हुई। तो वैसने ढंग ले आज हमर हलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय है मानसून के पूर्व में पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान, बचाव, उपचार तथा टीकाकरण के महत्व। और ये जानकारी खातिर अपन के सवाल के जवाब दे खातिर हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के एल राम, अतिरिक्त उप संचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मांढरले। तो डॉक्टर साहब राम राम, नमस्कार।
1: राम राम।
0: तो हमारे संगवारी मन के फोन आही डॉक्टर साहब, अभी तो आग चालू नहीं हुए, तब तक हमला ये बताते हो कि जो अभी अवैया है बरसात के मौसम, चमास में हमर जोन पशु है उकर मन के खान पान देख रेख हम बढ़िया ढंग ले कैसे कर सकथन, ये विषय में आप बता।
1: जी जी, बिल्कुल सही सवाल है, बढ़िया है कि भी बरसात आए वाला है, बरसात से पहले हमन पशु ला कैसे रखना है ये मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या, जैसे बरसात आए से पहले अभी बहुत सारी बीमारी के बरसात के साथ साथ आगमन होते, तो वो बीमारी ला हमन ला बचाव भी करना है और उकर इलाज भी करना है। तो वो में जैसे सबसे पहले आते एक टंगिया आते, गलघोटू आते, खुरा चपका आते, तो ये मेन तीन बीमारी है सबसे। और साथ में मेस्टाइटिस, उसमें जो दुधारू गांव है थन में सूजन है, थनैला बोलते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: ठीक है, तो हमन सबसे पहले हमन कोशिश करबो कि जो भी जितना भी जानवर है उमला बरसात से पहले सब में टीकाकरण करवाया जाए। टीकाकरण से क्या हुई कि भाई वो जो भी बीमारी है वो उमें जानवर जिनमें टीकाकरण है उमें नहीं आई। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो बीमारी के समय में अगर पशु लग बीमार होते जो खर्चा हो जाते और जो पशु कमजोर जाते वो कैसे बचा हो जाए। ठीक है, तीसरा, पशुधनों के जो हानि हो है, वो बच जाते। तो सबसे पहला है कि हमला जो भी पशुधन जो रखे हैं जितना भी है सब ला टीकाकरण सबसे पहले लगाना चाहिए, सब गाय बैल बछड़ा सभी मनला 3 साल से ऊपर।
0: अब इसे कहन की खान पान की देख रेख तो हमन करते चरथन, तो टीकाकरण घलो वतकी जरूरी है तुकर सेहत पर। तो एक सवाल और पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब, जिसे टीकाकरण है तो टीकाकरण के जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा हमला मतलब कहाँ कहाँ उपलब्ध है, कहाँ कहाँ जाके टीका करा सकथन, और जो हमारे किसान संगी मन है कौन कौन से ऐसा टीका है जो कौन कौन से बीमारी में कौन बेरम लगा सकती, एक आप विस्तार ले बताते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा है हमारे दोनों राज्य से भी और आपका सेंट्रल से भी, तो इसमें हम लोग निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई है और हर 6 महीने में और FFD का टीकाकरण और साल भर में गलघोटू का और एक टंगे का टीकाकरण किया जा रहा है। अब जो अभी चूंकि बरसात आने वाला है तो बरसात से पहले गलघोटू का टीकाकरण किया जा रहा है। जो भी ग्राम पंचायत है वहां के जो सरपंच है वो एक आवेदन अपने निर्देश जो भी पशु औषधालय है पशु चिकित्सालय को बता दें कि भाई हमारे यहाँ टीकाकरण करवाना है, तो वहां के जो भी पशु चिकित्सालय के स्टाफ है उस दिन जाके निशुल्क सभी गांवों में सभी घरों में घर घर जाके टीकाकरण कर देंगे। ठीक है, ये तो गया पहला। दूसरा, हमारे जो भी पशु चिकित्सालय है उनके द्वारा भी एक रूटीन बना दिया जाता है कि गांव मतलब बरसात से पहले जितने ग्रामीण मतलब एरिया है या भी जितने गाय गरुआ है सब में टीकाकरण किया जाएगा, खासकर गलघोटू का एक टंगिया का। ठीक है, और ठंडी के मौसम में मतलब अभी आपका 6 महीने में जो रहता है एक लगता है खुरपका मुंहपका, जो आज के जमा मतलब आज के समय में सबसे ज्यादा फैल रहा है, उसमें गायों या भैंसों की मृत्यु तो नहीं होती है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन दूध देने की क्षमता और उसके शरीर में बहुत प्रभाव पड़ता है,
0: मरे कगार तक
1: पहुंच जाती है, मरती नहीं है लेकिन बहुत कमजोर हो जाती है, और सबसे ज्यादा है कि दूध देने की उसकी क्षमता हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, गाय कम या भैंस कमजोर। तो वो हमारे अभी जो है प्रोग्राम में चल रहा है, जैसे मनुष्य के उसमें चल रहा है अपना पल्स पोलियो को जो प्रोग्राम चल रहा है,
0: हाँ हाँ।
1: उसी तर्ज में हम लोग के यहाँ FMD का प्रोग्राम चल रहा है कि उसको हमारे छत्तीसगढ़ से और अपने देश से उसको इरिडिकेट करना, उसको खत्म करना है। तो किसान जितने भी किसान भाई है उनको भी चाहिए कि अपने पशुपालक मतलब पशु चिकित्सालय जाके टीकाकरण की जानकारी ले और हर 6 महीने में लगाए। 6 महीने में हमारे द्वारा भी लगाया जाता है कि मान लो किसी के घर में कभी छूट गया तो जाके संपर्क कर ले और लगवा ले।
0: तो डॉक्टर साहब गुड बात तो हमार करबो, फिर हमार संगवारी मन फोन लगावा थे तो जानता नुकरो का सवाल है तेन ला। हेलो किसान वाणी।
2: हेलो किसान, मैं उमेश कौर साल जामते हूँ, मैं मगल से बोल रहा
0: हूँ। हाँ,
2: सब बढ़िया। भी अभी खेती किसानी काम चल रहा थे।
0: हाँ हाँ,
2: मेरे पास कांटा पोटी बीने वगैरह।
0: हाँ हाँ,
2: तो हमारे खेती किसानी के मुख्य साधन तो पशु सारे बल भाई है। तो अभी बरसात के मौसम में कौन कौन से रोग लक्षण के बारे में जानकारी लेना?
0: ठीक है, हमारे विशेषज्ञ बताते ना।
1: उमेंद कुमार निषाद जी, आपके सवाल है तो बहुत बढ़िया सवाल है। मैं डॉक्टर के एल राम आपके जवाब ला देहत हूँ कि बरसात के मौसम में कौन कौन से रोग ला लगाया जाता। अभी चूंकि अभी बरसात के मौसम आए वाला है और हमारे जितने भी पशुपालक मन है, गांव वाला मन है, उमन के सबके चिंता के विषय है कि अभी कौन कौन सी बीमारी हो सकते है। तो ये बीमारी बताया जाना चाहता हूँ कि जो सबसे मुख्य बीमारी है वो खुरा चपका और गलघोटू एकटंगिया मेस्टाइटिस, ये मुख्य बीमारी है। इनमें से सबसे ज्यादा जो अभी हमारे गांव वाला जो में से बाधित होते जो गाय गरुआ मन होते वो है हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया गलघोटू। उमें क्या होते कि जो गाय हर गला सूजन आ जाते, खरखर लंबा लंबा सांस लेते, ओकर टीका लगाना बहुत जरूरी है। तो अभी बरसात के मौसम में गलघोटू की टीका सबसे पहले लगा हुआ। दूसरा बीमारी है एक टंगिया, उमें क्या होते जो छोटे जो है एक साल से नीचे के जो है बछड़ू बछिया मन, उमन में पैर में सूजन हो जाते, चले में तकलीफ होते और उलते छूबे तो थोड़ा सा चर चर के आवाज आते। तो एकर भी इलाज किससे ज्यादा एकर है कि एक टीकाकरण करवा जाए और ये बरसात से पहले इनमें टीकाकरण हर पशु चिकित्सालय जो भी औषधालय है वहां से करवाए जाते। एकर अलावा है कि मेस्टाइटिस जो थन रहते वो में सूजन आ जाते। बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा क्या है जो गाय हर बैठ जाते जमीन के नीचे और उमर से कीटाणु है थन में प्रवेश कर जाते। तो कोशिश करी है कि जो भी गाय है उला साफ सफाई से जहां भी रखे और जब दूध दुहे के बाद कुछ देर खड़ा रखे ताकि जमीन में ना बैठे या गीला में ना बैठे। चौथा बीमारी है हमारे सबसे ज्यादा भी बरसात के मौसम में पानी है रुके तो मच्छर आ जाते कीट सब, तो इमन जो है ना कीटनाशक वाला बीमारी फैलाते। तो इमन से बचाव के लिए सबसे ज्यादा भाई कि पानी कहीं भी इकट्ठा ना हो दे, साफ पानी पिलाएं और इकरो जो जो भी बीमारी से जरा सा भी लक्षण दिखे तो निकटतम पशु चिकित्सालय संपर्क करके एक बीमारी से उपचार करवाएं, एक दवाई लें। बरसात आए से पहले इमन के पूरा सावधानी रखें। धन्यवाद।
0: हेलो किसान वाणी।
2: हेलो किसान वाणी।
0: हाँ भैया, कौन बोला थो का कहाँ बोला थो, अपन नाम गांव बताते हो?
2: मैं लखनपुर का वर्धन से बोला था भैया, दानी राम चंद्रवंशी।
0: और सब बने बने भैया?
2: आओ भैया, बने बने सब भैया।
0: आज के हमारे विषय लेके कुछ समस्या है तो पूछो।
2: अरे बछिया है भैया, 5-1 महीना खो गए भैया वहाँ। वो बछिया के गला में वो गर्दन के नीचे लौर होते ना, वो लौर में नान नान नान कैसे वो अपने अपन उकलत भैया, वो घाव टाइप के वो उकलत बड़ा थे।
0: हाँ
2: वही माँ का उखर उपाय प्रबंधन करे जाए, खाओ इसे की लगा भैया करे बाबू।
0: ठीक है चंद्रवंशी जी, अमर विशेषज्ञ आप मन के जवाब बतावा थे सवाल के ना।
1: दानी राम जी, आपका सवाल है कि जो बछड़िया है उसके गले में सूजन हो गई से, तो सूजन होए के बहुत सारे कारण होते, बहुत सारी बीमारी है। तो कभी कभी एलर्जी के कारण सूजन हो जाते हैं, कभी कभी गलघोटू कारण की भी सूजन हो जाते हैं, और अभी आजकल एक बीमारी फैली है उमे भी सूजन हो जाते जो वायरस की बीमारी है। तो ओकर सबसे बड़ा वो है कि जो भी नजदीकी पशु चिकित्सालय वहाँ के डॉक्टर ला बुला के ओकर थोड़ा सा त्वचा के सैंपल या ब्लड टेस्ट करवाएं तो हमें पता चले कि एक्चुअल में बीमारी का है और ओकर इलाज सही तरीके से हो जा सके। और देसी इलाज ये है कि अपन लोकल जो भी जो खाज खुजली की दवाई है घर में उपलब्ध है ओला लगा के, या घाव आते तो पोविडिन आविडिन करके मलहम आते ओला लगा के ओकर लोकल इलाज कर सका था।
0: हेलो किसान वाणी।
2: हाँ जी,
0: बोला था
2: जी, मैं धमनी राजू छे समेला दिखोरा बोला था।
0: आप मन के का सवाल है बताते हो?
2: हाँ, टीकाकरण से संबंधित सवाल पूछना थी। हाँ, हमारा सवाल ये है, दो गाय दूध देवा थे, उम्र है 1.5 महीना, दोनों बछे हरे और 4 बछवा है, एक गाय गाभिन है, कौन कौन जानवर ला टीका लगवा सकता एक बारे में जानकारी जवाब दो भैया।
0: ठीक
1: समेलाल जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि टीकाकरण से समय में कौन कौन से को टीका लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपका कहना है कि आपकी गाय गाभिन है, तो मेरा ये कहना है कि जब भी टीका लगाते हैं तो कोई भी गाभिन को जनरली हम लोग नहीं लगाते, लेकिन फिर भी हम लोग को लगाने से टीकाकरण करने से गाय को कोई नुकसान नहीं होगा और जो गाय है वो टीका लगाने से उस कोई भी बीमारी ग्रसित होने से बच जाएगी। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जब भी टीका लगाएं तो गाय को सामान्य अवस्था में रखें, ज्यादा गर्मी में जगह में ना रखें, छाया में रखें, और टीका लगाने के बाद उसको ज्यादा इधर उधर ना चलाएं ना दौड़ाएं, शांत अवस्था में रहे। क्या होता है कि जो गाभिन होती है वो एक्साइटेड रहती है और एक्साइटेड में कभी कभी उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए गाभिन गाय को अपन टीका लगा सकते हैं और बाकी जितने भी है 3 साल से उम्र के सभी गाय बछड़े गाय को और भैंसों को और जानवर को टीका लगा सकते हैं।
0: हेलो किसान वाणी।
3: हेलो। हाँ
0: कौन बोला था, कहाँ बोला था बताते?
3: मैं बलौदी तलारी बोला था भैया, राम सागर शुक्ला जी।
0: तो अभी काय काम बुता चला थे?
3: मोर अभी कहीं काम नहीं चला थे, खेती किसानी धीरे हुए हैं भैया।
0: खेत खार के साफ सफाई चला थे?
3: हाँ हाँ, कांटा कुटी भी नहीं चला थे।
0: तो कहीं सवाल आप मन के मन में है पूछते हो?
3: हाँ हाँ हाँ। तो ये जैसे जानवर जो पानी वानी नहीं पिए, खाना नहीं खाए, वो का कारण होते
0: यही जानना है न?
3: हाँ।
0: तो अभी कोनो बुखार आए रही, कोनो डॉक्टर दिखाया हो का अभी?
3: अभी तो नहीं आए, लेकिन अब समय में ही समय में आते अक्सर
0: समस्या है।
3: हाँ, भोटू टाइप के। हाँ, तो कारण जान है कैसे है घरेलू उपचार।
0: ठीक है भैया, डॉक्टर साहब अपन के जो सवाल है ना उसका जवाब देवा थे।
1: राम सागर शुक्ला जी, आपका सवाल है कि जानवर खाना पीना नहीं खाते, उकर का कारण गलघोटू तो नहीं हो गई से? देखा हमन जब कोई भी जानवर ला देखतन तो जो नॉर्मल अवस्था में उकर जो जानवर के जो रहते अपन नाक के सामने थोड़ा सा गीलापन रहते और बाकायदा मुंह ला चलात रहते, तो वो उकर निशानी है कि गाय ठीक ठाक, उसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं। लेकिन अगर खाना पीना बंद कर दी से और लंबा लंबा सांस लेते तो पक्का उसमें कोई ना कोई बीमारी के लक्षण है। और ये समय में गलघोटू हो गई से, एक टंगिया हो गई से, घुरा चपका हो गई से, ये बीमारी प्रमुखता कोई भी गाय भैंस में आ जाते। तो हमारे ये सबसे पहले देखना है कि उसमें और भी लक्षण क्या आते। खाना पीना तो बंद कर दी से, साथ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लंबा लंबा सांस लेते, गले में सूजन हो गई से या पैर में घाव हो गई से, तो उस हिसाब से हमन या आप बनोला एक वो देख सकता था कि बीमारी एक्चुअल में बीमारी क्या है। अब जैसे गलघोटू की बीमारी हुई तो गलघोटू की उपचार हुई, खुरा चपका की बीमारी हुई तो खुरा चपका की बीमारी हुई, और कभी कभी ज्यादा खाने से भी अपच हो जाते तो पशु मन खाना पीना छोड़ देते, तो ओकरे अलग इलाज होते। तो समय समय पे जैसा भी बीमारी के लक्षण है ओकर देख के इलाज करना चाहिए। और सबसे पहले तो जो भी नियरेस्ट पशु चिकित्सालय या पशुधालय है वहां संपर्क करके वहां के पशु चिकित्सक ला बुला के ओके जांच करवा लो, ओकर बाद भी इलाज करो तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद।
0: हेलो किसान वाणी।
4: हाँ हेलो किसान वाणी।
0: कौन बोला था भैया, कहाँ बोला था? राम राम।
4: मैं हाँ ग्राम रामपुर भखारा ले पुरुषोत्तम कुमार साहू बोला था भैया।
0: हाँ, और क्या समस्या है आप मन के आज?
4: मोर करहावे दो जोड़ी बैला, उसमें खुरा चपका रही से, वो हाथ मार गए है, लेकिन ओकर बाद से ओकर दाना पानी है थोड़ा सा टूट गए है खान पान है।
0: हाँ,
4: समस्या ले जो है हम खान खाना पानी कैसे बढ़ा सकते हैं कहीं से?
0: हमारे विशेषज्ञ आप मन के जवाब दे।
1: पुरुषोत्तम साहू जी, आपके सवाल है कि खुरा चपका आकर ठीक होने के बाद जानवर खाए पिए नहीं और ओके फिर से दाना पानी बढ़ाए बर का दे? आपके बहुत बढ़िया सवाल है कि कोई भी जानवर है, चाहे खुरा चपका हो चाहे गलघोटू हो, एक बार अगर बीमारी आ जाते और ठीक होए के बाद उसका दाना पानी कम हो जाते, दूध दे वाला दुधारू पशु है तो दूध दे के मात्रा कम हो जाते, तो हमार एक है कि जो भी जानवर है अब जैसे खुरा चपका हो गई से तो कम से 15 से 20 दिन उसका दाना पानी कम हो जाते, घाव में रहते बीमार रहते तो पशु कमजोर हो जाते। तो सबसे पहले तो जैसे बीमारी से वो ठीक हुए ओके साफ सुथरा पानी ओके पिलावा, मिनरल मिक्सचर डॉक्टर के सलाह पे या दुकान से मिलते ओला देवा ताकि ओकर जो भी कमी पूर्ति हो सके, नाना हुआ भूसा हुआ ओला फिर से ओके फिर से खुलावा, हरा चारा खिलावा, और आजकल अजोला करके है अजोला ओला आप ला के खिला सकत हस, और हरा चारा ला भी जितना हो सके ओला कट्टी ताकि मुंह में पहले जो घाव रही हो सकता है घाव के कारण वो अब धीरे धीरे खाना कम करी से, तो सुपाच्य तरीके से बढ़िया ओके कटिंग करके हरा चारा खिलाना है और मिनरल मिश्र खिलाना है, समय समय पे ओके पानी भी भरपूर मात्रा में देहल जाए। अब चूंकि अगर दुधारू गाय है तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम के बॉटल और या तो ओरल तरीके से बहुत सारे आजकल आते हैं माइफेक्स आते हैं ओला शरीर के जो भी कमी हो उसे पूरी बार दे आना है। मिनरल मिक्सचर बहुत प्रकार के रहते ओला दे आना है। तो ये डोज ला एक हफ्ता तक चलाने से होकर जो भी कमी पूर्ति है पूरा हो जाएगी और वो फिर से अपन दूध देह के मात्रा है और जो स्वस्थ है सो मैं वापस वो आ जाए और बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो जाए। धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। अभी हमन हा बहुत अकन विषय में गोट बात करें पशु मन के टीकाकरण होंगे। हमारे संगवारी मन घलो फोन लगे अपन जो सवाल लेते मन बताई तो आपसे मैं जानना चाहूँ की आखिरी में आप ये पशु मन के देख रेख टीका एकर ले कहीं और छूट गीस हुई आज जो हमन गोट बात हुई संगवारी मन पूछी तहु में तो जिन छूट गीस हुई है आप का कहना चाहू हमारे जो पशु पालक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल देखिए क्या होता है कि जो पशु चिकित्सक हो गया या पशु पालक हो गया कि ये दोनों की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी जानवर है उसको स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे। तो हमारी तरफ से तो हमने टीका लगा दिया उसकी देखरेख कर दी लेकिन पशुपालक होता है वो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने गाय गोरु को कैसे रखे। और इसके लिए है कि सबसे पहले बरसात के समय या बरसात के आने के बाद स्वच्छ पानी पिलाए रुका हुआ पानी मत दे और जो भी बाड़ा है वो पानी वहां इकट्ठा मत होने दे क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर और जो भी कीट जितने उत्पन्न होंगे और बीमारी उन्हीं से फैलती है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो जानवर है जितने भी उनको हमेशा एकदम साफ सुथरा नहलाए सप्ताह में एक आध बार किलनी जो भी है सबसे बड़ा एक बीमारी का जड़ है किलनी। किलनी को उनकी बीमारी मतलब शरीर से चाहे साफ करके हटाए या हमारे जहाँ वो भी मिलता है ब्यूटॉक्स करके वो आता है लिक्विड आता है उसको लगा के पूरे शरीर में लगा दे और आधा घंटे बाद उसको नहला दे तो जितने भी किलनी है खत्म हो जाएंगे। दूसरा जो भी बाड़ा होते हैं उसमें ना जो अपना खेती में सिंचाव करते हैं उसमें 10 लीटर पानी में 10 ml घोल के और जितने बाड़े हैं उसमें क्योंकि जो छोटे छोटे किलने होते हैं ना वो अपने अंडे ना जो बाड़े के अंदर जो दरारे रहते हैं ना वो देते हैं तो वहां छिड़काव कर दे। और दूसरा छिड़काव करने के बाद ना हर 6 महीने साल भर में ना चूना या छुई से लिपाई करें उससे भी जो किलनी उलनी मर जाते हैं। तो मेरा सा अंतिम मतलब ये है कि जो पशुपालक है वो गाय मल्ला जितना साफ सुथरा रखे उतना बीमारी से बचाओ।
0: हाँ तो डॉक्टर साहब आप मन हमारे स्टूडियो में आए अपन कीमती समय हमन ला देव एक खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे हेलो किसान मनी जो कार्यक्रम रही विषय रही से मानसून के पूर्व पशुओं में होने वाली बीमारियों की पहचान बचाव उपचार तथा टीकाकरण के महत्व और हमारे विशेषज्ञ रही से डॉक्टर KL राम अतिरिक्त उप संचालक शासकीय पशु चिकित्सालय मानहर ले और एक कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग अंजू विजयन जी और हमारे एक कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं शशि प्रकाश पांडे।

अभी सुनत रहें क्रम हेलो किसान वाणी। विषय रही साहब मानसून के पूर्व में पशु मन में हुआ बीमारी के पहचान, बचाव और टीकाकरण के महत्व। विशेषज्ञ रही साहब डॉक्टर के एल राम, अतिरिक्त उप संचालक शासकीय पशु चिकित्सालय माढ़र। संचालन करता रही साहब भूषण कुमार निषाद। प्रस्तुत करता रहे शशि प्रकाश पांडे और तकनीकी सहायक रही से अंजू विजयनमन।

0: और सतीश भाई गुड बात तो हमन करत हैं। अब देख संगवारी मन लह अगोरा हुई आज के सवाल के, तो आज के सवाल मैं बता देता हूँ। तो आज के हमारे जो सवाल है तेन है, बरसात में पशु मन में प्रमुख रूप ले कौन कौन से बीमारी होते, और एकर जवाब हमर तीर आप मन एक हफ्ता के भीतर में भेजूँ, और जेखर पर हमार ईमेल पता है rai.aajkeprashn23@gmail.com। और अब मैं बता देता हूँ पाँचों हफ्ता के प्रश्न और ओकर सही जवाब ला। पाँचों हफ्ता मन सवाल पूछे रहे, बरसात में गोभी वर्गी सब्जी के नर्सरी लगाए के सही समय कब होते, और एकर सही जवाब आए जुलाई अगस्त के महीना में बने होते।
1: और सही जवाब हाँ संगवारी मन लिख के भेजे भाई सुगर सुगर ही दे। तो पहली हवे गर्रा पार बांधा बाजार जिला राजनांदगांव ले गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू, राकेश साहू, और गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुसारणी मसिया, खुमेंद्र मसिया मन, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव ले बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत बेबी आराध्या साहू मन है, मदनपुर कमरधा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, और बठेना पाटन जिला दुर्ग ले बलकरण वर्मा, ज्योति वर्मा, अंजलि वर्मा बहुत सुघर सही जवाब लिख के भेजे। एकर खातिर सबो संगवारी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।
0: और सतीश भाई देख हमन गोट बात करते हैं हमारे खेती किसानी के काम बूता ला लेके है ना। तो देख भाई खेती किसानी के काम बूता जो है ना एला हमारे जो सरकार है ना ये काम बूता पर ओहू मन प्रोत्साहन
1: प्रोत्साहन देते
0: और लगातार इसने कई ठन योजना घलो निकाले चला। इसने एक ठन योजना है सतीश भाई, भारत सरकार के ये योजना है केंद्रीय योजना के रूप में, जिनमें पात्र जोन किसान है तेन मन ला 6,000 रुपया जोन है प्रतिवर्ष दे जाते
1: आर्थिक सहायता करते। अब यह कहां की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ना, अभी राशि ला भाई के ला 4 महीना के अंतराल में 3 समान किस्त मन में 2,000 करके सीधा लाभार्थी को कर खाता में देते ला है ना।
0: योजना ले जुड़े जो मुख्य बात है भैया ये है कि योजना में लाभ छोटे उ सीमांत कृषक परिवार है ना, उमला दे जाते जेखर पास कृषि के लायक भूमि है।
1: और राशि की बात तो राशि भुगतान सीधा जिन आधार लिंक रहते तेन खाता में किसान मन के लाभार्थी के खाता में भेज देते। अब एक बार पात्र किसान मन हा अपन आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऋण पुस्तिका ला लेके पटवारी या ग्राम सेवक के पास जाके फार्म घलोक भरा सकते हैं, और किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ ला ले सकत हवे।
0: और सतीश भैया देख गुड बात करबो फिर ये सुनथन सुघर गीत ला जेन ला स्वर दे है नवल दास मानिकपुरी और अनसुईया मानिकपुरी।
2: पढ़े लिखे भाई मन के मन सुना

0: अब ये लोग गीत सुनत रहे जिला स्वर देवतरी सब नमल दास मानिकपुरी और अनसुया मानिकपुरी।
1: अब ये रहिस किसान वाणी और एक प्रायोजक रहिस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: और बेरा हुआ थे कार्यक्रम ले विदा लेके बेरा तो देवा विदा जम्मो संगवारी मल्ला सतीश कुमार यदु
1: और भूषण के
0: राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में यस बॉस फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं जतिन ललित।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं जतिन ललित।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का। ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं पुराणिक साहू और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए लक्ष्मी नांद्रे की आवाज़ में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे पुराणिक साहू और साथी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स स्कैन, कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और श्रोताओं, हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ कार्यक्रम में है हर मैच का ताज़ा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक डिटेल्स के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने, कल खेले गए सभी चार मुकाबले ड्रॉ। भारतीय टीम FIH हॉकी विमेंस नेशन कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हुआ। थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ करेंगे भारतीय चुनौती का नेतृत्व। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी, और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाएगा। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं वायरल फुटबॉल फीवर के साथ, जहां पूरी दुनिया के ऊपर फुटबॉल का ये खुमार सर चढ़ के बोल रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के न्यू जर्सी में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात्रि 12:30 बजे से शुरू होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में

0: नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे के करीब खेला जाना। इससे पहले कल फीफा विश्व कप में कई उलटफेर देखने को मिले। विश्व कप में 68 साल बाद एक ही दिन खेले गए 4 मुकाबले ड्रॉ रहे।
1: फीफा विश्व कप 2026 में कल इस सत्र का सबसे बड़ा उलटफेर देखा गया, जहां केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए विश्व कप की प्रबल दावेदार स्पेन को गोल रहित बराबरी पर रोक दिया और इस मैच के हीरो केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वो जिन्हा रहे, जो एक ढाल की तरह गोल कोस्ट पर डटे रहे और कई गोल बचा कर टीम की रक्षा की। इस मुकाबले के बाद वो जिन्हा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: In the past was dreaming with this, they didn't achieve, many of ex-football players from national team, and now the dream come true, all of us, we are happy because we work a lot.
1: एक और ड्रॉ मुकाबले ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही। कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेला गया ये मैच बेहद रोमांचक रहा, जहां न्यूजीलैंड ने एलिजा जेस्ट के 2 गोलों की बदौलत पहले 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन ईरान ने शानदार पलटवार करते हुए 2 गोल दागे और मुकाबले को ड्रॉ करा दिया। दिन का तीसरा ड्रॉ मुकाबला सिएटल स्टेडियम में बेल्जियम और मिस्र के बीच देखने को मिला, जहां कांटे की टक्कर वाला ये मुकाबला 1-1 के बराबरी पर समाप्त हुआ। मिस्र विश्व कप में अपनी पहली जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन बेल्जियम के वैकल्पिक खिलाड़ियों के त्वरित जवाब ने उसे निराश कर दिया। मिस्र के इमाम अशूर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अमेरिका के मियामी स्टेडियम में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच ग्रुप एच का पहला मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। वहीं सऊदी अरब के लिए अब्दुल्लाह अल अमरी ने 41वें मिनट में रिबाउंड पर गोल किया, जबकि उरुग्वे के मैक्सी अराउजे ने 80वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो ये फीफा का मंच है, जहां रोमांच, उम्मीदें, जज्बा और हुनर हर संभावना को नतीजे में बदलने की क्षमता रखता है। और अब यूएस के बाद चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी विमेंस नेशन कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज पूल ए के मुकाबले में जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह पक्की की।
3: It's going to go to core again, it is. And it's there! India have hit the lead!
4: भारत ने पहले ग्रुप मैच में अमेरिका पर मिली रोमांचक जीत का सिलसिला आज ऑकलैंड के नॉर्थ हार्बर नेशनल हॉकी सेंटर में भी जारी रखा और एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप के अपने दूसरे पूल ए मैच में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कप्तान सलीमा टेटे ने 33वें मिनट और लालरेम सियामी ने 49वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। जापान के लिए एकमात्र गोल हिरा मित्सु ए ने 35वें मिनट में किया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने 33वें मिनट में मिले एक पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर अपना खाता खोला। नवनीत कौर के शॉट को निक्की प्रधान ने सलीमा की तरफ धकेला, जिससे कप्तान ने बिना कोई मौका गंवाए गोल पोस्ट में भेजकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके ठीक 2 मिनट बाद जापान की हिरा मित्सु ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के आखिरी क्वार्टर में 49वें मिनट में सुशीला चानू पुखराम बम ने सर्कल के किनारे से गोल की और एक तेज पास दिया, जिसे एक बेहतरीन गोल में बदलते हुए लालरेम सियामी ने भारत को जीत दिलाई। कप्तान सलीम टेटे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम इस जीत के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत के 6 अंक हो गए हैं। भारत अब टूर्नामेंट के अपने आखिरी पूल ए मैच में 18 जून को उरुग्वे से भिड़ेगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार खेल से वापस एक बार फॉर्म में वापसी का शंखनाद कर दिया है। और अब बात बैडमिंटन की। मकाऊ बैडमिंटन ओपन 2026 आज से शुरू हो गया है। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थरुन मन्नेपल्ली और ईशा रानी बरुआ मकाऊ में देश की चुनौती की अगुवाई करेंगे।
5: युवा भारतीय बैडमिंटन टीम मकाऊ ओपन में देश की अगुवाई के लिए तैयार है। आगे आने वाली एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए कई दिग्गज खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता से आराम दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी का स्टार जोड़ी शामिल है। इन बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में टीम का पूरा दाबोदार युवा और उभरते खिलाड़ियों पर है। पिछले साल मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली थरू टूर मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स टीम की अगुवाई कर रहे हैं। अनुभवी किरण जॉर्ज, ऋत्विक संजीवी और शंकर सुब्रमण्यम भी इस दल का हिस्सा है, जबकि रौनक चौहान ने आज अपने दोनों क्वालिफायर मुकाबले जीत कर मुख्य ड्रॉ जगह बना ली है। महिला सिंगल्स की कमान ईशा रानी बरुआ के हाथ में है, जिन्हें अनमोल खरब और तस्मीन मीर का साथ मिलेगा। आकर्षि कश्यप, रक्षिता रामराज, श्रेयंसी बली शेट्टी, मानसी सिंह, श्रेया लेले और अश्मिता चालिहा भी भारतीय महिला सिंगल्स टीम का हिस्सा है। अगर डबल्स की बात की जाए तो भारत की एकमात्र पुरुष डबल्स जोड़ी और तीनों महिला डबल्स जोड़ी आज पहले ही दौर में बाहर हो गई। मिक्स्ड डबल्स में 5 भारतीय जोड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल है। पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय सेटलर है जिन्होंने मकाऊ ओपन जीता है। सिंधु ने लगातार 2013 से 2015 तक लगातार 3 बार ये खिताब जीता था। अमीषा स्पोर्ट्स कैन।
0: तो नए जज्बे के साथ भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन के कोर्ट पर धमाल मचाने को तैयार हैं। और अब बात की जाती है फिट इंडिया की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल मुंबई के वर्ली सर्किल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि यह आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। मुंबई के सुरमय समुद्र तट के मनोरम दृश्यों के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 250 साइकिल चालक श्री मांडविया के साथ साइकिल चलाते हुए फिट इंडिया का संदेश देते हुए नजर आएंगे। इस आयोजन के साथ ही 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक समारोह का शुभारंभ भी हो जाएगा। और अब बात की जाए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महासंग्राम की, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में चल रहा है। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम कल अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है।
6: आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद हरमनप्रीत की विमेंस इन ब्लू के हौसले बुलंद हैं। दूसरे मुकाबले में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ग्रुप ए का ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से लीड्स के हेडिंगले मैदान में खेला जाएगा। एक तरफ जहां भारत ने 64 रन की विशाल जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है, वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। हरमनप्रीत की आर्मी के लिए मैच की राह काफी हद तक आसान नजर आ रही है। पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाली उप कप्तान स्मृति मंधाना से टीम को फिर एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी और टीम को अपनी दूसरी सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा से इस मैच में बड़े स्कोर की चाह रहेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की नजर अच्छी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलने पर होगी, जबकि पहले मैच में कुछ खास न कर सकी जेमिमा रॉड्रिक्स और भारती फुलमाली नीदरलैंड्स के सामने वापसी करते हुए फॉर्म हासिल करना चाहिए। पहले मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान को पस्त करने वाली दीप्ति शर्मा पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिनको श्री चरणी का भरपूर साथ मिलेगा। अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल भी गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम को मजबूती देती नजर आएंगी। इस दौरान BCCI ने टीम के लीड्स पहुंचने का एक वीडियो साझा किया। इसमें अपनी साथी अरुंधति रेड्डी के बारे में उप कप्तान स्मृति मंधाना ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
7: Me to do the right things in terms of my preps and doing the right things on the ground.
6: भारतीय टीम के लिए ये मौका बेंच पर बैठे अपने खिलाड़ियों को आजमाने के लिए भी अच्छा अवसर है। दूसरी तरफ अपना पहला T20 विश्व कप खेल रही नीदरलैंड्स ने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा मुकाबला खेला था, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा। टीम की उम्मीदों का दारोमदार कप्तान और विकेटकीपर बेबेट डी लीडे के कंधों पर है, जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक की पारी खेली थी। उनके अलावा टीम को आयरिस ज्वेलिंग, हेदर सीजर्स, सिल्वर सीजर्स और कैरोलिन डी लैंग से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों का सामना करने से पहले भारतीय टीम की नजर नीदरलैंड्स पर एक बड़ी जीत दर्ज कर ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और हरमनप्रीत की आर्मी के दूसरी तरफ शुभमन गिल एंड ब्रिगेड भी एक ऐसी ही बड़ी जीत की राह में लखनऊ पहुंच चुकी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाना है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इस श्रृंखला को अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं मेहमान टीम अफगानिस्तान की नजर ये मैच जीतकर श्रृंखला में वापसी करने पर होगी।
8: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे से

0: लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। धर्मशाला में अफगानिस्तान के ऊपर शानदार जीत दर्ज करने के बाद शुभमन गिल की मैन इन ब्लू कल सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और खेल के हर मोर्चे पर मजबूत नजर आ रही है। कप्तान शुभमन गिल का बल्ला IPL के बाद न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच और फिर पहले एक दिवसीय मैच में भी रनों का पहाड़ खड़ा करता नजर आया, जिनको इन फॉर्म KL राहुल का बखूबी भी साथ मिल रहा है और दोनों खिलाड़ी लगातार रन भी बना रहे हैं। हिटमैन रोहित शर्मा पर भी दर्शकों की नजरें होंगी। रोहित पहले एक दिवसीय मैच में दुर्भाग्यशाली रहे थे और 16 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे। पिछले कुछ एक दिवसीय मुकाबले को देखें तो रोहित का बल्ला शांत नजर आया है। ऐसे में 2027 विश्व कप की राह तलाश रहे रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भी अच्छे फॉर्म में है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों क्षेत्र में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो धर्मशाला में अपना डेब्यू करने वाले स्पिनर हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बरार से भी टीम को उम्मीदें होंगी, जिन्होंने अपने पहले मैच में 3-3 विकेट चटकाए थे। अर्जदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में उनका साथ देते दिखेंगे। ये श्रृंखला भारत के लिए 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में इस टीम की नजर हर मैच में अपना मनोबल बढ़ाने और बेहतर कॉम्बिनेशन तलाशने पर होगी। अगर मेहमान टीम अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनकी नजर किसी भी हालत में इस मैच को जीतकर श्रृंखला में वापसी और बराबरी करने पर होगी। पहले मैच में शतक बनाने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी लय में हैं। राशिद खान, अजमतुल्लाह उमरजई और इब्राहिम जादरान से भी मेहमान टीम को उम्मीदें होंगी। अगर ये खिलाड़ी चलते हैं तो भारत के लिए काफी हद तक मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम की नजर तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए चेन्नई पहुंचने से पहले ही सीरीज अपने नाम करने पर होगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम की नजर होगी कि तीसरे मैच से पहले श्रृंखला को अपने नाम कर लिया जाए। वहीं दर्शकों की नजर होगी कि इस बार धर्मशाला की तरह बारिश इस खेल में कोई खलल डालती हुई नजर ना आए। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक नई दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली और एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी की अगुवाई में 12 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों वाली 24 सदस्यीय भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
3: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
2: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में

0: और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron

हुक्म राव जान। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। शहरयार के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है खयाम ने।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
3: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
2: जी,
3: विश्वास और जन कल्याण
2: जी,
3: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया

0: तो कई कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
0: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो, तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
0: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत की महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं
1: जी,
0: उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
0: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है, लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है, व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है, व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना, कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला

0: आकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में केपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है इसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सरवाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टीमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टीमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टीमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए
1: जी,
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है
1: जी?
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी,
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पर अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ साक्षात्कार कर रही थी अनुभा रोहतगी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। 19 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा लाख लगाएं लाखों कमाएं जीवन समृद्ध बनाएं। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पांडा दुर्ग। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 4003483 और हमारा तीसरा फ़ोन नंबर है 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 19 जून 2026 को 11:30 से लेकर 12 बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 से किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सोम का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं दूसरा आदमी फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस गीत के लिए हमें आप सभी ने फरमाइश लिख भेजी है। सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, आप हैं बेमित्रा से। नवगढ़ कटी से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा। धरसीवा से हैं छिदूलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर से हैं रायपुर से हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण और सी एल यादव। सिमगा से हैं सविता जैन, प्रदीप जैन। भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडी से हैं सुब्रत चौधरी। आप सभी ने सुनना चाहा है दूसरा आदमी फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आक्रमण फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। महावीर वार्ड भाटापारा से हैं श्रीमती अमृता यादव, पार्वती ईश्वरी लक्ष्मी और कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव। यहीं से ही हैं एमएल यादव, अजय कुमार, अमित, अमीन, गिरीश, करण, युवान और ढाबेश यादव। सिमगा से हैं लवकुश सेन, प्रहलाद, आदित्य, आशीष और प्रकाश सेन। पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस और यशस्वी वर्मा। भाटापारा से हैं दान सिंह रावत, पद्मनी, शुभम और सौरभ रावत। सांकरा सोमनी से हैं नारायण लाल साहू, कुलवंतिन, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है आक्रमण फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए बेमिसाल फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन। पसंद आप सभी की श्री गातापारा से हैं धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, कुमारी मोनिका और कुमारी पूनम साहू। यहीं से ही हैं कुमारी लावण्या, उपासना, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज और प्रभुराम साहू। देवरी भाटापारा से हैं कन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। रुद्री धमतरी से हैं चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री साहू। रुआ बांधा शनिचरी बाजार से हैं सुशील जैन, कल्पना, सेयर, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन। मगरलोड से हैं पुनुराम साहू, तेजस्वरी, राशि और राजवीर साहू। बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आप सभी ने सुनना चाहा है बेमिसाल फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है RD बर्मन ने। पसंद आप सभी की है। ग्राम मटिया बंगला बालोद से हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रैंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। कोटा रायपुर से हैं योगिता वर्मा, रुचि खुशी और ओजल वर्मा। कोटा रायपुर से ही हैं अरुण वर्मा, अनिल ईश्वर और दिनेश सेन। भिलाई जामुल से हैं विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ, संजय।

अहिवारा जिला दुर्ग से हैं पेंटर डबल कुमार ढब्बू धीवर, हेमन राज बाबू, जतिन धीवर, संजय कुमार, इंद्रजीत, राजू, लक्ष्य, आंचल, माही, बेबी, अनमोल, राजवीर और राजा धीवर। बेमे तरह से हैं राज एवं सागरिका वैष्णव। शिक्षक नगर दुर्ग से हैं राकेश वर्मा, सचिन और वाणी वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात की रात फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए सिलसिला फिल्म से, आवाज़ें एक बार फिर से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं शिव हरि। पसंद आप सभी की है। भाटापारा से हैं रमज़ान खान, सिकंदर अशरफ, अयाज अल्फैज और सादिया खान। हथनीपारा भाटापारा से हैं चुआराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी दुर्गा और दुर्गेश्वरी वर्मा। रामनगर रायपुर से हैं राजेश अम्बादे, शशिकला, पूजा अम्बादे। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कुल्हारी कोट पांडुका से हैं नरोत्तम कश्यप, नीतू मोहनीश और अनुराग कश्यप। भाटापारा से हैं नारायण यदु, पुनिया राकेश और आरती यदु। मोती गार्डन भाटापारा से हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू और युग कुमार झेरिया। आप सभी ने सुनना चाहा है सिलसिला फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का गायन। इसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग मधुकोश में दो रचनाएं। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन मेरे घर आए। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं कल ना परेरी आली। आपके साथ तबले पर संगतकार हैं सोहनलाल मिश्र, सारंगी पर संगतकार हैं आशिक अली खान।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का राग मधुकौंस में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगतकार थे सोहनलाल मिश्र, सारंगी पर संगतकार थे आशिक अली खां। मीडिया व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark in Arm campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of operations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses and advanced contingency plans for low rainfall districts. Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishan multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishan project will be placed before the Union Cabinet for approval. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kursiong under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valor and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. India and Japan have adopted the rules of implementation for the joint crediting mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the Memorandum of Understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 305.8 एक मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारे इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी पर कल प्रातः 5:53 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।